नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 6 अगस्त सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं, सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया।

0: संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, उड़ीसा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आत्मा का वास्तविक आलोक बाहरी वैभव में नहीं, अपितु अंतःकरण की निर्मलता में प्रकाशित होता है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। रामचरितमानस गान में आप सुन रहे हैं किष्किंधा कांड भाग 272 आज प्रसारित होगा। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:45 पर और पुनः शाम को 6:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं वर्षा चौमासा कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, इसका भाग 6 प्रसारित होगा। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। भूले बिसरे गीत सुबह 7:00 7:30 पर हम है राही प्यार की। आठ बजकर 15 पर आप सुनेंगे त्रिवेणी आलेख एवं स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की, और ये कार्यक्रम आप पुनः दिन में 2:00 सुनेंगे। नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार विशाल भारद्वाज पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की है और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में सुनिएगा लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का भाग 1, संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की, सुबह 10:00। ग्यारह बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और 1:00 सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3:00 सखी सहेली के अंतर्गत सुनिएगा लुप्त होती पारंपरिक कलाएं, कहानी पद्मश्री के अंतर्गत कोलाक यील देव की अम्मा पर्यावरण विद की कहानी, और मुझे कुछ कहना है वो चिट्ठियों का जमाना, उपयोगी टिप्स बारिश में घर की सफाई। संवादक हैं मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 4:00 हेलो फरमाइश, संवादक मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 5:00 छाया गीत तराने नए पुराने, 5:30 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए सिकंदर खरबंदा से रेणु बंसल की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान। 8:00 हवा महल में सुनिएगा प्रहसन खुसुर फुसुर, लेखन सोमनाथ नागर का है, निर्देशन कमल दत्त का। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:00। दस बजे छाया गीत आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर का।

प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। ढलती जाए रात 10:30 पर और रात्रि 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान किष्किंधा कान भाग 272।

सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बाल पुत्र अंगद के युवराज घोषित होने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे हैं। ऋतुचक्र अपनी मंथर गति से घूम रहा है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही राजा, तपस्वी, व्यापारी तथा याचक, जिनका दैनंदिन कार्यकलाप वर्षा के कारण अव्यवस्थित हो गया था, पुनः आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु के आगमन पर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम समूल नष्ट हो जाते हैं।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों नमस्कार। शुभा जी आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: वर्षा चौमासा श्रृंखला के अंतर्गत कल आप बता रही थी कि राग बिहाग में तीज का जो पद।
1: जी हाँ, ख्याल की बंदिश के रूप में तो इसे सिखाया ही जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे बंदिश की ठुमरी कह के भी गाते हैं। तो आप देखिए, एक ही पद को ख्याल गायक भी गाते हैं, बंदिश की ठुमरी भी कह के गाया जाता है, और भक्ति पद भी है, यानी एक तरह से इसे भजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि मंदिरों में राग सेवा के दौरान गाया जाता है।
0: जी, वर्षा काल में जितनी तीज के साथ हम ये भी कहते हैं कि तीज त्योहार,
1: जी बिल्कुल,
0: तो और भी त्योहार आते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे ना?
1: जरूर जरूर करेंगे।
0: लेकिन आज आप
1: क्या क्या नहीं किया देखिए श्रृंखला में, हमने शादी करा दी, लग्न लगवा दिया, फिर तीज मना ली, तो सब कुछ करेंगे धीमे धीमे।
0: तो आज आपने क्या सोचा है?
1: मैं सोच रही थी कि तीज त्योहार की बात चल रही है, तो आपने कहा कि अलग अलग जो संप्रदाय हैं, अलग अलग जगहों पे तीज का भी मनाना थोड़ा सा फर्क इधर उधर होता हो, लेकिन मूल रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक और पद मुझे मिला, वल्लभ संप्रदाय में भी गाया जाता है, जो अन्य वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें भी, कुछ गौड़ीय संप्रदाय इत्यादि में के मंदिरों में भी ये गाया जाता है, और ये एक संग्रह में मुझे मिला जिसमें कि मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में इसे दिया गया है। और सिंधारा वो होता है, वो जो उत्सव मनाने के लिए सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, शगुन के रूप में जो साड़ी चूड़ी श्रृंगार का सामान इत्यादि दिया जाता है, वो एक सिंधारा होता है, और सब लोग मिलके झूले पे बैठ के पकवान खा के एक मौज मस्ती का त्योहार ये है। वो मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में मुझे ये मिला, और इसे मैंने तिलंग राग में निबद्ध करके गाने का प्रयास किया है। ये ख्याल के रूप में नहीं है, ना कि ठुमरी के रूप में है। मेरी चेष्टा ये रही है कि जो साहित्य है उसमें जो एक मस्ती है, एक अल्हड़पन है, और एक निवेदन है, वो प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो आपको बोल सुनाऊं थोड़े से?
0: बोल भी सुनाइए और तिलंग का रूप भी थोड़ा समझाइए।
1: जरूर जरूर। तो ये खमाज जो थाट है उसका एक राग है ये, और इसमें ठुमरी इत्यादि उपशास्त्रीय संगीत के अन्य गीत प्रकार इसमें काफी मिलते हैं
0: जी।
1: तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है।

0: सा ये तिलंग का स्वरूप माना जाता है और इसी में मैंने ये पद इसको ढालने की कोशिश की
1: तो
0: है।
1: पद भी बताइए बोल।
0: पद कुछ इस प्रकार है, मैया अब हिंडोर गढ़ावो।
1: वाह, सावन के झूले पड़े।
0: हाँ, तो माता से अनुरोध है कि अब आप झूला डलवाइए, हिंडोरा गढ़वाइए। मैया अब हिंडोर गढ़ावो, लेकिन ऐसा वैसा नहीं कि बस ऐसे ही कहीं एक टायर लगा के जैसे बंध जाता है, वैसा नहीं। सोनी सुघर बुलाए नगर के, हाँ? यानी जो शहर का प्रतिष्ठित सुनार है, हाँ? उसको बुलाइए आप।
1: हाँ, नगर का।
0: हाँ, हाँ, सोनी सुघर बुलाए नगर के रतन अमोल जड़ावो। तो रत्न जटित हिंडोला
1: हिंडोले में। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।

0: और उसके लिए बाकी तैयारी कैसी होगी, क्योंकि झूले
1: हाँ
0: पे यूं ही हम ऐसे फटे हाल तो नहीं बैठ जाएंगे। तो गहरे रंग चुनरी सारी छीपन पे जो रंगावो, विशेष रूप से उसे छपवाया जाए, रंगवाया जाए, ऐसी साड़ी आप गहरे रंग की तैयार करवाइए। और केवल मेरे लिए नहीं, कन्या गोप जिति मो साथिन
1: वाह वाह,
0: सादर सब पहिरावो।
1: क्या बात है। हाँ
0: तो सब जो कन्याएं हैं, मित्र हैं, सहेलियां
1: सहेलियां
0: हैं,
1: हैं,
0: सब उनके लिए गहरे रंग की विशेष छपाई के
1: छपाई
0: साथ
1: की।
0: वो साड़ी आप तैयार करवाइए। ये सावन मन भावन रानी मोको उबटी नहावो। तो उबटन लगा के जो स्नान होता है वो बहुत जरूरी है। उबटी नहावो सब सखियन में सुंदर लागो रच सिंगार बनावो।
1: वाह, सब सखियों को छपाई की हुई सुंदर साड़ी गहरे रंग की तो चाहिए, लेकिन सब सखियों में इसको सुंदर भी दिखना
0: बिल्कुल
1: है सबसे
0: सबसे ज्यादा तो
1: ज्यादा
0: तब ब्यूटी पैजेंट नहीं होता था,
1: जी
0: पर ऐसा ऐसा इच्छा रहती थी कि सबसे
1: जी
0: सुंदर हम नजर
1: हाँ
0: आए।
1: हाँ
0: और फिर क्या पकवान क्या होंगे उसका भी संकेत इसमें मिलता है। पुआ करी, जो पुआ होता है
1: मालपुआ।
0: जी, पुआ करी कीरति मैया गुझा मेवान भराओ। मेवा से
1: गुजिया।
0: जी, मेवा से भरी गुजिया वो बनेगी। अधिक राचनी, जो ज्यादा रचे, अधिक राचनी मेहंदी सो ले तुम मोकरन लगाओ। वैसी वाली नहीं जो कि ऐसी हल्की धुंधली सी
1: हो
0: आ
1: जाए।
0: जाए,
1: हाँ
0: पर जो अधिक रचे
1: गहरी।
0: वैसी गहरी मेहंदी वो
1: हाँ
0: चाहिए मुझे। और फिर झूले का वर्णन है, मानिक चौक पौरी के आगे तहां ले खंभ रुपावो। और जो उसके खंभे बने हैं उस पे मरुवे और मयार जु डांडी चित्र विचित्र करावो। तो क्या भव्य एक दृश्य
1: जी
0: बनता है।
1: जी मयूर मरावे
0: मरुआ
1: मरुआ।
0: मरुआ और उस फूल लगा के उसे
1: हाँ,
0: सजाया
1: सजाया
0: गया
1: जाए।
0: है। और ये जो तीज त्योहार अति बड़ो सब मन मोद बढ़ावो। ये तो इसीलिए होते हैं तीज त्योहार कि सब अपना मौज मस्ती करें। उमड़े श्याम सजल घन गर्जन गहरी सुनी सच पावो। उसका सच्चा आनंद जो है तभी होता है जबकि बादल भी उमड़ रहे हैं और बादल की ध्वनि और नगाड़े जो बजते हैं बादल के
1: वर्षा
0: वो
1: की
0: भी
1: ध्वनि
0: सुनाई दे।
1: जी।
0: ये वृंदावन दास जी का लिखा हुआ पद है। और ऐसे बहुत संत कवि रहे जिन्होंने कितना साहित्य लिखा है, उनमें से ये
1: तो अब देर न करियो
0: चलो
1: जी
0: सखी

0: राग तिलंग में शुभाजी ने हमें सुनाया है तीज त्योहार का पद। शुभाजी, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगीतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

लीजिए श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारानिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस पहले गीत के साथ। बैजू बावरा फिल्म का गीत है। मोहम्मद रफी की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: शो अदाओं के साथ थिरकते कदम
4: चलते रे, इश्क भी बढ़ जाते
3: पूरे दबंग अंदाज में,
5: दबंग दबंग दबंग दबंग।
3: और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
6: ओके टिको केटिको, बर्फ बदन है।
3: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
7: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
3: जी,
7: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
3: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
6: मैं निकला गड्डी लेके
3: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
8: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूली बिस्तरी गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र का लिखा गीत शंकर जय किशन की बनाई धुन पर, फिल्म का नाम दाग।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी।

आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम विविध भारती से। इस ब्रेक से पहले आपने सुना गीत सुबह का तारा फिल्म से उषा मंगेशकर की आवाज में। नूर लखनवी का लिखा गीत था, सी रामचंद्र का संगीत। आन फिल्म से शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में ये गीत। शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का ही संगीत।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत की रचना की है शकील बदायूनी ने, संगीत से सजाया है नौशाद ने, शबाब फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर हैं।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये

0: नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और
0: गया
1: आ गई।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सही परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।
6: नास्तिक फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सी रामचंद्र का संगीत है, गायक कलाकार और गीतकार प्रदीप हैं।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर। आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का पहला गीत अभिलाषा फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें मजरू सुल्तानपुरी के बोल, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए सुनिए सुनिए
6: कहिए सुनिए एक खुशखबरी,
7: कहिए ना,
6: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
8: हम हेरा ही प्यार की कार्यक्रम सुन रहे हैं आप विविध भारती से। सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में अंजाम फिल्म का गीत, अख्तर रोमानी की रचना, गणेश का संगीत।

0: छोटी सी मुलाकात इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

हसरत जयपुरी की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत, छोटी सी मुलाकात इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और अब वक्त है कार्यक्रम हम हिराही प्यार के में एक छोटी सी ब्रेक का।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया।

0: तो बहुत गाली देंगे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक श्रीमान एक श्रीमती, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें।

0: मुख अदाओं के साथ थिरकते कदम चलते रहे। पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
1: ओ केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
2: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर

0: को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: निकला
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: हमें राही प्यार की इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं हम साया फिल्म से। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी की रचना है, ओपी नैयर का संगीत।
4: आज की रात कभी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
2: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
3: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
4: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को

0: 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिस्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी।

0: आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
1: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश, जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर, गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में न आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी मुस्कुराहट पर। मुस्कुराहट चेहरे का केवल एक भाव नहीं बल्कि मन की सुंदर भाषा है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। एक छोटी सी मुस्कान किसी उदास मन में आशा का दीप जला सकती है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी अपनापन जोड़ सकती है। मुस्कुराहट वो फूल है जो बिना मौसम के भी खिलता है। ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तित्व में भी आकर्षण भर देती है। कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति मुस्कुराना जानता है वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और विश्वास के साथ करता है। कभी कभी किसी की एक सच्ची मुस्कान थके हुए मन को सुकून दे जाती है। ये रिश्तों में मिठास घोलती है, दूरियों को कम करती है और वातावरण को सकारात्मक बना देती है। मुस्कुराने के लिए किसी बड़े कारण की आवश्यकता नहीं होती। कई बार छोटी छोटी खुशियां भी होठों पर मुस्कान ले आती है।
1: किसी के

मुस्कुराहट ईश्वर का दिया हुआ ऐसा उपहार है जिसे बांटने से कम नहीं होता बल्कि और भी बढ़ता जाता है। ये जीवन की राहों में आशा, प्रेम और विश्वास का प्रकाश फैलाता है। मुस्कुराहट वो खामोश कविता है जिसे चेहरा लिखता है और दिल पढ़ लेता है। कहते हैं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हजार शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। किसी परेशान व्यक्ति को दी गई छोटी सी मुस्कान उसके मन का बोझ हल्का कर सकती है। ये वो अनमोल उपहार है जिसे देने में कोई खर्च नहीं होता, फिर भी इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। मुस्कुराहट जीवन की कठिन राहों में एक सहारे की तरह होती है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तब भी चेहरे पर बनी रहने वाली मुस्कान हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।

मुस्कुराहट रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ाती है। घर में माता पिता की मुस्कान बच्चों को सुरक्षा का एहसास देती है। दोस्तों की मुस्कान मित्रता को गहरा बनाती है और किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान भी पल भर में एक सकारात्मक संबंध बना सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं, ऐसे में मुस्कुराहट मन को शांति देने वाली औषधि के समान है। ये वातावरण को हल्का बनाती है और जीवन को सुंदर दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। मुस्कुराहट केवल खुशी के समय की पहचान नहीं है, बल्कि ये संघर्षों के बीच भी उम्मीद बनाए रखने की ऐसी शक्ति है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही मुस्कुराता हुआ इंसान कठिनाइयों के बीच भी अपनी सकारात्मकता बनाए रखता है। एक सच्ची मुस्कान चेहरे की सुंदरता से अधिक हृदय की सुंदरता को दर्शाती है। मुस्कुराहट वो दीपक है जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में उजाला भर देता है। इसे बांटते जाइए, क्योंकि यही जीवन को सरल, सुंदर और मधुर बनाती है।

0: शोख अदाओं के साथ थिरकते कदम
1: चलते रहे, इश्क भी बढ़ जाते
0: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओ केटिको केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: निकला ओ गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर। श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर हम आ रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

तो श्रोताओं लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आज हूं मैं आपके साथ पूजा नारानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। अपने शरीर को समय दें, मन को मुस्कान दें और जीवन को नई ऊर्जा दें। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही अच्छे स्वास्थ्य की पहचान बनती है। कार्यक्रम चित्रलोक में आज हम आपको सबसे पहले सुनवाएंगे एक एनर्जेटिक सॉन्ग, ऊर्जा से भरा गीत, और आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ सुनवा रहे हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। चश्मे बदूर फिल्म का गीत है, सोनू निगम की आवाज, जालिश शेरवानी का लिखा, साजिद वाजिद का संगीत।

चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, और अब सुनवाएंगे आपको फुकरे फिल्म का गीत सोना महापात्रा की आवाज में। मुन्ना धीमन का लिखा गीत है, धुन बनाई है राम संपत ने।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
0: और बातें

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा फिल्मकार विशाल भारद्वाज पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की है। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर हैं, जावेद अख्तर की बोल, शंकर एहसान लोई की बनाई धुन।

मनाया क्या जाता है, इसे हम याद करते हैं जो 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम की त्रासदी को याद करवाता है। हिरोशिमा जापान का शहर है, ये घटना हुई थी। अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम इस शहर पर गिराया था इस दिन। इसका परिणाम ये हुआ था कि लाखों की जाने गई थी, कई सैनिक मारे गए थे, जो बचे वे हिबा कुशा कहलाए, विकिरण से जीवन भर संघर्ष करते रहे। दुनिया में पहली बार परमाणु युग की शुरुआत हुई। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और भविष्य की विश्व राजनीति की दिशा तय कर दी। अभी यह दिवस खास महत्व रखता है क्योंकि दुनिया में एक बार फिर परमाणु हथियारों की बढ़ती धमकी और भू राजनीतिक तनाव का सामना कर रही है। यह दिन हमें न केवल अतीत की और उस भयावह घटना की याद दिलाता है, बल्कि शांति, अहिंसा और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करने का नैतिक और वैश्विक आह्वान भी करता है। हिरोशिमा दिवस का उद्देश्य है परमाणु हथियारों के खिलाफ चेतावनी। यह दिन बताता है कि परमाणु शक्ति से सुरक्षा नहीं बल्कि विनाश होता है। शांति और अहिंसा का संदेश, यह गांधी जी के सिद्धांतों को दोहराया जाने का समय है। अहिंसा ही सबसे बड़ा अस्त्र है और पीड़ितों को श्रद्धांजलि। और कार्यक्रम चित्रलोक में अगला गीत इशक जादे फिल्म से, यह है फिल्म का नाम। शालमली खोलगड़ी ने इस गीत को गाया है। कौसर मुनि का लिखा, अमित त्रिवेदी की बनाई धुन।

0: सदाओं के साथ थिरकते कदम
1: चलते रे, इश्क में पड़ जाते
0: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओ केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
5: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
4: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: हाय हाय
7: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुनेंगे सिकंदर खरबंदा से रेणु बंसल की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। और कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। गुलाम फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में समीर का लिखा गीत है।

श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा आज के मेहमान लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेजश्री कामले की।

और स्पेशल 26 इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अमन त्रिखा, श्रेया घोषाल और शबाब सबरी की आवाजें हैं। इरशाद कामिल के बोल, एमएम करीम का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

शिल्पा राव और सचेत टंडन की आवाजों में अगला गीत। प्रिया सरैया ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई है सचिन जिगर ने। फिल्म का नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गीत। चित्रा और केके की आवाजें हैं, गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार अनु मलिक।

0: तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
0: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: अगला गीत बेफिक्रे फिल्म से सुना रहे हैं आपको, अरिजीत सिंह की आवाज में, जयदीप साहनी का लिखा गीत है, तर्ज बनाई है विशाल एंड शेखर ने।

कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत दे दे प्यार दे इस फिल्म से अरमान मलिक की आवाज है। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, अमाल मलिक ने संगीत से सजाया है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ लेती हूँ विदा। मैं पूजा नरानिया, नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर।

आज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक कंपनी में आ गए। एक दोस्त ने विशाल भारद्वाज का परिचय जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार से करवाया।

0: बच्चा है जी।
1: विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में विशाल भारद्वाज

उसके बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था, ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

इन सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये, और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी सत्या,

सत्या के बाद विशाल भारद्वाज ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबाना आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थीं। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण किया। ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी द ब्लू अम्ब्रेला। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने एक धमाकेदार फिल्म बनाई। ये फिल्म थी ओंकारा।

इस दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।

विशाल भारद्वाज के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में विशाल भारद्वाज की मित्र बनी रेखा, जो अब उनकी पत्नी और फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी गायिका हैं। रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनिए ओमकारा फिल्म का।

बड़ी अनूठी हुआ करती हैं। वो फिल्मी दुनिया के सामान्य चलन से अलग हटकर अपनी फिल्में पेश करते हैं, जैसे फिल्म कमीने एक अलग तरह की कहानी थी और इसका संगीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग था।

हम आपको बताएं कि विशाल एक अच्छे गायक भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल कितनी बहुमुखी प्रतिभाएं, एक तरफ संगीत देते हैं, दूसरी तरफ कथा पटकथा संवाद लिखते हैं, निर्माण निर्देशन भी करते हैं और गायक भी हैं। जी हाँ, फिल्म यू मी और हम का ये गाना सुनिए।

अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म निशब्द की कहानी विशाल भारद्वाज ने तैयार किए थे। फिल्म हाले दिल का ये शीर्षक गीत सुनिए, कमाल का गाना है ये और विशाल भारद्वाज की प्रतिभा को अच्छी तरह से दर्शाता है।

अब विशाल भारद्वाज निर्माता भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी के जरिए नई प्रतिभाओं को उतार रहे हैं। जैसे कि विशाल भारद्वाज ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाई है इश्किया। फिल्म इश्किया के गाने भी गुलजार ने ही लिखे हैं और इनका संगीत खुद विशाल ने तैयार किया। जरा इब्ने बतूता सुनिए।

विशाल भारद्वाज लेकर आए एक बड़ी ही चर्चित फिल्म जिसका नाम है एक थी डायन। विशाल भारद्वाज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी गिनती फिल्म उद्योग के संवेदन

विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म आई डेढ़ इश्किया, जो इश्किया का सीक्वल है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक अभिषेक चौबे, निर्माता विशाल भारद्वाज, संगीत भी विशाल का ही।

विशाल भारद्वाज एक संगीतकार होने के साथ साथ एक निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म तलवार का निर्माण भी किया और इसकी कहानी भी तैयार की। आपको बता दें, फिल्म तलवार का निर्देशन जाने माने शायर, निर्माता, निर्देशक और लेखक गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने किया था और फिल्म तलवार ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किए थे। पिछले दिनों आई निशिकांत कामत की फिल्म दृश्यम में विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया था। इसके अलावा फिल्म जुगनी में विशाल भारद्वाज ने ये गीत गाया था।

विशाल भारद्वाज बहुत ज्यादा फिल्मों में संगीत नहीं देते। आजकल वो उन फिल्मों का संगीत निर्देशन कर रहे हैं जिन्हें या तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है या फिर उनका निर्देशन उन्होंने किया है। लेकिन पिछले दिनों एक फिल्म में उन्होंने कुछ गाने बनाए। ये फिल्म थी मदारी। विशाल भारद्वाज प्रोडक्शंस की एक महत्वपूर्ण फिल्म पिछले दिनों आई और वो फिल्म थी रंगून।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक, लेखक और संगीतकार विशाल भरद्वाज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक तीन दिन बिताए हैं।
1: तीन दिन बिताए
2: तीन रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में

0: जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी,
1: बिल्कुल,
0: तो 3 रातें मैंने
1: ओवरनाइट
0: इस स्टूडियो
1: ट्रांसमिशन
0: में
1: किया
0: बिताई हैं।
1: है। सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहां से लगा था?
0: बचपन बड़ा मजेदार है। मेरा बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
0: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा, तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी, तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था। तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ, और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी। तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा होऊंगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको वेताल बोलते थे उस समय में,
1: बिल्कुल।
0: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं हम।
1: बिल्कुल, ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और
0: जी हाँ, जी
1: दोस्तों से
0: हाँ,
1: अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
0: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया, क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
1: बाहर से
0: किताबें लेने
1: लेने की
0: जाने की
1: जरूरत
0: जरूरत
1: नहीं
0: ही नहीं
1: थी।
0: थी, क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा,
1: बाल
0: गुड़िया, बाल
1: भारती,
0: भारती, राजा भैया, कई किताबें थी,
1: ढेर
0: कई
1: ढेर
0: तरीके,
1: बहुत
0: ढेरों ढेर।
1: सारी
0: और
1: थी।
0: पराग, तो मैं अभी भी कहता हूं कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग,
1: बिल्कुल।
0: जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक, और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे, जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहाँ एक आज़ादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए। तो वहाँ मायापुरी भी थी, वहाँ माधुरी भी थी, वहाँ फिल्म फेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा।
1: वाह।
0: तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहाँ से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
0: पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सुध बुध छोड़
1: बिल्कुल।
0: के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स की
0: और
1: किताब के अंदर
0: कोर्स की
1: कॉमिक्स
0: किताब के
1: रखिए।
0: अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के, फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लग गए हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था, तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी
0: कि
1: तौर पर
0: हाँ
1: हो
0: हाँ
1: रहा था।
0: जरूरी तौर पे हो रहा था कि एक और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था, पापा
1: क्या
0: जी को थोड़ा बहुत
1: बाकी
0: था।
1: बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे, आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
0: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफी अलग चीजें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीजें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियां पढ़ रहे थे मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
1: बिल्कुल।
0: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी, क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहाँ रहते थे शहर में,
1: बिल्कुल।
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो
0: लोक
1: उस जमाने में
0: कथाएं,
1: हिंदी
0: हाँ
1: अनुवाद आया
0: हाँ
1: करते थे, वो भी मौजूद
0: बेहतरीन,
1: रहे होंगे।
0: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल।
0: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन तक
0: मुल्ला
1: छापा
0: नसरुद्दीन, हाँ मुल्ला
1: था।
0: नसरुद्दीन था एक।

0: बहुत अच्छा
1: राधुका प्रकाशन
0: हाँ
1: जो है।
0: राधुका प्रकाशन, और उसमें एक कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ
1: क्या
0: नाजानू की
1: बात है,
0: कहानियाँ,
1: वाह।
0: और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी, तो वो ऑलमोस्ट पोपाई पोपाई के जैसा था, मगर
1: बिल्कुल
0: काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये, तो इनकी भी उपलब्धता थी और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी,
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है मेरे
1: सबने
0: जनरेशन में।
1: पढ़ी
0: जी
1: बिल्कुल।
0: जी जी
1: तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल, तो
1: कौन सा गाना होना चाहिए,
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था, तो मैंने
0: मतलब
1: खरीदा,
0: बहुत ही लेट आया।
1: बहुत ही लेट आया। तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहाँ जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहाँ। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई हैं। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे,
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो
0: था।
1: मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण हैं, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है,
0: हाँ,
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही

0: चाचा चौधरी भी बनाते हैं
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: लंबे
1: वाह
0: समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में,
1: अब पाकिस्तान
0: हाँ में हुआ था, तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
1: बिल्कुल।
0: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो,
1: नहीं
0: मुझे मुझे ऐसा लगता था।
1: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा
0: हाँ,
1: दिख
0: जैसा
1: रहा
0: वो,
1: है।
0: हाँ जैसे जिसकी नजर,
1: हाँ
0: तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून बनाते थे।
1: ओके
0: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं,
1: तो उस
0: और
1: दौर
0: ये
1: के
0: एक
1: कौन कौन
0: प्रोफेशन
1: से
0: है।
1: नामों से आप परिचित हुए?
0: अब बहुत सारे, असल में तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे,
1: पहले ही
0: लेकिन
1: बॉक्स
0: उनका
1: में
0: काम,
1: नाम आता था
0: हाँ
1: ली
0: पहले
1: फॉक।
0: बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रेक भी लिखते हैं, फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं, रिप कर्बी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं, बहादुर जो है वो आबिल सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रट लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी 4 मिलेगी 5 मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
1: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
0: नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं, अभी के भी सर्वश्रेष्ठ
1: नायाब व्यक्ति,
0: कलाकारों में
1: बिल्कुल।
0: एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूं, तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे
1: चलते
0: थे,
1: आ रहे थे।
0: तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था, जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक्स से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहूंगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूं और मैं ये भेज सकता हूं छपने के लिए। तो
1: अच्छा।
0: कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था, और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
1: लिफाफा भेजते थे आप?
0: लिफाफा भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था।
1: जी
0: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, तो
1: कुछ भी कर
0: आप
1: सकते
0: कुछ
1: हैं।
0: भी कर सकते हैं।

0: और वो रहना चाहिए, मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ताउम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में, और सुमन
1: अच्छा
0: सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था। लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी, मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्राइंग्स बेहतर करता हूँ लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे, और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ अब, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना, निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून्स। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून्स, दो तीन बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में। मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो कुछ
1: सही
0: अंडे
1: है।
0: गड़ गए, पहले ही दिन पहले ही कार्टून गए, और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
1: और वो भी भिलाई में।
0: भिलाई में। तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपये, चाहे जितने भी कार्टून, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा, क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 100 रुपये में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे।
1: यस
0: हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे, अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहाँ भागना
1: ये
0: दौड़ना नहीं
1: हर्डल
0: करना
1: खत्म
0: पड़ता था।
1: थी।
0: हाँ, मुझे याद है 56 रुपये का सेट आता था, तो दो सेट
1: हाँ,
0: मैं
1: और वो
0: खरीद
1: बड़ा
0: सकता
1: महंगा लगता था
0: था,
1: उस
0: 56 रुपये
1: वक्त।
0: बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपये मिल रहा था महीने का, तो मैं दो सेट खरीद सकता था महीने के। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है। लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से
0: हाँ
1: देने
0: हाँ हाँ
1: लगे।
0: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा,
1: हाँ
0: मुझे मेरी
1: हाँ
0: कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
1: अच्छा
0: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मतलब मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए, जितनी
1: अपनी
0: बड़ी,
1: होनी
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी।
1: हाँ
0: तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई, और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की, मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे,
1: कितने साल चलाई? अच्छा,
0: वो हमने चलाई करीब 4 साल।
1: और किताबें सब वापस आई सही सलामत?
0: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना, तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको
1: यस,
0: ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी
0: अलग
1: है।
0: कहानियां हैं, वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज
1: बहुत
0: है।
1: सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी, लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है, और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बाल हंस में आने लग गया, उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था, और पैसे भी मिलते थे उसके।
1: हाँ, तब
0: तो
1: तो अच्छे
0: मजे की बात ये थी
1: पैसे।
0: कि पैसे भी आ रहे हैं, और वो ठीक ठाक पैसे थे, मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपये भी महीने के बना ले रहा है,
1: बहुत ज्यादा
0: तो
1: रकम थी
0: बहुत
1: ये तो।
0: बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही है ठीक ठाक, और आप
1: हाँ,
0: कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर
1: तो
0: पढ़ाई कौन
1: सेट था
0: करेगा, पढ़ाई कौन
1: मामला।
0: करेगा।
1: अच्छा, फिर
0: फिर मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप,
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया।
0: तबाह हो गया मैं,
1: अच्छा,
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ
1: इसकी
0: में
1: आगे की
0: नहीं
1: कहानी सुनिए। आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं। कहां तक ये मन को
0: सोचना
1: अंधेरे
0: पड़ेगा,
1: चलेंगे,
0: चलिए
1: कहां

0: नवी में आप फेल हो गए।
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है।
0: हाँ कि फेल हो
1: हाँ
0: जाऊंगा,
1: फेल हो जाऊंगा
0: मतलब पढ़े नहीं
1: लगता है कुछ।
0: थे।
1: नहीं मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
0: वैसे
1: वो
0: नवी
1: पूरा
0: होता
1: पूरा
0: भी
1: ऐसा
0: फिसलदार मैदान ही है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा 10वीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया
0: नहीं,
1: जाता
0: और
1: है,
0: ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट
1: पीछे
0: गया,
1: छूट
0: अब
1: गया।
0: होश में आ जाओ।
1: नहीं वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक
0: बिल्कुल
1: हाफ पेंट था, फिर फुल पेंट आया,
0: हाँ।
1: तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून छप रहे हैं। तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास 9th का एक लड़का है जिसका हर महीने
0: कहीं ना कहीं
1: कहीं ना
0: कुछ
1: कहीं
0: छप
1: कुछ
0: रहा
1: ना
0: है।
1: कुछ छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है ना कि हम ही हम
0: हाँ
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पे कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो 9वीं में मैं फेल हुआ, उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो, क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे 1 साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है 1 साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो
0: बिल्कुल
1: 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे? सबको पता है आप 9th में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप 10वीं नहीं गए, आप वापस 9th रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा

0: होता है उसका, उसमें बच्चे की गलती है नहीं है,
1: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता, वो
0: हाँ
1: जो एक्सेप्टेंस
0: स्टिग्मा
1: वाली
0: जिसको
1: बात
0: बोलते हैं
1: है।
0: ना, तो स्टिग्मा आ
1: हाँ
0: जाता है वो,
1: हाँ
0: तो स्टिग्मा तो आ गया था, और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो,
1: हाँ
0: तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है, अभी तक आप उन्हीं नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं, पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जाते
1: नजरें
0: हैं,
1: कैसे मिलाएंगे?
0: नजरें
1: हाँ
0: कैसे मिलाएंगे? उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
1: हाँ
0: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे एक साल।
1: पूरे 1 साल।
0: देखिए बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो
1: बिल्कुल।
0: फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही है
1: घर
0: ना।
1: घर
0: एक
1: वालों
0: साल
1: का एटीट्यूड क्या था?
0: कुछ खास ऐसा, मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है, तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
1: क्या काम था वो?
0: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे, तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहाँ सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे,
1: अच्छा, ये सब
0: हाँ,
1: चल रहा
0: और
1: था।
0: ये सब चल रहा था। उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया, वो भी मेरे ख्याल से मैं 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर, तो वो शुरू किया मैंने। मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पे लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि जब एक
1: फेल्योर
0: बच्चा फेल
1: का
0: होता है
1: उस
0: तो वो
1: बच्चे के ऊपर
0: अपने
1: क्या असर
0: अपने
1: पड़ता
0: आप
1: है?
0: में वो एक मौत से गुजर रहा होता है, उसके
1: करेक्ट।
0: ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है, तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: किस शो में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नाइन्थ में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि नाइन्थ में फेल होते हैं नहीं होते हैं। फिर पता

0: हालांकि होते हैं,
1: होते हैं, होते हैं।
0: हाँ, जहाँ वो कहानी बेस है वहाँ तो होते हैं। तो फिर उस चीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें जो मैंने झेली थी,
1: वो आ गई
0: बहुत सारी
1: वहां।
0: चीज़ें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहाँ मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं,
1: गुजरे
0: एक एक
1: हैं।
0: दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं हुई है लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह
1: एक्सप्रेस
0: पाके
1: होते
0: निकल
1: हैं।
0: जाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
0: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद, नाइन्थ
1: अच्छा,
0: सेकंड ईयर।
1: ये एक तरह की
0: ये एक
1: राहत थी।
0: तरीके की, हाँ, राहत थी।
1: हाँ।
0: तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना,
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल।
0: घबराहट नहीं थी।
1: हाँ
0: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में, क्योंकि
1: हाँ
0: ये सब मेरे से छोटे थे, मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे, सेकेंड ईयर में इन तीनों में मैंने टॉप किया, और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे। तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीज़ें। तो 9th और 10th यूं करके निकल गए, मतलब चुटकी बजाते 9th और 10th निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
1: अच्छा।
0: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो
1: सर्कुलेट
0: रही
1: होती
0: थी
1: रहीं,
0: उसी शहर में।
1: क्या बात
0: हाँ, तो
1: है।
0: ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे, जितना झेल सकते थे, आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-8 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का। तो
1: एक
0: वो
1: नए सिरे से बनने की तैयारी थी।
0: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
1: बिल्कुल। ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया।
0: सुपर कमांडो ध्रुव
1: प्रतिशोध
0: की
1: की
0: पहली किताब, हाँ, प्रतिशोध की
1: ज्वाला।
0: ज्वाला थी वो, और वो सम मेरे लिए काम कर गई बेसिकली।
1: हाँ,
0: तो
1: बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा।
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी करीब
0: हाँ,
1: करीब।
0: धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे
0: करके, और
1: मेरी मेरी
0: उनका
1: पीढ़ी,
0: अंत
1: मेरे
0: हो
1: ख्याल
0: गया।
1: से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज़ को खुद करके ना देखूँ, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीज़ें। कार्टून्स छप रहे थे लेकिन मुझे मज़ा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से,
0: अच्छा।
1: तो हाँ ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है। तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने है, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिस जाता था, कार्टून्स देख के आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से, तो
0: अरे
1: 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था। क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिस होते थे, तो यहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां कहीं ना कहीं छप जाता था।
0: वाह।
1: और

0: नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे, और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूँ, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज़ करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूँ उससे अटैच भी हूँ और डिटैच भी हूँ। अटैच हूँ जब तक मैं उसको बना रहा हूँ, डिटैच हूँ द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूँ। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, वो
1: बिल्कुल
0: सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहां जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूंगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊंगा। तब तो मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है। तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहां खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्राइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, मैंने लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके।
1: अरे
0: वो
1: बाप
0: कहीं
1: रे।
0: मेरे पास रखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं, मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे। तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने, भारत में एनिमेशन का कोई स्कोप ही नहीं
1: सिस्टमेटिक
0: था,
1: मामला नहीं
0: स्कोप
1: था।
0: ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास 9th में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी, उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में, मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी, और जो कोर्सेज थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम आताबिरा है। मतलब वहां आप आलोक शर्मा आताबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौतम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था, तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6, 7, 8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम खां था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा है कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ, और सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
1: बिल्कुल
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया, और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह
0: हाँ, तो
1: वाह
0: पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार उस
1: मौजूद
0: स्टूडियो में
1: थे।
0: थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है। तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं, और मैं उनको कहानियां सुनाता था क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है। तो उनको कहानियां पसंद आने लगी, उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्राइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ, तब तक मैं
1: मार्वल
0: लिखता
1: के
0: नहीं
1: साथ।
0: था। गौतम कॉमिक्स था, गौतम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें। तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से। क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना, वो पूरा रस
1: निकल जाते
0: निकल
1: हैं।
0: जाता है, अब वो काम बन जाता है
1: यस
0: कि आप बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से

0: मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मंगा, जिनको बोलते हैं मंगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मंगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मंगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया, और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं, और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सायानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था, और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने, लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। तो मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने हैं, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीने हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का, और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं,
0: लिफ्ट करा दे
1: अदनान समी की आवाज।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित है, मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो।

0: ये लगता है कि अभी है, हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों से।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रफकत अली खां और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे अमीर खुसरो की ये रचना। आइए अब सुनते हैं अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत। एल्बम का नाम है कभी तो नजर मिलाओ।

चंदन दास की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था बशीर बद्र का। लीजिए पेश है ये कव्वाली। यूसुफ आजाद कव्वाल और साथियों की आवाजें हैं।

जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके और उस पे दावा के तलवार हम उठाएंगे। फरेब मकर में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस ले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी धूम से मैयत उठाई जाती है।

हिम्मत है, पहन के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले। अगरचे फूल का इतहार है यही औरत, जो जिद पे आए तो तलवार है यही औरत। ये पुतली बन के जमाने को मोड़ सकती है, उठे तो मर्द का पंजा मरोड़ सकती है।

0: सुनो
1: ओ?
0: जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साफ बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

साबरी ब्रदर्स और साथियों की आवाजों में ये थी कव्वाली। आइए अब सुने रानू मुखर्जी के स्वर में ये गीत। रचना है कृष्ण राघव की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहां? जी हाँ श्रोताओं, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे 2 मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं।

0: ओ, अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से। अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए। उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए पांच आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को। आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ceiet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT के पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला।

0: डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी। वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
0: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
0: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
2: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
3: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
4: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
3: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
5: बिल्कुल सही कहा आपने।
4: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
5: जी जी चलो चलो देखते हैं।
4: चलो चलो चलो चलो चलो जल्दी चलो।
6: अहोम के महाराज की जय हो।
7: जय हो जय हो।
6: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य विशु के साथ।
8: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: Output. अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में यह संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटने के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
4: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
5: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
6: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर

0: थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
1: जी अंजला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
0: अच्छा।
1: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
0: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
0: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
1: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
0: ओह।
1: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
0: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
1: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
0: ओह।
1: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहाँ भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
0: अच्छा।
1: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
0: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
2: जी।
0: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
1: अंजला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
0: जी।
1: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
0: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आज एंजला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी। खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाह, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है,
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो, कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया
2: नमस्ते। नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।

0: नमस्ते मामा जी।
1: अरे जीते रहो बेटी, जीते रहो। शाबाश
2: बेटा, मामा जी आए हैं। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
1: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
1: देखोगी, एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है। आई पसंद? और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है। देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये तो भूल ही गया था, इतनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी, आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
3: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, और हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
1: जीजा जी, पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी, हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
1: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था।
1: तो फिर?
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
1: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी, बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने हैं। तुम एक काम करो, इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
0: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने। अरे मगर
1: बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा, ओ चली गई बिना खिलौने लिए।
4: आंटी आंटी नमस्ते।
3: नमस्ते बेटा।
4: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
3: खुशी खुशी, देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
4: क्या है मामा?
3: देखो ना, ताशु आई है।
4: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
0: नहीं ताशु, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
4: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलती भी नहीं हो।
0: नहीं ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
4: खेल लो प्लीज।
0: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
4: प्लीज
0: नहीं।
4: ठीक है, फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
0: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है, वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
6: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है। तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी है। फूल फिर से, वाह। तोते, तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,
3: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
6: मैं तो बाहर जा रही हूँ। हम वहाँ देखो चिड़िया, तोते, अरे सुंदर है।
3: अरे सुन तो,
6: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
3: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बार देखे तुमने?
3: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
3: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर, हे भगवान, तूने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
5: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई।

0: सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। उमरा जान फिल्म की गजल सुनिए तलत अजीज की आवाज में, शहर यार के बोल, खयाम का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

बाप फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं राहुल देवर्मन की आवाज में। गुलजार के बोल हैं संगीत राहुल देवर्मन का।

नाम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मनहर उदास मोहम्मद अजीज की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। ये शराबी फिल्म का गाना है।

शराबी फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो दोस्तों, अब तक तो आपको प्रोग्राम का स्वरूप पता ही चल चुका होगा कि इसमें हम एक इबारत टेक्स्ट लिखते हैं फेसबुक पेज पर, विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हमारे बहुत सारे श्रोता या कहें कि अनगिनत श्रोता टिप्पणी लिखते हैं और वो टिप्पणी इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तो चलिए आज की इबारत हम पढ़कर सुना देते हैं, जो अभी तक विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं है उनके लिए खास तौर से। और इस इबारत में से आपको शब्द चुनने हैं और गाने चुनने हैं। अब ये नहीं कि बात विदाई की पकड़ ली और उसी पर बातें लिखे, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों के भावों को भी पकड़िएगा। तो अब हम इबारत पढ़ के सुना रहे हैं। वो भीगी दोपहर थी, रिमझिम फुहार पड़ रही थी, आंगन में रखी गुड़िया को देखकर अम्मा की आंखें भर आई। उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई, जिसकी विदाई को कई बरस बीत चुके थे। अब इसमें एक शब्द है बरस, इस पर कौन से गाने होंगे बताइए। उसने अम्मा से विदाई के समय कहा था, मेरी गुड़िया रख तो संभाल के, मोरा नहीं खेलन का चावरे बाबुल। और अब ये गाने की लाइन मैंने लिख दी है, क्योंकि ये गाना आप कभी कभार सुनते हैं। तो क्या आपने इस गाने को कभी पहले सुना था? फिल्म का नाम जरा बताइए। और अब आगे इबारत आगे पढ़ रही हूं। फिर उसने कहा था, अम्मा मोरे बाबा को भेजो रे के सावन आया। फिर घर सूना हो गया, कभी इसी घर में भाई बहन की हंसी गूंजती थी, छोटी छोटी बातों पर रूठना मनाना चलता रहता था। आज पूरा परिवार साथ होते हुए भी घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तभी बेटी का फोन आया, उसकी हंसी सुनते ही अम्मा का चेहरा खिल उठा। सावन की फुहारों के साथ जैसे घर में फिर वही पुरानी रौनक लौट आई। सबने महसूस किया कि रिश्तों में प्यार बना रहे तो हर विदाई के बाद मिलन खुशियों से भर देता है। अब यहाँ पर बताइए, रिश्ता शब्द आपके पास आ रहा है और याद आ रही है, घर है, प्यार है, विदाई है, तो हमने आपको हिंट दे दिया, मतलब यूं कि हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, बल्कि ये आपको हम हिंट दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। तो आप बताइए कि कौन से वो शब्द हैं जिनसे आपको गाने सूझ रहे हैं, और कौन से वो भाव हैं जिनसे आपके भीतर जज्बात पैदा हो रहे हैं, तो वो जज्बात भी साझा करते चलिए, और साथ में हमारी पहेलियों के जवाब भी।

अब भला बताइए कि कौन है ऐसा जिसने विदाई की पीड़ा को न सहा हो, तो अपने अनुभव साझा कीजिए। आपने विदाई की, आप विदा हुए कहीं अपने घर से। विदाई सिर्फ बेटी की नहीं होती है ससुराल जाते समय, विदाई वो भी होती है जब आप कहीं पढ़ाई के लिए देश विदेश की यात्रा करते हैं, शहर छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, हॉस्टल में जाके रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं। वो यादें, वो बातें, तमाम बातें साझा कीजिए। और अब हम शुरू कर रहे हैं सिलसिला, और देखिए कि क्या यही गाना आपने सोचा था कि हम पहले नंबर पर रखेंगे, यही गाना या कोई और गाना। तो चलिए आज के शब्दों को चुनिए, गानों को चुनिए और यादों को चुनिए, यादों को खंगालिए। शुरू कर रहे हैं सिलसिला परख फिल्म का गाना। बताइए हमें गीतकार और संगीतकार का नाम क्या है।

परक फिल्म का गाना था। गीतकार संगीतकार शैलेंद्र और सलील चौधरी, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, त्वरित जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है। और एक श्रोता नहीं बल्कि अनेक श्रोता लिख रहे हैं अब के बरस भेज मतलब बंदिनी फिल्म का गाना। तो इतने सारे श्रोताओं ने ये गाना लिखा है तो हमें लगता है वही गाना अब बजाया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्पणियां भी पढ़कर सुना दी जाए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दिल को छूने वाली है, पर पढ़ के मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा कि अपने बचपन की यादें बताऊं, बेटी की यादें साझा करूं। खैर, हमारा बचपन तो बहुत संघर्षमय रहा, माँ को तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी खेती बाड़ी के काम से, पर जब भी कभी नागपंचमी या राखी आती तो बाबा फोन करके पूछते रहते थे, आज भी पूछते हैं, बाई तू कदी ये मतलब तुम कब आ रही हो। और बहुत सारे श्रोता विदाई पर कुछ बातें लिख रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि विदाई सिर्फ बेटी की विदाई नहीं होती है, या जो लड़कियां हैं औरतें हैं सिर्फ आपकी विदाई नहीं होती, बल्कि आप अपने बेटे को भी विदा करते हैं, आप अपनी बेटी को विदा करते हैं जब वो पढ़ने के लिए घर

छोड़ते हैं, तो वो बातें भी साझा कीजिए। आप खुद हॉस्टल में रहे होंगे, वो यादें भी साझा कीजिए। और इसमें हम मिली जुली टिप्पणियां शामिल करते हैं, मिले जुले विषय को रखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उस समय बरखा की कुछ बूंदे उन आंखों से भी छलक जाएंगी जब एक माँ अपनी बेटी की विदाई के समय को याद करते हुए उसकी यादों की गुड़िया के खिलौने को बड़े प्यार से निहार रही होगी। और एक श्रोता ने लिखा है, अब के बरस तुझे धरती की रानी, मतलब बरस शब्द से इन्होंने ये गाना चुना है। तो शब्दों को पढ़ते रहिए और गाने चुनते रहिए। अब अगला गाना सुनते हैं बंदिनी फिल्म का। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने को लिखा है। अब इसके बाद बंदिनी फिल्म के गाने के बाद कौन सा वाला गाना आना चाहिए वो भी जरा आप चुनिए, बताइए हीरोइन कौन है इसमें। इस फिल्म में हीरोइन का नाम पूछना है आपको। फिल्म है बंदिनी।

वंदनी फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत और हीरोइन होती है फिल्म में नूतन। सभी श्रोताओं ने ये भी जवाब सही दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गजब, आपने तो शुरुआत के फिल्म परख के गाने से ओ सजना बरखा बहार आई, बिल्कुल ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन क्यों नहीं सोचा था, इसमें फुहार शब्द कहीं आता है ना, और इबारत में है, इबारत में जो कुछ लिखा है उसमें कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें आपको गाना जरूर याद आएगा। हालांकि अब एक गाना हम ऐसा सुनवाने वाले हैं जो शायद आपने बहुत कम सुना होगा, और उस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात होगी, कोई खास याद होगी तो जरूर साझा कीजिएगा। जरा इंतजार कीजिए, हम पहले टिप्पणी आपकी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हमने पहली जॉब जहां थी उसी नगर से दूसरी जगह जाना हुआ, तब हमारे मकान मालिक और उनकी पत्नी ने हमें अपने बच्चों को विदाई देते हुए ऐसे रोते हुए ढेरों प्यार बरसाते विदाई दी थी।

क्या बात है भाई। जब दरअसल अभी भी छोटे शहरों में जब बच्चे घर से पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी शामिल हो जाते हैं, या फिर जब बेटी अपने मायके आती है तो अड़ोसी पड़ोसी छतों से झांकते हैं और जो जिनसे बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है वो मिलने भी तुरंत आ जाते हैं कि बेटी अपने ससुराल से मायके आई है। ऐसा ही कुछ समा होता है अड़ोस पड़ोस के साथ। हालांकि महानगरों में ये चीजें कम होती हैं क्योंकि महानगरीय व्यस्तता आड़े आ जाती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि सावन का महीना बड़ा अच्छा माना जाता है, खास तौर से बहन बेटियों की यादें ताजा कर देता है। ये महीना एक तरह से प्रेम उमंग का महीना होता है। हमें वो दिन याद आते रहते हैं जब बहनें इस महीने में झूला डालकर झूला झूलती थी, हम भी उनके साथ झूले पर झूलते थे। उधर रक्षाबंधन की भी याद दिला देता है और सावन मास की तीज का त्योहार तो एक बहनों का खास दिन हुआ करता था। मोहल्ले की सब बहनें मिलजुल कर इस दिन को खास तौर से एक पर्व के रूप में आज भी मनाया करती हैं। जब बहनें ससुराल जाती हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ससुराल में चाहे उन्हें कितना भी सुख हो पर वो आंगन याद आता है जब साथ साथ खेला करते थे। पुराने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है और वो गुड़िये वाले दिन कैसे नहीं याद आते हैं कि गुड़िया का एक संसार होता था, गुड़िया गुड्डे का। तो जब एक बेटी विदा होती है तो अपने माँ से क्या कहती है कि मेरी गुड़िया संभाल के रख दो, अब खेलने का समय नहीं रहा। लेकिन मन में ये आस जरूर होती है कि माँ गुड़िया संभाल के रखेंगी और जब मैं लौट कर आऊँगी तो इन्हें खेलूँगी। कुछ यही बात ये गाना कहता है, ज़रा सुनिए। फिल्म है तुम लौट आओ। अगर आपको पता है तो किसकी आवाज़ में ये गाना है ज़रूर बताइए। इस गाने से जुड़ी कोई खास बात हो, कोई खास याद हो तो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

तुम लौट आओ फिल्म का ये गीत था। सरला भिड़े और शोभा जोशी के स्वर थे। अभी तक हमारे श्रोता नहीं बता पाए किनकी आवाजें थी, हमने आपको बता दिया। चूंकि ये गाना आपको बहुत कम सुनने को मिलता है इसलिए हमने जानकारी दे दी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज से 30 बरस पहले बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए अपने दो बच्चों को छोड़ने गई थी, वो याद आ गया आंख में आंसू के साथ। शायद

समझ पाएंगे कि बच्चों के जन्म के समय कैसा दर्द होता है। बिल्कुल वही दर्द मैंने उस दिन महसूस किया जब बच्चों को छोड़ा था। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदा दुनिया के सबसे मार्मिक शब्दों में से एक है। एक विदा ऐसी भी होती है कि अब इस जन्म में उससे मिलने की आस खत्म हो जाती है। ऐसी विदा जीवन भर दुख दे जाती है। बेटियों की विदाई में तो सुखम दुखम का क्रम चलता रहता है। विदा कैसी भी हो, जाने वाले कभी पूरी तरह से नहीं जा पाते। वे रह जाते हैं कोई पुरानी तस्वीर में, कोई अधूरी बातों में और उन जगहों में जहाँ हमने साथ मिलकर एक वक्त गुजारा था। एक श्रोता ने लिखा है कि परिवार में माता पिता भाई बहन का रिश्ता एक मजबूत डोर से बंधा होता है। रूठना मनाना चलता रहता है। बेटी की विदाई एक सूनापन सा एहसास देता है। बेटी के फोन पर हंसी सुनकर घर में खुशी और रौनक फिर से सबके मन में खिल उठती है। बस इन्हीं शब्दों से गाना चुनिए आप। बेटी शब्द इसमें आया है, विदाई तो है ही, रूठना मनाना है, हंसी है और फोन भी है। तो फोन शब्द से कौन सा गाना आपको याद आ रहा है, हम सुनवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी कुछ गाने सुझाएं। फिलहाल चोरी चोरी फिल्म का ये गाना सुनिए। रचना किसकी है आप बता सकते हैं और संगीतकार का नाम भी बताइए।

बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही भावुक गाना सुनाया, और इसके पहले जो गाना सुनवाया था बिछड़ी मेरी सहेलियां तुम लौट आओ, इसके लिए भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और ज़्यादातर श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहली बार सुना, ये गाना हमने कम सुना, और बहुत ही भावुक कर देने वाला ये गाना था। सचमुच कई बार हम गीत सुनकर ही जज्बाती हो जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज मुझे 35 साल पुरानी बात याद आ गई, जब हम छत्तीसगढ़ से ट्रांसफ़र होकर आ रहे थे तो जो मकान मालकिन थी, जिसे वहाँ दाई कहते थे, वो इतना रोई और एक बेटी की तरह मुझे विदा की। रास्ते के लिए खाना भी रखा और साड़ी भी दी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सावन के गीतों को सुनने का आनंद मिलेगा। सावन के दिनों में अपनों से बिछड़ने का दुख होता है, पर याद कर घर जाकर मिलने की आस भी रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब वो खुद विदा की जाती है और बेटी होगी तो उसे शादी करके विदा किया जाता है, वो मंजर बहुत भावहीना होता है। अगर बेटी या बेटा पढ़ने या नौकरी के लिए विदा होते हैं तो एक एहसास होता है लौट के फिर आएंगे। मेरी बेटी पुणे से कोंकण नौकरी के लिए गई थी, तब पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू देखे थे। सचमुच विदा किसी भी तरह का हो, विदा दुख देता है, आंखों में आंसू ला देता है। बहरहाल अब चलिए जरा बरखा की बूंदों में भीगा जाए। चिराग फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और इसमें पहेली है। पहेली ये कि आपको बूझना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में गीतकार संगीतकार। हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और गीतकार संगीतकार का नाम पूछिए। फिल्म चिराग। और भी कोई गाना याद आ रहा है इन शब्दों पर इबारत वाले, वो भी आप लिखते चलिए। अगर बहुत सारी फरमाइश आ जाएगी कि इन यही गीत है जो इबारत वाले शब्द है, तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे।

इसके बाद बताइए फोन वाला गाना कौन सा याद आ रहा है आपको, जिसमें जिस गाने में फोन शब्द हो। बेटी जब जाती है ससुराल तो फोन करती है ना, टेलीफोन, तो बताइए वो गाना।

0: चिराग फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था, हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, आशा पारिख और सुनील दत्त। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई की बात आई तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब माता पिता पढ़ाई करने या जॉब करने अपने बच्चों को स्टेशन छोड़ने जाते हैं, मम्मियों के आंसू नहीं रुकते, जिसकी मैं स्वयं साक्षी हूँ। भोपाल से हम सफर एक्सप्रेस पुणे मुंबई चलती है, उन माओं में मैं भी शामिल थी जिनके आंसू सबको जानते हुए रुक नहीं रहे थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सावन की बात है, ऐसा लगता है कि ममता जी की आंखों में भी सावन होगा। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने रुला दिया वो गाने सुनाकर, मेरे ख्याल से इस गाने की बात है, बिछड़ी मोरी सहेलियां और अम्मा मेरे बाबुल को भेजोरी, ये ऐसे गाने हैं जिन्हें सुनकर किसकी आंखें नम नहीं होती हैं। तो इन्होंने आगे लिखा है कि आज न मम्मी है न पापा है, एक भाई है हमसे बहुत प्यार करता है लेकिन वो अपने परिवार के लिए मजबूर है, इसलिए फोन पर ही बात हो जाती है, आज मन बहुत भावुक हो रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि परख फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया, बेहद लोकप्रिय गीत, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना और बरखा से जुड़ा हुआ, बारिश की रस भरी फुहार, किस तरह से पेड़ पौधों के साथ साथ हमारे दिलों में भी प्रेम रस का संचार करता है ये गाना, उसी का वर्णन है इस गीत में। सलिल चौधरी के शास्त्रीय लोक और पहाड़ी धुनों को मिलाकर बनाए हुए गाने इतने ज्यादा मीठे लगते हैं सुनने में कि जब भी हम इन्हें सुने तो कितने भी तनाव में हो मन प्रसन्न हो जाता है। और इन एक श्रोता ने और लिखा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ये गाना सुनवा देंगे, कई बार उम्मीद के विपरीत गाना सुनवाने में भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन अब जो गाना सुनवाएंगे वो हम आपकी उम्मीद के मुताबिक ही सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। हमने पूछा था कि कौन सा गाना फोन पर याद आ रहा है, टेलीफोन पर, कि जब बेटी विदा होती है, जो अम्मा है इस इबारत में कि अम्मा कहती हैं कि फोन आया बेटी का और उनके सामने यादें साझा हो गई, तो फोन वाले गाने हमने आपसे पूछे थे। अभी तक तो सिर्फ इसी गाने की फरमाइश आई है। फिल्म का नाम बता सकते हैं तो बताइए, जरा जल्द बताइएगा फिल्म का नाम।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।
0: किसकी है आवाज ये भी बताइए।
1: देवी जब

मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। आप बताइए अपने अनुभव कि टेलीफोन जब करते हैं तो कितनी देर बतियाते हैं, और टेलीफोन से जुड़ी हुई कौन सी याद है, कोई खास बात है तो वो आप साझा कर सकते हैं। हमने पूछा था फिल्म का नाम पतंगा, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, और शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजें थी, ये भी सही बताया हमारे श्रोताओं ने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बात 1974 की होगी, जब हम नौकरी की खोज में जम्मू गए थे, जहां एक मित्र मिल गया जिसने महीने भर अपने घर रखा, और नौकरी न मिलने पर वो हमें छोड़ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर आया था। ट्रेन चढ़ने पर भी मैं रो रहा था और वो भी रो रहा था। कुछ वर्षों तक बातचीत पत्रों से होती रही, लेकिन कुछ समय बाद उसके खत नहीं आए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब सावन की पहली फुहार पड़ती है तो उसकी विदाई का दिन याद आ जाता है। भीगी आंखों से उसे विदा किया था और मुस्कुरा कर कहा था खुश रहना। उस दिन समझ आया कि माँ बाप की दुआओं में कितना साहस छिपा होता है। बेटी चली जाती है लेकिन उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी यादें हमेशा घर के आंगन में गूंजती रहती है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पुरानी यादों में ले जाकर आंखों में आंसू ले आए। आज माता पिता बहन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यादें ताजा हो गईं। उस घर की जो जन्मभूमि रही, जहां छोटा सा परिवार हंसी खुशी सपनों के साथ रहता था। सावन माह कुछ ज्यादा ही याद आता है। ऐसा कोई सावन नहीं गुजरा जब माँ के पास नहीं गई। छुट्टियां नहीं मिलने पर भी एक ही दिन में आना जाना कर लेती थी। अब बरसों से सावन उदासी लेकर आता है, बस यादें ही शेष हैं। यादों में विदाई सबके बसा हुआ

सारे श्रोता आज विदाई की बात लिख रहे हैं और अपनी अपनी यादें खंगाल रहे हैं। जरा अब एक और गाना सुनिए इसी तरह और साझा कीजिए अपनी यादें और साथ में हमें ये भी बताइए कि किसकी है ये आवाज। हीरो हीरोइन का नाम तो आपको पता ही होगा। फिल्म हम आपके हैं।

बहन शब्द से कोई गाना याद आया आपको? जरा बताइए। इबारत में भाई बहन है, और भाई बहन वाला गाना याद आए तो जरूर बताइए।

हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बूझा, शारदा सिन्हा की ये आवाज थी और कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। हालांकि इसमें हीरो हीरोइन होते माधुरी दीक्षित, सलमान खान के भी बताया है श्रोताओं ने। और विदाई से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का टॉपिक बहुत ही भावुक कर देने वाला है, अभी मेरी बिटिया की विदाई का समय तो दूर है पर आज ही अपनी विदाई का वक्त याद कर आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। और इन्होंने बाबुल मोरा ने यह छूटा जाए ये गाना भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत, आज की इबारत हर बेटी के मन में बसे सावन की साझा स्मृति है। सावन केवल पेड़ों पर नहीं उतरता, वो यादों की शाखों पर भी झूलता है। भीगी दोपहर, आंगन में रखी गुड़िया और अम्मा की नम आंखें मिलकर उस रिक्तता को स्वर देती हैं, जिससे हर बेटी की विदाई घर की चौखट पर छोड़ जाती है। वो गुड़िया महज एक खिलौना नहीं, बचपन की आखिरी अमानत है। और सावन आया केवल ऋतु का संदेश नहीं, बल्कि उस बेटी की मौन पुकार है जो मायके की दहलीज, अम्मा की गोद और बाबुल के स्नेह को एक बार फिर जी लेना चाहती है। पर माँ का मन वहीं ठहरा रहता है जहाँ विदा होती बेटी ने आखिरी बार मुड़कर देखा था। चलिए, अब हमने आपसे पूछा था भाई बहन वाला कौन सा गाना आपको याद

इस गाने को सुनते हुए बहुत सारे श्रोताओं को भाई बहन वाले गाने याद आए और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है किसी महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो भाई बहन वाले गाने बहुत याद आते हैं। और शारदा सिन्हा के लिए लिखा है कि शारदा सिन्हा बिहार की कोकिला कही जाती थी। और एक श्रोता ने और लिखा है भाई बहन का त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन का गीत, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, फूलों का, तारों का, सबका कहना है और बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गाना लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि शायद वो सावन भी आए जो बहन सा रंग ना लाए, बहन पराए देश बसी हो अगर वो तुम तक पहुंच ना पाए, ये कविता की पंक्तियां लिखी हैं इन्होंने। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहन पर फिल्म छोटी बहन का गाना याद आ रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। और गाने सुनते जा रहे हैं, एक श्रोता ने लिखा है गाने सुनते जा रहे हैं, आंखें साफ हो रही हैं, भावुक हो रहे हैं, बस यही चल रहा है आज के प्रोग्राम के साथ। और एक श्रोता ने लिखा है सच्चा झूठा फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मुमताज इस फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं। और टेलीफोन से जुड़ी हुई हमने बात पूछी थी कि टेलीफोन वाला जो गाना सुनवाया तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, तो श्रोताओं ने लिखा है कि

अगर फोन पर पिता पुत्र बात कर रहे हैं तो केवल कुछ मिनट मतलब की बात होती है, अगर माँ बेटी की बातें हों तो समय असीमित होता है, यूँ समझ लीजिए घंटों घंटों कुछ मिनट के समान होते हैं। एक श्रोता ने बिल्कुल सही बात है कि जब माँ बेटी बतियाने लगती हैं तो भूल जाती हैं कि हम टेलीफोन पर बतिया रहे हैं। लेकिन आजकल जो दो दोस्त बात करते हैं तो वो भी अनलिमिटेड बातें होती हैं, पता नहीं चलता समय का। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आठवीं कक्षा में पढ़ने के लिए भेजा था अपने बड़े बेटे को, तो पति पत्नी दोनों को कई दिनों तक याद आती थी। सभी समझते थे कि पढ़ाई करने गया है, लेकिन परिवार से अलग होने का बिछोह ज्यादा होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने 2002 में लैंडलाइन फोन के लिए आवेदन किया था, बहुत इंतजार के बाद हमें फोन मिला था। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं अनाउंसर बनी थी, इलाहाबाद से रीवा जा रही थी, 3 जुलाई 1987 को सुबह 6 बजे की बस पर बैठी थी और 9:30 पर रीवा पहुंची थी। बस की खिड़की के बाहर मुंह करके बैठी रही, पानी बरसता रहा और घर छोड़कर मैं रोती रही कि कहीं हमारे पापा हमारी रोती हुई शक्ल ना देख लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब जरा रूठने मनाने की बात भी इबारत में हुई थी, तो ये गाना सुनिए और बताइए कौन है हीरोइन, और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम भी बूझिए। फिल्म का नाम सीमा।

सीमा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने पूछा था कौन है कलाकार, सभी श्रोताओं ने बताया नूतन। और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां हम शामिल कर दें, उससे पहले जो अब हम गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके बारे में एक सवाल पूछ लें। दाता फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, उसमें आपको पूछना है कौन है इस फिल्म में कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है। और आपको बता दें, एक श्रोता ने लिखा है सच्चा झूठा फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया ये अमर रहेगा, क्योंकि जैसा किशोर दा ने गाया है ऐसा कोई गा नहीं सकता, उन्होंने जो भाव से गाया है वो भाव अमर है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई शादी के बाद तो विदाई होती है, विदाई भाई बहन से, बिछड़ने का वो बचपन जहां हम मिलकर खेले झगड़े किए फिर मिल गए, जब जब मायके जाती हूँ तो आते समय आंखें अपने आप भर आती हैं, सालों बीत जाने के बाद भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख आज भी हमें सताता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी जब अपने ससुराल से पीहर मेरे घर आती है और कुछ दिन रहने के बाद जब उसे वापस ससुराल जाना होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि घर पूरा सूना हो गया है। चलिए सुनते हैं ये गाना।

दाता फिल्म का ये गाना सुनते हुए बहुत सारे श्रोता फिर भावुक हो गए और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आने लगी। एक श्रोता ने अभी भी लिखा कि मैंने अपनी विदाई की बातें तो बताई ही नहीं, मेरी विदाई पर सारे घर वाले हम लोगों को ट्रेन पर छोड़ने आए थे, ट्रेन चल रही थी और वो लोग भी रोते रोते चलते रहे, आज कोई भी न छोड़ने वाले हैं न रोने वाला है। अब दरअसल व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई हैं लोगों के घरों में कि अब वो जमाना नहीं रहा कि एक कोई जाता है परिवार से और 10 लोग परिवार के छोड़ने आते हैं। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफर हो रहा है खत्म। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी मुस्कुराहट पर। मुस्कुराहट चेहरे का केवल एक भाव नहीं बल्कि मन की सुंदर भाषा है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। एक छोटी सी मुस्कान किसी उदास मन में आशा का दीप जला सकती है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी अपनापन जोड़ सकती है। मुस्कुराहट वो फूल है जो बिना मौसम के भी खिलता है। ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तित्व में भी आकर्षण भर देती है। कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति मुस्कुराना जानता है वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और विश्वास के साथ करता है। कभी कभी किसी की एक सच्ची मुस्कान थके हुए मन को सुकून दे जाती है। ये रिश्तों में मिठास घोलती है, दूरियों को कम करती है और वातावरण को सकारात्मक बना देती है। मुस्कुराने के लिए किसी बड़े कारण की आवश्यकता नहीं होती। कई बार छोटी छोटी खुशियां भी होठों पर मुस्कान ले आती है।

मुस्कुराहट ईश्वर का दिया हुआ ऐसा उपहार है जिसे बांटने से कम नहीं होता बल्कि और भी बढ़ता जाता है। ये जीवन की राहों में आशा, प्रेम और विश्वास का प्रकाश फैलाता है। मुस्कुराहट वो खामोश कविता है जिसे चेहरा लिखता है और दिल पढ़ लेता है। कहते हैं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हजार शब्दों से

अधिक प्रभाव डालता है। किसी परेशान व्यक्ति को दी गई छोटी सी मुस्कान उसके मन का बोझ हल्का कर सकती है। ये वो अनमोल उपहार है जिसे देने में कोई खर्च नहीं होता, फिर भी इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। मुस्कुराहट जीवन की कठिन राहों में एक सहारे की तरह होती है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तब भी चेहरे पर बनी रहने वाली मुस्कान हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।

मुस्कुराहट रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ाती है। घर में माता पिता की मुस्कान बच्चों को सुरक्षा का एहसास देती है, दोस्तों की मुस्कान मित्रता को गहरा बनाती है और किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान भी पल भर में एक सकारात्मक संबंध बना सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं, ऐसे में मुस्कुराहट मन को शांति देने वाली औषधि के समान है। ये वातावरण को हल्का बनाती है और जीवन को सुंदर दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। मुस्कुराहट केवल खुशी के समय की पहचान नहीं है, बल्कि ये संघर्षों के बीच भी उम्मीद बनाए रखने की ऐसी शक्ति है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही मुस्कुराता हुआ इंसान कठिनाइयों के बीच भी अपनी सकारात्मकता बनाए रखता है। एक सच्ची मुस्कान चेहरे की सुंदरता से अधिक हृदय की सुंदरता को दर्शाती है। मुस्कुराहट वो दीपक है जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में उजाला भर देता है। इसे बांटते जाइए, क्योंकि यही जीवन को सरल, सुंदर और मधुर बनाती है।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है।

0: मूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान दो चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। नगर से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
1: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
2: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
1: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा।

0: बहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में राजा मेहदी अली खां के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। आइए अब सुनते हैं माय लव फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: साज और आवाज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कुमार बाराबंकी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: परवाना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तेली,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हमराही फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल थे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं विश्वास फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में, गुलशन बाबरा के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत।

0: ही सहेली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती भी तुम्हें मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: मंजरी आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती बताओ कैसी हो, कैसा लग रहा है आज का दिन तुम्हें, कैसा लग रहा है?
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बीच में जब धूप खिल जाती है ना तो मौसम एकदम खुशगवार हो जाता है।
0: और खिली धूप में जब बारिश के भीगे हुए पत्ते होते हैं ना तो बिल्कुल चमकदार लगते हैं, धूले साफ लगते हैं, तो मन बड़ा वैसे भी आनंदित हो जाता है। और बारिश लगातार होती है तो लगता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भाई धूप थोड़ी निकले, क्योंकि कपड़े वपड़े सूखे, जो सीलन है वो सब गायब हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और देखो आज हम लोग बात भी करने वाले हैं, विषय बता देते हैं पहले कि उपयोगी टिप्स में हम बात करने वाले हैं बारिश में घर की सफाई।
1: तो आप लोग किस तरीके से बारिश में अपने घर की सफाई करते हैं या क्या आप उपाय अपनाते हैं अपने घर को साफ रखने के, और जो थोड़ी सी सीलन वाली एक महक सी आ जाती है उसको दूर करने का आप क्या उपाय करते हैं, तो आप हमें लिखकर भेजिए।
0: और देखो बहुत सारे हमारे साथियों ने संदेश भी भेज रखे हैं इस पर, और मुझे कुछ कहना है जो आज हम सेगमेंट लेते हैं उसमें, वो चिट्ठियों का जमाना।
1: तो भाई वो चिट्ठियों का जमाना जो था ना वो कभी पुराना हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल, क्योंकि यादें बसी हुई हैं,
1: मन में बसी हुई हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी आप भेजते थे चिट्ठियां और आपके पास चिट्ठियां आती थी तो उसका जो आपका अनुभव है वो आप अपना अनुभव जो है वो हमें लिखकर भेजिए, हमारे साथ साझा करिए उन यादों को, तो हम एक बार फिर से उन पलों को जी लेंगे।
0: बिल्कुल जी लेंगे। और आज और क्या हम लेकर के आए हैं?
1: आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत कोलक्कयिल देवी की अम्मा जो पर्यावरणविद हैं, और साथ ही हम लेकर आए हैं लुप्त होती पारंपरिक कलाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आपके पास जो भी इनके बारे में जानकारी है आप हमें लिखकर भेजिए, और आप किस तरह से इनसे जुड़े हुए हैं अगर ऐसा भी कुछ है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।
0: तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं हम लोग गीत, फिर आगे करेंगे बातें।
1: बिल्कुल।

0: सदाओं के साथ थिरकते कदम
1: चलते रे इश्क में पड़ जाते
0: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओ केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: हाँ तो मंजरी, अब हम बात करते हैं अपने जो नया सेगमेंट जो हम ये लेते हैं कहानी पद्मश्री की। तो इसमें हम आज बात करेंगे कोलक कैल देव की अम्मा जो कि पर्यावरणविद हैं, यानी पर्यावरण की रक्षा कह समझ लीजिए। तो देव की अम्मा के दादाजी जो थे वो एक वैद्य थे। उनका देव की अम्मा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उन्हीं की वजह से देव की अम्मा में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनका विवाह हुआ गोपाल कृष्ण पिल्लई से जो एक अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनके परिवार में सभी महिलाओं को कृषि कार्य करना अनिवार्य था
5: और देव की अम्मा 1980 तक अपनी सास के साथ

0: उनकी खेती में सहयोग करती रहीं। जब उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया गया, उसके 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे एक पौधा लगाया और इस तरह उनकी बागवानी की शुरुआत हुई।
1: बिल्कुल। और केरल के अलप्पुझा जिले में उनके घर के आंगन में उन्होंने थोड़े ही समय में एक हरा भरा जंगल उगा लिया था। देव की अम्मा याद करते हुए कहती हैं कि मैं पहले धान की खेती बड़े चाव से करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे धान की खेती छोड़नी पड़ी। लेकिन इससे मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला।
0: परिवार के सदस्यों की मदद से मैंने 35 साल पहले पौधे लगाना शुरू किया था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह जो है वो जंगल बन जाएगी। उनके पति और परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पति हर दिन उनके लिए बीज और पौधे लाते थे। आज भी उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त उन्हें नियमित रूप से पौधे और बीज भेंट करते हैं।
1: बहुत बहुत ही अच्छी बात
0: जी
1: है। एक इतनी अच्छी चीज़ की शुरुआत करी है ना, कि बीज और पौधे देना मतलब कि आप पूरी प्रकृति को
0: बढ़ावा
1: सुरक्षा
0: दे
1: का
0: रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: जी
1: दे रहे हैं। और देवकी अम्मा कहती हैं कि वन संरक्षण में मुझे अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके बच्चों से भरपूर सहयोग मिलता है और वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं और वन की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा करना चाहते हैं। उनकी पोते पोती छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते हैं और उनके इस नेक काम में पूरे उत्साह से उनकी मदद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पोती ने पढ़ाई के लिए वनस्पति विज्ञान को चुना ताकि देवकी अम्मा के इस नेक काम में वो योगदान दे सकें।
0: और उनकी बेटी प्रोफेसर डी थैंकमणि, जो तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण विभाग में प्रमुख हैं, कहती हैं, 4 पीढ़ियों ने मेरी माँ के वृक्षारोपण के इस सफर में अपना योगदान दिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अम्मा की पोती पोते और उनके बच्चे पुराने पौधों की स्थिति देखने और नए पौधों को लगाने के लिए घर आते थे। और वो कहती हैं कि वृक्षारोपण को लेकर जो उत्साह और उमंग होती है वो किसी त्योहार जैसी होती है। पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य मानते हुए देव की अम्मा पेड़ पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए केवल हरी जैविक खाद का ही उपयोग करती हैं। उनके इस जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, चीड़, बांस और उनके जैसे तमाम, करीब गिनती नहीं कर सकते, लेकिन अधिक से 3,000 से भी अधिक वृक्ष वहां पर हैं।
1: बिल्कुल। और लक्ष्मी थारू, चीनी संतरा जैसे कुछ दुर्लभ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां और फूल देने वाले 200 विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के अलावा इस जंगल में तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल जैसे पशु भी हैं। और देव की अम्मा अपने काम पर गर्व करते हुए कहती हैं, पक्षियों और जानवरों को जाल लगाकर प्रतिबंधित करने के बजाय मैंने उनके लिए पानी और घोंसले की व्यवस्था की है।
0: परिणाम स्वरूप हम जंगल में मोर, बंदर और अमूर बाज, नील गाय, काला पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती हैं, पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है।
1: बिल्कुल। उनका कहना है, हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है। उन्होंने जल समस्याओं से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब ये वन एक शैक्षिक और पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, शोधकर्ता, छात्र देवकी अम्मा से सामाजिक वानिकी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं
0: और देवकी अम्मा उन्हें विभिन्न वृक्षों के बारे में बताती हैं, उन्हें उनके महत्व को समझाती हैं और सतत उपयोग एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के तरीके बताती हैं। अनुरोध करने पर देवकी अम्मा जरूरतमंदों को पौधे भी उपलब्ध कराती हैं। उम्र के कारण अब वो नए पेड़ नहीं लगा सकती हैं और न ही जंगल की देखभाल कर सकती हैं।
1: बिल्कुल। और लेकिन पेड़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से टहलने जरूर जाती हैं। उनकी बेटी थैंकमणि कहती हैं, 5 एकड़ जमीन की देखभाल करना आसान काम नहीं है, लेकिन हर सुबह वो 5 मिनट के लिए ही सही टहलने जरूर जाती हैं। क्योंकि वो बहुत कम ही पौधे लगा पाती हैं, इसलिए वो पेड़ों से बातें करती हैं। इस तरह उन्हें जंगल की उपेक्षा का एहसास नहीं होता।
0: और देखिए, अम्मा को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी कई पुरस्कार प्राप्त हैं, जैसे वन मित्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार और स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार, भूमि मित्र पुरस्कार और साथ ही अलापुझा जिले सामाजिक वानिकी पुरस्कार भी उनको

0: प्राप्त हुआ है।
1: बिल्कुल। और पर्यावरण के प्रति उनके 4 दशकों के समर्पित योगदान को मान्यता देते हुए बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें हम सभी को बचाने वाले 10 नायकों में से एक के रूप में भी शामिल किया था। और अब 2026 में देवकी अम्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
0: देखो क्या कितनी अच्छी सी उन्होंने ये चीज करी कि पौधे लगाने शुरू किए। और उनकी इस कहानी से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी आसपास की जगहों को हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारा घर है, शहर है, उसके आसपास का सभी वातावरण बहुत खूबसूरत हो सके।
1: और ये देख के भी अच्छा लगेगा ना कि कितना रचनात्मक कार्य हमने किया है कि देखो जो बीज बोए थे, जो छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, वो कितने बड़े पेड़ बन गए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: मंजरी, डोर से तो पैर की बंध जाते हैं
1: बिल्कुल बंध जाते हैं, क्योंकि
0: ना।
1: प्यार चीज ऐसी है कि वो हर को अपने आप में बांध लेता है, और जब जहां पर पेड़ पौधों से प्यार होता है
0: बिल्कुल।
1: तो उसका अलग ही, उसकी अलग ही बात होती है। और जो हमारी जो कलाएं होती हैं उनका भी एक अलग रंग होता है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और जो हमारी परंपरागत जो कलाएं थी ना, वो आज थोड़ी बहुत ऐसे हो रहा है ना कि लुप्त सी होती जा रही है। कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लुप्त सी होती जा रही हैं, और उनको सहेजना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कुछ कलाओं की जो लुप्त हो रही हैं, और पूरी दुनिया से हमारा देश अलग ही इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो विविध तरीके की संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं का देश माना जाता है। और इस सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र में हमारी समृद्ध लोक कलाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि आधुनिकीकरण की जो इस समय दौर चल रहा है उसमें, उसकी तेज गति के बीच में इनमें से कई पारंपरिक कलाएं विलुप्त होने के

0: खतरे का सामना भी कर रही हैं और इस देश के हर क्षेत्र और समुदाय ने अपनी एक विशिष्ट कला को जन्म दिया है, चाहे वो मधुबनी हो चित्रकला और या फिर वारली कला, पट्टचित्र, फड़ चित्रकला, कठपुतली, मिट्टी के खिलौने, हथकरघा, बुनाई, लोक नृत्य, लोक संगीत और बांस बेत की शिल्पकला जैसी अनगिनत कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। लेकिन आज समय के बदलते प्रवाह में ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरती तुमने। और इसी के साथ ही कश्मीर की जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के जीवंत पट्टा चित्र कला, हर एक कला के रूप में अपने साथ सदियों का एक इतिहास है, उनका परंपरा और कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। फिर भी जैसे जैसे शहरीकरण फैलता जा रहा है, हमारी सदियों पुरानी विरासत और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके लुप्त होते जा रहे हैं। और जैसे कि पट्टाचित्र, जो कि उड़ीसा की एक लोक कला है जिसमें कपड़े या कैनवास पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, इन चित्रों के विषय अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं और रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। पट्टाचित्रों की जो अनूठी विशेषता होती है, और इनमें पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
0: बिल्कुल, ये पर्यावरण को, देखो जो परंपरा अगर तुम्हारी जो कलाएं थी पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है। और बिदरी वेयर, जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इससे इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं और जटिल डिजाइन और पैटर्न तेज छीनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं। बिदरी वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था। हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल की उच्च लागत के कारण ये शिल्प भी अब कुछ ही कारीगरों द्वारा किया जाता है।
1: और इसके साथ ही सुजुनी, जो कि बिहार की एक कढ़ाई कला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन धागों से ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, ये शिल्प परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और रजाई और चादरों को सजाने का एक तरीका था। हालांकि सस्ती मशीनी कपड़ों की उपलब्धता के कारण सुजनी कढ़ाई की मांग में गिरावट आई है। इसके अलावा धोकरा कला, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में उत्पन्न धातु ढलाई की एक कला है, इसमें मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल, इसके साथ में हम धोकरा कला अपनी अनूठी शैली के लिए भी जानी जाती है और इसका उपयोग होता है अक्सर मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं को बनाने में। और कठपुतली कला, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है जो आज भी कहीं कहीं होती है, तो जो कभी गांव गांव के लोगों का मनोरंजन करती थी, कठपुतली के माध्यम से लोक कथाएं, वीर गाथाएं और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन आज क्या है कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के दौर में ये कला भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है।
1: बिल्कुल, और इसी प्रकार बहुरूपिया कला भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आरती, कलाकार विभिन्न पात्रों का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देते थे। लोक नाट्य की कई विधाएं भी आज संकट में है। महाराष्ट्र की तमाशा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, कर्नाटक का यक्षगान, बंगाल की यात्रा, उत्तराखंड की पांडवानी जैसी अनेक प्रस्तुतियां कभी जनजीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, आज इनके दर्शक और कलाकार दोनों घटते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और हम बात करें तो इसके अलावा पिंजराकारी, जो कि कश्मीर की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ हस्तकला है जिसमें देवदार जैसी मजबूत जो लकड़ी होती थी उस पर बिना कीलों या धातु के सहारे, सोचिए, अत्यंत बारीक जालीदार डिजाइन तैयार किया जाता है। ये कला मुख्यतः खिड़कियों, दरवाजों, रोशनदानों, बालकनियों और धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों की सजावट में प्रयोग की जाती रही है।
1: और इसकी विशेषता यह है कि ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इतनी कुशलता से जोड़ा जाता है कि उनसे सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बन जाती हैं। लेकिन बढ़ती लागत, सीमित बाजार और नई पीढ़ी की घटती रुचि के कारण पिंजराकारी और पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी आज संकट का सामना कर रही है। पिंजराकारी और कश्मीरी नक्काशी केवल हस्तकला नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धैर्य, सृजनशीलता और शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है। आदि कलाएं तो इतनी सारी हैं कि एक उसमें समेटना बहुत ही मुश्किल होता है।
0: बिल्कुल, इसकी तैयारी करेंगे कि हम अगली बार और कलाओं को लेकर आए जो लुप्त होती जा रही हैं। तो ये जो पिंजराकारी जो कला है सच में बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। तो इस तरह की जो कलाएं होती हैं जटिल तो होती ही हैं डिजाइन और पैटर्न से, लेकिन इनको हम फिर भी करते हैं तो इनको सहेजना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम गीतों को भी सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो, इतना प्यारा सा ये गीत हम लोग ने सुना, और जो हमारी लोक कलाएं हैं उसके बारे में क्या संदेश लिखा हुआ है?
1: बहुत से संदेश आए हैं। तो एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि भारत की लुप्त होती पारंपरिक कलाएं हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का अनमोल हिस्सा हैं, जो आधुनिकता और मशीनी युग के प्रभाव से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कठपुतली कला है और सिक्की घास की कला और आला गायन शामिल है।
0: और देखो, बातें करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल, और छोटे से अंतराल के बाद फिर हम लोग सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में फिर सभी का करते हैं स्वागत। तो आरती बताओ, कौन सा संदेश हम लेकर पढ़ने वाली हो?
1: बिल्कुल, लेख हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने, और चिट्ठियों की इतनी इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था कि हमने सोचा कि पहले इन्हीं ले लेते हैं सीखो, फिर हम कलाओं की बात करेंगे। तो चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से मन के जज्बात जो थे वो कागज पर उकेर दिए जाते थे। डाके जब घर के सामने घंटी बजाते हुए निकलते थे तो दौड़कर दरवाजे पर आ जाते थे कि शायद हमारी भी कोई चिट्ठी हो। रक्षाबंधन पर भाई को लिफाफे में रखकर सुंदर राखियां, कुमकुम, अक्षत भी भेजे जाते थे। फिर जब जब जवाब आता था तो उस चिट्ठी को भी बार बार पढ़ते थे और बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसे कितने ही पत्र हैं जिन्हें आज भी किसी की यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है।
0: और देखो
1: तो
0: हमारे
1: इतना प्यारा सा था ना कि
0: यहाँ
1: रुका ही नहीं गया।
0: देखो हमारे साथी लिखते हैं, आरती, पारंपरिक कलाएं हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। और लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कठपुतली, चित्रकला और कई अन्य कलाएं हमारी पहचान को जीवंत बनाए रखती हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, मशीनों के बढ़ते उपयोग और बदलती रुचियों के कारण ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अनेक कलाकारों को उचित सम्मान और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाने से नई पीढ़ी भी इन कलाओं से दूर होती जा रही है। यदि समय रहते इनका संरक्षण, प्रचार प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। पारंपरिक कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बहुत सही बात आपने लिखी है और हमें अपनी कलाओं को बचाने का प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमारी जो पीढ़ी आ रही है उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कलाएं थी हमारे यहाँ। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि लुप्त होती जो पारंपरिक कलाएं हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा लगा। आजकल हमारी जो पारंपरिक कला है जैसे कि लोक थे, लोक संगीत का ये बहुत ही सुनने में ज्यादा अच्छा लगता था, वो भी कम हो गया है। नुक्कड़ नाटक भी हुआ करते थे, वो भी अब कम हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग इन सब जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको देखना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो सुनना ही पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन सब चीजों की वापस जाना चाहिए जो इस पारंपरिक कला के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए हमें। और ऐसे ही हम उनको कर सकते हैं जब हम जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको जीवित रखें, तभी हम उनकी सहायता कर सकते हैं इस तरह से।
0: बिल्कुल। और लुप्त होती है पारंपरिक कलाएं के बारे में लिखते हैं हमारे साथी, भारत अपने समृद्ध कलाकारों का एक महत्वपूर्ण देश रहा था और रहा है भी, और अब वो भी है। भले ही पूजा स्थलों पर उकेरी गई कला को अब उतने तन्मयता से हम आज के इस मोबाइल युग में नहीं उकेर रहे हैं, किंतु समय के साथ लुप्त हुई कलाओं की तरफ अग्रसर तो हम हो ही रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करने में आगे आते हुए विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं, किंतु अभी भी बहुतेरी कलाएं लुप्त प्राय ही हैं। और उस तरफ भी हमें अग्रसर होते रहना चाहिए क्योंकि अभी हम अपने रोजी रोटी के लिए ही इनके वर्णन कर रहे हैं, जबकि इन कलाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही विशाल है। और कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी कला है आपको आती है, आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को जो कलाएं आती हैं, तो उनको सबको सिखाना शुरू करें, और सीखने की एक ललक भी होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, तो आप कला को बहुत आगे तक जीवंत रख सकते हैं।
1: क्योंकि जो ये कलाएं हैं ना, ये हमारे देश की पहचान है, इनको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अब हम एक गीत सुने।

0: जब
1: जब
0: जब
1: जब
0: तुम मेरे सामने आए, लेकिन
1: जब
0: हम
1: जब ये चिट्ठियों के
0: हाँ
1: संदेश मेरे सामने आए तो बिल्कुल उन पे संयम रहता ही नहीं है।
0: और जब जब चिट्ठियां घर में आती हैं तो उनको लेने के लिए, उनको कि आज हम सबसे ज्यादा चिट्ठी उठा ले, हम पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग ही मजा आता है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो हमारे साथी क्या लिखते हैं इसके
1: हमारे
0: बारे में?
1: साथी लिखते हैं, चिट्ठियों का वो जमाना भी क्या खूबसूरत था, कागज पर लिखे हर शब्द में दिल की धड़कन बसती थी, डाकिये की आहट सुनते ही उम्मीदें दरवाजे तक दौड़ जाती थीं, स्याही से लिखे अल्फाज बरसों तक यादों की खुशबू महकाते रहते थे, ना कोई जल्दबाजी थी, ना एक पल में जवाब पाने की चाह, बस इंतजार था अपनापन।

0: था और रिश्तों की सच्ची गर्माहट थी। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन हाथों से लिखी चिट्ठियों जैसा एहसास, अपनापन और भावनाओं की गहराई आज भी बेमिसाल है।
1: क्या बात है, और बहुत लोगों ने चिट्ठियां संभाल कर भी रखी होंगी आरती। और हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है, जो मजा खत यानी चिट्ठियों के इंतजार में हुआ करता था, अब वो कहाँ। चाहे वो माता पिता हो या पति पत्नी या हो भाई बहन, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से सब छीन गया है। और वाकई में सही बात है, चिट्ठियां लिखना लोगों का कम हो गया है। और एक साथी लिखते हैं कि आज विषय वस्तु अच्छे हैं, खासकर चिट्ठियों का जमाना। उंगलियों के कुछ स्पर्श से मीलों दूर बैठे व्यक्ति का संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता। आज का संचार माध्यम के तीव्र शोर के बीच कहीं पीछे छूट गया है वो शांत, धैर्यवान और आत्मीय चिट्ठियों का जमाना। वो एक ऐसा दौर था जब संदेश सिर्फ सूचना नहीं बल्कि हृदय की धड़कन और भावनाओं का सजीव दस्तावेज हुआ करते थे। डाकिया जब खाकी झोला टांगे गली में आता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरे मोहल्ले की उम्मीदें और खुशियां उसके साथ चल रही हों। चिट्ठी का आना एक उत्सव होता था। डाकिया सिर्फ कागज का पुर्जा नहीं लाता था, वो दूर देश से सहेज कर भेजी गई अपनों की सांसें और सिसकियां लेकर आता था। कागज का चुनाव स्याही का रंग और कलम की बनावट में लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता था। चिट्ठियों में एक अद्भुत इंतजार का सौंदर्य था। संभाल कर रखी गई वे पीली पड़ चुकी चिट्ठियां आज भी जब खुलती हैं तो गुजरे जमाने की खुशबू पूरे कमरे में बिखेर देती है। क्या बात है,
0: बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों के जमाने का मेरा अनुभव जीरो है। मैंने आज तक कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। उसके बावजूद कभी मौका नहीं आया, क्योंकि हमारे जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अरे फिर भी आपको लिखना चाहिए था ना।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं आरती कि चिट्ठियां या पत्र सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था, उसके बाद हम लोग घर में अपने से बड़ों को देखकर सीखते हैं कि क्या क्या लिखना है। मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है। मेरे बड़े भाई बड़े बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखा करते थे, सुंदर सुंदर लिफाफे आदि थे और खूबसूरत खूबसूरत लेटर पैड भी ले लेते थे। जब मैं बड़ा हो गया, किसके पत्र लिखने लगा, तो मैं भी सुंदर सुंदर लिफाफे लाता था और सुंदर सुंदर लेटर पैड। मैंने शुरू में कभी लिखा हुआ नहीं तो मतलब उन्होंने शुरू किया था, हमेशा खूबसूरत लिफाफा खूबसूरत लेटर पैड लिया करता था और अच्छी सुगंध लेटर में तो खूबसूरत पाउडर भी डाल दिया करता था, महकता हुआ यानी कि पाउडर डाल दिया करता था। इन्होंने खूबसूरत लिखा है तो बाद में तरीके से साफ भी कर दिया जाता था। कभी कभी सुगंध के लिए करता था और कभी कभी उसमें इतर भी डाल दिया करता था।
0: चिट्ठी जिस तक भी पहुंचती होगी, वाह क्या बात है। और एक और साथी जो लिखते हैं कि वो भी क्या दौर था, और उस समय जब कहते हैं कि लिफाफे में गुलाब की सूखी गुलाब की पत्तियां, तो कभी चिट्ठियों में हालचाल के साथ कुछ शायरियां भी लिखी होती थी। एक ही चिट्ठी को ना जाने कितनी बार पढ़ा जाता था। उन हाथों से लिखी चिट्ठियों में आत्मीयता भी होती थी और स्याही की सौंधी जो महक होती थी उसमें अपनापन भी होता था। आज भी जब कभी फुर्सत में पुरानी चिट्ठियों को पढ़ती हूँ चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखें भीग जाती हैं।
1: क्या बात है। और इसके साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, उस जमाने में चिट्ठी सिर्फ कागज ही नहीं पूरा परिवार हुआ करती थी। पिताजी का प्रेम, माँ की ममता और बहन का प्यार उसमें घुला होता था। बेटा समय से खा लेना, तबीयत का ध्यान रखना, बहन की खुशी राखी और गुलाब की पंखुड़ी के साथ आती, भैया त्योहार पर आ जाना, पड़ोस की खबर, खेत की फसल, गांव का मेला, सब उसी दो पन्नों में समा जाता। चिट्ठी आने में महीना लग जाता था, इसलिए हर शब्द तौल कर लिखा जाता था। डाके की घंटी बजते ही घर में हलचल मच जाती। खत को पहले बड़े पढ़ते फिर सबको सुनाते। एक चिट्ठी महीनों का इंतजार और सुकून हुआ करती थी। मैंने अपने पिताजी को बहुत पत्र लिखे, क्योंकि सर्विस के चलते वो बाहर रहते थे। उनके लिखे पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आज मोबाइल में तुरंत सब कुछ मिल जाता है, पर उस कागज में जो परिवार बसता था, जो दर्द और दुआ होती थी, वो अब मोबाइल की स्क्रीन में कहीं खो गई है। वाकई सही बात है, उस जमाने में जो चिट्ठी का मजा था वो अलग ही था। लेकिन आज भी कोशिश कीजिए कि अपनों को आप चिट्ठी लिखिए, क्यों व्हाट्सएप पे भेज दें।
0: बिल्कुल। अब एक साथी है जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना बहुत ही अच्छा था, जब भी मन हो निकाल लो और पढ़कर खुश हो जाओ। मैंने तो ढेर सारी चिट्ठियां अभी भी संभाल कर रखी हुई हैं और जब मन होता है निकाल कर पढ़ लेती हूँ। रिश्तेदारों के जो उनके जो खत आते थे, जो चिट्ठियां होती थी, है ना, वो जो अपनी सहेलियों को लिखती थी, तो जबकि वो इस शहर में थी, पर जब भी कॉलेज बंद होता तो उसे भी चिट्ठी लिखती थी। मेरे पापा जी बोलते थे कि जितनी देर में चिट्ठी मिलेगी उससे जल्दी तो तुम उसके घर पहुंच जाओगी, घर में मिल लोगी जाके।
1: चलो फिर इसी बात पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो कितनी सारी हम लोग की बातें हैं, है ना,
3: और हमारे जो साथी हैं वो लिखते जा रहे हैं। तो एक हमारे साथी हैं लिखती हैं कि चिट्ठी लिखना, अपने मन की भावना अपनों तक पहुंचाना बड़ी पुरानी परंपरा है, और पुराण कथा में विरह व्याकुल दमयंती ने अपनी पीड़ा कमल पत्र पर लिखी थी और राजहंस के साथ अपने प्रियतम नल राजा के पास पहुंचाई थी। पौराणिक ऐतिहासिक काल में भोज पत्र और ताड़ पत्र, ताम्रपट या कपड़े पर संदेश लिखकर भेजे जाते थे। बाद में कागज कलम स्याही वाले चिट्ठियों का सुहाना जमाना आ गया। चिट्ठी में प्यार भाव भावनाएं, मूर्त अमूर्त कल्पनाएं, सुंदर सुहाने सपने, सब कुछ साकार होता है, और साथ ही साथ अपनी प्रिय व्यक्ति का हस्ताक्षर, उसकी लिखाई से स्पर्श का व्यक्ति की अस्तित्व का एहसास भी मिल जाता है। संजो ही चिट्ठियां जब भी चाहे हम देख सकते हैं। चिट्ठी का इंतजार, बेचैनी, रंग रूप, रस गंध, ये सारी बातें आज की डिजिटल चैट और इन सब चीजों में कहां मिलती है।
2: और हमारे साथी एक लिखते हैं कि पहले चिट्ठियों को एक नुकीली तारनुमा जिसमें आधार में गोल लकड़ी रहता रहती थी, उसमें घोप कर सुरक्षित जाता था। 4 महीने पहले गांव में मुझे 1978 को पिताजी को मेरा लिखा स्याही वाला अंतर्देशी मिला। अब पिताजी तो नहीं, मगर उस चिट्ठी को संभाल कर रखा है इन्होंने। और लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भावनाओं, सब्र और एक खास अपनापन का दौर था। लोग पोस्टकार्ड, अंतर्देशी पत्र पर लिफाफों का इंतजार करते थे।
3: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि कभी एक वक्त था जब चिट्ठियां रिश्तों की सबसे प्यारी आवाज हुआ करती थी। हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था और हर पन्ने में अपनेपन की गर्माहट बसती थी। शायद यही वजह है कि आज भी पुरानी चिट्ठियां हाथ में आते ही बीता हुआ समय फिर से मुस्कुरा उठता है।

0: पहले चिट्ठियां सिर्फ खबरें नहीं लाती थीं, वो दूरियों को भी थोड़ा कम कर देती थीं। कागज पर लिखे शब्दों में धड़कनों की सच्चाई होती थी और स्याही में अपनेपन का रंग। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इंतजार, वो मिठास बिल्कुल छूट जाती है। तो पुरानी चिट्ठियों की सबसे खास बात यही है कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें फेंक नहीं सकते हम। वो किताबों में, संदूकों में, यादों में बरसों तक संभाल कर रखी जाती थी, क्योंकि वो कागज के टुकड़े नहीं, किसी के अपने दिल से निकले हुए शब्द हुआ करते थे।
1: चलो एक गीत सुन।

0: तो आती बारिश के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि बारिश जब आ जाती है तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और घर में
1: बिल्कुल
0: कैसे रखें सफाई, तो इसके लिए देखो घर के जो पावदान है उनको आप नियमित धोएं, गीले हो तो हटाएं, और जो बाहर पहन जाने वाली चप्पलें होती हैं उनको बाहर रखें, घर में अलग चप्पलों का यूज करें, और घर में कहीं भी अगर आपको टूट फूट लग रही है या छत पर भी टूट फूट लग रही है, तो नालियों में कुछ कचरा फंसा है तो वहां पर भी आप ध्यान दें कि उसकी सफाई नियमित करते रहें, और घर की
1: बिल्कुल
0: दीवारों दीवार जो होती है वो कहीं चूना पपड़ी कहीं टूट फूट दिख रही है तो उसको समय रहते ही उसमें आप पेंट कलर वगैरह करा ले तो अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और एक
0: इसके
1: हमारे
0: साथ ही
1: बिल्कुल हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बारिश के मौसम में नमी, सीलन और कीचड़ की वजह से घर जल्दी गंदा होता है, तो फर्श को एकदम सूखा रखें, पोछे के पानी में कीटाणुओं को दूर करने वाला कोई लिक्विड मिलाइए, या बदबू और कीड़ों से बचाने के लिए कपूर रख सकते हैं या फिर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं, आप ये सब चीजें करें।
0: बिल्कुल, और जो

0: तो चीजें फिसलने का बहुत डर रहता है, तो जहां भी आप देखे तो वहां पर आप उस कपड़े से पोछा लगाएं, और पोछे में नमक या कपूर डालकर भी आप पोछा लगा सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: जिससे कि कीटाणु नहीं आएंगे, और घर के दरवाजे खिड़कियों की नियमित पोछाई करते रहे, जिससे कि वहां पर नमी से क्या होता है, धूल गर्दा जमा हो जाती। तो इस तरह का बारिश के मौसम में हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल तो एक सुनते हैं गीत।

0: तो आरती देखो, प्रोग्राम बातें करते करते समापन की ओर हो गया है.
1: बिल्कुल.
0: तो आज सभी से लेते हैं विदा. तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार.
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक.
2: सखी सहेली.

हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, श्रावण मास आ गया है। आज का ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमने श्रावण मास को समर्पित किया है और आपसे कोशिश की है सावन को लेकर कुछ बातें करने की। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। दृश्य मनोरम वर्षा सावन, सलिल पवन संग चूम मगन, धरती कर मादक अवगाहन, हरित धरे परिधान बदन, रमणी तरुणा अटखेल करत, सौंदर्य सुवासित सुबह करे, रमणीक बने रसना निरखत, दिग मानस रंजन सरस करे, रसधार गिरे घिरते बदरा, तन वसन कपोल निढाल करे, मन चंचल

0: भाव भरे बहुधा सुरभित शर संधान करे। तो ये कविता आप सभी के नाम, और शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार,
1: हम प्रेमपाल गंगवार बोल रहे हैं नवाबगंज बरेली से।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है बरेली। बरेली की क्या खूबी है बताइए शहर की। बचपन में हमने तो देखा कि बरेली की हमारे पास जो है लकड़ी की बास्केट जिसे कहते हैं वो आया करती थी हमारे घरों में। कहते थे भी बरेली से हम लेकर आए हैं, ये बरेली से लेकर ये ट्रे आए हैं।
1: ये जो बचपन में जब चलना सीखते थे।
2: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: इरादे वो इरादे, वो कस्में वो गुजारिश, वो कविता वो गीत वो नहर, वो आकाश वो पहाड़, वो समुद्र वो खिलखिलाते चेहरे, वो फूल वो पत्तियां और वो मिट्टी जिसके ऊपर आप और हम खड़े हैं, वो मिट्टी जो हमें अनाज देती है, वो मिट्टी जो रहने के लिए घर, काम करने की ऊर्जा, एक पहचान देती है। उस मिट्टी का तिलक कर अगर हम सर उठा के खड़े हैं तो कोई भी पहचान लेगा कि हम भारतीय हैं। और इसी मिट्टी में जहां हम अनाज उगाते हैं, हरी भरी वादियों में उसके लुत्फ उठाते हैं, यहां पर देश की रक्षा करने के लिए फौलाद भी जन्म लेते हैं। और ऐसे ही जांबाज इंडियन आर्मी के अफसर ब्रिगेडियर सुशील तमर हमारे साथ, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देशवासियों के साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के साथ मैं ब्रिगेडियर सुशील तमर जी का स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग।
0: सबसे पहले तो पूरे देश की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि यू आर सर्विंग इन इंडियन आर्मी बट यू डिड फाइंड द अपॉर्चुनिटी, आपने जो भी रेगुलर नेसेसरी परमिशंस थी वो ली और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, मेरे लिए खुद भी एक बहुत खुशनजरी का मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके श्रोताओं से बात कर सकूं। इट्स रियली एन ऑनर।
0: मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो जांबाज अफसर होते हैं जिन्होंने बहुत एक काबिल तरीके से एक ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, वो इसी तरह मीठी जुबान बोलते हैं, मतलब कभी कभी वो कड़क साउंड नहीं करते, वो इट्स समवॉट लाइक अ कैमोफ्लेज?
1: नहीं, मेरे ख्याल से ये संगति का असर है। आपका लहजा खुद इतना सुहाना है कि शायद हमारे लहजे में भी आपकी मिठास आ गई है।
0: ओके, तो दुश्मन को मीठा मीठा कह के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट डाउन करो एंड देन टारगेट है, इज दैट द आइडिया?
1: या, दैट्स इट।
0: तो अपने सुनने वाले को बता दूं कि ब्रिगेडियर सुशील तंवर एक अलुमनाई है मिलिट्री स्कूल अजमेर के, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला के और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के। आप प्रेस्टीजियस मिलिट्री कोर्सेज करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन,

0: और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स कोर्स IIDC जो किंग्स कॉलेज लंदन में होता है वो करने भी जा चुके हैं और ये महारत हासिल करके आपने ये कहूं कि वो द कोवेटेड यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी वो पहने।
1: बिल्कुल मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है। मैं तो एक्चुअली बचपन से ही हम मिलिट्री स्कूल एग्जाम में पढ़ा हुआ हूँ जैसे आपने बताया, और हमारे स्कूल का ये मकसद था कि छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन किया जाए
0: जी।
1: उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए, तो बचपन से ही यूनिफॉर्म हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड दैट इज़ वाई वी फील ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का।
0: और इसके साथ साथ अपने देशवासियों को बता दें कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं ब्रिगेडियर सुशील तंवर, आपने 17 साल जो योगदान दिया भारतीय आर्मी को अभी तक, उसमें काउंटर टेररिज्म एनवायरमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में था वहां पे इलीट 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट को कमांड किया है। यंग ऑफिसर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे जोखिम झेले। ऑपरेशन रक्षक में आप एक बैटल कैजुअलिटी के शिकार हुए लेकिन शरीर शिकार हुआ, हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते गए। नॉर्दर्न कमांड की कमीशन कार्ड और साथ ही साथ इन्हें COAS कमेंडेशन कार्ड दो बारी मिल चुका है। इनके बारे में और हम बात करेंगे लेकिन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, ये सफर शुरू कहां हुआ आपका? व्हेन डिड यू वांट टू कम टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस?
1: जैसा मैंने पहले बताया कि हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़े हुए हैं
0: जी।
1: 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन हो गया था।
0: ओके।
1: तो मेरे ख्याल से शायद मैं 5वीं 6वीं क्लास में रहा होऊंगा जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी फौज में जाना है, सेना में जाना है। और एक बार हम स्कूल में आ गए तो हमारा रूटीन, लोग कहते हैं कि मैंने 17 साल फौज में दिए, 20 साल दिए, 25 साल दिए, लेकिन हम स्कूल वाले, हम जो फौज में आ गए, हम कहते हैं कि हम तो बचपन से ही PT परेड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक इट वॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट आई रियली वॉन्टेड टू ज्वाइन।
0: तो बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन माहौल में रहे होंगे?
1: हाँ, डिसिप्लिन था, काफी डिसिप्लिन था जो हमारे जीवन में था। सुबह टाइम पर उठना, PT करना, क्लासेस टाइम पे जाना, शाम को गेम्स, स्टडी पीरियड। और वैसे पुराने जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक अलग डिसिप्लिन और एक रूटीन था, खासकर हमारे मिलिट्री स्कूल्स, 5 मिलिट्री स्कूल हैं पूरे देश में। तो मैं अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ तो हमारे स्कूल में बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि डिसिप्लिन में रहें और फौज की तैयारी करें और हम आगे फौज में।
0: ओके। पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सवाल पूछता रहूंगा लाइफ की फिलॉसफी से जुड़े। आपको लगता है कि तब का डिसिप्लिन, बड़े होने के बाद जो डिसिप्लिन है, यू हैव नो रिग्रेट्स की डिसिप्लिन से ही जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी और निखरती है, लुक्स मोर कलरफुल?
1: हाँ, मे नॉट बी कलरफुल बट सर्टेनली डिसिप्लिन ब्रिंग्स एन ऑर्डर। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन रहने से आपकी जिंदगी काफी हद तक निखर जाती है। उसमें एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, आपका आपके आसपास वाले लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ऐसा मुझे लगता है। और सेना में तो डिसिप्लिन ही जिंदगी है। तो इसीलिए अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा।
0: पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट्स द रीजन कि इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड।
1: सर्टेनली एंड हम लोग UN जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं।
0: Absolutely.
1: और वैसे तो वर्ल्ड ओवर आर्मीज आर नोन फॉर डिसिप्लिन, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी सेनाओं में इतना अनुशासन नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की बात ही कुछ और है।
0: क्योंकि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिले जुले सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियन हमें सुन रहे हैं, हमें पूरा देश इस समय सुन रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के लगभग सारे स्टेशन इस समय ट्यून्ड हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। बहुत सारे हमारे NRIs जो हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं। हमारा व्हाट्सएप का जो मशीन है वो मैं खोल लेता हूँ, एंड ऑफकोर्स अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और उनका नाम है जोया। खैर, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या खास बात है इंडियन आर्मी में आज की डेट में, इतने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में है, ये कहना सही होगा?
1: बिल्कुल सही है, हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में है और दुनिया

0: बदल रही है, साथ में सेना बदल रही है, दी वॉर्स आर चेंजिंग, दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बैट इज चेंजिंग, तो काफी बदलाव आ रहा है।
1: जब आपने पहली बार आपने वर्दी पहनी, उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
0: हाँ, जब हम 97 में कमीशन हुए थे तो हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी, मणिपुर में, तो कुछ साल मैंने वहां गुजारे। लेकिन उसके बाद जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज्यादातर वक्त मैंने जम्मू कश्मीर में गुजारा, लेकिन शुरुआती 2-3 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुजारे थे।
1: तब का नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अब का बहुत फर्क आ गया होगा?
0: फर्क तो हर जगह आया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मुझे जाने का इतना मौका नहीं मिला, बीच बीच में जाता रहा, बट एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली सर्व नहीं किया मैंने वहां पे इतना ज्यादा। लेकिन जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तरक्की हुई है, लोगों के नजरिया बदला है, सड़कें बदली हैं, डेवलपमेंट हुई है, तो आपके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं, तो जिंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है, और साथ ही जिंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं।
1: सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। उस समय बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जब आप वहां आपकी पोस्टिंग।
0: जी, मैंने जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज्यादा गुजारे हैं, और पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, आपने बात की 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट की, बारामूला में मैं रहा, तो तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर से मेरा एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है वहाँ के लोगों के साथ। बहुत मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि मैंने इतना वक्त गुजारा है, और मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट होम इज जम्मू एंड कश्मीर।
1: वाओ, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। मतलब फौलाद भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात ही कुछ और है।
0: बात ही कुछ और है वहाँ के लोगों के साथ। हमने बहुत काम किया उनके साथ, हमारे जाति ताल्लुकात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सोल्जरिंग के सारे पहलू वो सामने आते हैं। चैलेंजिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, और लोगों के साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला है। तो अगर हम कहते हैं कि पी स्टेशन में कोई दिल्ली में है, कोई मथुरा में है, कोई पुणे में है, इसके बनस्पत कोई जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने से उसको सोल्जरिंग का जो रियल वैल्यू है वो सामने आती है। सो इट्स टफ बट इट इज ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग।
1: तो आप हमारे सिविलियंस को इस वार्ता के, आपके और मेरे भी जो वार्ता चल रही है उसके माध्यम से आप ये बताना चाहें कि चाह रहे हैं कि जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप यूनिफॉर्म पहने और आपने गन पकड़ी है, यू आर अ ड्रेडेड यू नो मैन इन अ यूनिफॉर्म। आप लोगों से मिक्सअप भी होते हैं। जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज है, स्पेशली यूथ के लिए।
0: बिल्कुल, और आपने एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि थोड़ा सा नकारात्मक होता है उसके मायने, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हिसाब से देखते हैं तो वी आर नॉट सीन एज ड्रेडेड, आई थिंक वी आर सीन मोर एज प्रोटेक्टर।
1: और हमारा
0: यस, या ड्रेडेड, इट इज ड्रेडेड फॉर पीपल, या वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, सो दैट वे यस, बट अदरवाइज आजकल जिस तरीके का माहौल है, कई तबकों में सेना को एक ड्रेडेड आइडेंटिटी भी दी जाती है, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी टफ विद पीपल हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, बट वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन हु इज ऑन आवर साइड।
1: तो आप इतना टाइम थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखी?
0: हाँ बिल्कुल, वो तो जरूरी है। लोगों के साथ अगर हमारे को रिश्ते जोड़ने हैं तो फिर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ेगी।
1: राइट, कुछ बताइए ना वहाँ पे अब जब आपकी पहले पोस्टिंग हुई, या कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद आता हो, एंड यू आर सेइंग फाइनली मैं अब आर्मी के साथ हूँ और मैं ऑपरेशंस में हूँ।
0: देखिए, वहाँ तो डे वन से ऑपरेशंस चलते हैं मुझे। अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा किसी ऑपरेशन के, लेकिन जैसे आपने बताया मुझे वहां पर गोली भी लगी एक एनकाउंटर में जो सुरनकोट में हुआ था। इसके अलावा नहीं, एक जगह थी जहां पर हमें सर्च ऑपरेशन करना था, और वहां पर जैसा कि किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है, आतंकवादियों से सामना हो गया और मुझे गोली लग गई, बट नॉट इट वॉज नॉट वेरी सीरियस इंजरी और ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था और इसमें बाद में

0: आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन था इसके पीछे.
1: okay.
0: लेकिन इस तरीके के वाक्य मेरे साथ हुए हैं, मैं बच गया. लेकिन हमारे बहुत बहादुर जवानों और अफसर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई है, अपनी जान का बलिदान दिया है. मेरे बहुत साथी, मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ उस बैच में वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30 ऑफ अवर बैचमेट्स फॉर वेरियस रीजंस. सो द कॉस्ट इज क्वाइट हाई, बट दैट इज अ कॉस्ट दैट नीड्स टू बी पेड
1: फॉर द नेशन.
0: या फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री.
1: एक नशा है ना आप लोगों को कि नहीं यार, वर्दी पहनी है, बस अब सिर्फ देश ही दिखता और कोई नहीं दिखता.
0: नशा है, जुनून है, एंड आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट लव.
1: मैंने नशा इसलिए बोला क्योंकि आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बोल ही कुछ ऐसे हैं.
0: हाँ, पहला नशा
1: जी.
0: और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना.
1: एनी स्पेसिफिक रीजन?
0: हाँ, इसका रीजन दो तीन रीजन है. पहला रीजन उसका ये है कि ये मूवी जो था वो सिकंदर, मैंने यही दिल्ली में रिड्स थिएटर होता था, कश्मीरी गेट के बाहर, तो मेरे भाई के साथ मैंने ये मूवी देखी थी. मैं आई थिंक 11th या 12th में था, और वो मुझे याद है, वो गाना पूरा, इट इज इम्प्रिंट ऑन माय माइंड. और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून भी लगाया था, तो सब लोग सोचते थे ये क्या है पहला नशा. तो आई यूज टू से, मैंने ये आपको कहा है कि आर्मी इज आवर फर्स्ट लव.
1: सर, बात तो आर्मी के आगे भी होगी. इस गाने को सुनते हैं फिर पूछता हूँ किसके लिए आपने गाया था. संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं.

0: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और इंडियन आर्मी की शान। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, माध्यम व्हाट्सएप का ही है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप उसमें व्हाट्सएप भेजकर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने भाव यहां पे प्रकट कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070, यहां पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी से मैं अभी जानना चाहूंगा कि आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो बहुत लंबा अरसा आपने वहां पे बिताया। यू मस्ट हैव सीन द समर्स एंड द विंटर, सारे वेदर आपने वहां पे देखे होंगे, तो कुछ शायरी वारी भी तो निकली होगी कभी ना कभी, कुछ मन तो किया होगा ना कुछ गुनगुनाने का, जैसे आपने ये गीत हमें सुनवाया, कुछ और भी आपने कुछ लिखा, कुछ भाव प्रकट किए वैसे?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाए
0: जी।
1: और दो किताबें मैंने लिखी हैं।
0: ओके।
1: एक किताब है मुखबिर, विच इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
0: मुखबिर
1: मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर होता है, और ये 17 कहानियां हैं इसमें।
0: ओके।
1: सब जम्मू कश्मीर की कहानियां हैं।
0: अच्छा।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस की कहानियां हैं।
0: ओके।
1: वहाँ के लोगों की कहानियां हैं।
0: ओके।
1: और दूसरी किताब मेरी अभी आई है, अमन के फरिश्ते। ये कहानी है, दिस इज नॉवल, ये जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रांत के पुंछ जिले में सूरनकोट एक जगह है।
0: okay.
1: वहां पर एक यंग मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसकी कहानी है। और ये किताब अभी 5 महीने पहले ही आई है। दोनों किताबें राजपाल एंड सन्स ने पब्लिश की हैं, और इन दोनों किताबों में मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में देखा, मेरे साथियों ने जो देखा, सो इट इज जस्ट ए कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ऑफ कोर्स इट इज फिक्शन एंड रियलिटी कंबाइंड।
0: मैं आपसे मुखबिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, आपने कहा कि उस वहां पे तरह तरह की कहानियां हैं, तो ये कहानियां जब आप वहां सर्व कर रहे थे, आपने तब लिखी या तब मन में बनाया और फिर बाद में?
1: ये कहानियां मेरे दिमाग में आती रही, जो मैं देखता रहा
0: जी,
1: जो मेरे साथी देखते रहे। हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है
0: जी।
1: कुछ कहानियां मैंने तब लिखी जब मैं वहां से वापस आ गया
0: जी।
1: और कुछ कहानियां मैंने वहां पर रहते हुए लिखी, तो मिला जुला संगम है ये। लेकिन जहां तक फीडबैक का सवाल है, काफी लोगों ने मुझे कहा है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इन किताबों को पढ़ के, इन कहानियों को पढ़ के उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में एक नया नजरिया मिला।
0: ओके।
1: और मेरे लिए एज ए राइटर
0: जी,
1: इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती।
0: कुछ कहानियों का कुछ अंश यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे?
1: हाँ, इसमें 17 कहानियां हैं। जैसे ये कहानी मुखबिर, जो पहली कहानी है मुखबिर, जिसके टाइटल जिसका ऊपर है किताब का, वो कहानी है एक बारामूला के पास गुलाम हसन नाम का इंसान रहता है।
0: ओके।
1: जो कि फौज के लिए मुखबिरी करता है।
0: ओके। दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल नेम्स, राइट?
1: या सम ऑफ दीज नेम्स आर रियल,
0: रियल आल्सो,
1: बट मोस्टली इट इज हाइपोथेटिकल। मैंने क्या किया इसमें, जो मेरे साथ रहे लोग
0: जी,
1: जो मेरे साथ ही रहे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जो मेरे साथ जुड़े रहे, हमने कहीं ना कहीं जो किरदार थे एज माई ट्रिब्यूट, हमने उनके नाम रख दिए। इट मे नॉट बी रियल, बट समवेयर दे डू एग्जिस्ट।
0: ओके। स्पाई नेम्स कह लो।
1: हाँ, स्पाई नेम्स कह लीजिए, कई असली नाम है।

0: जैसे मेरे कोई साथी हैं उनके नाम पर जो मेन किरदार है उनके नाम पर,
1: मेरा भी एक नाम है,
0: आपके नाम पर भी लग देंगे अगली किताब?
1: मेरा नाम रखा हुआ है।
0: अच्छा, क्या रखा हुआ आपका नाम?
1: फाल्कन वन।
0: अच्छा, आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल में भी फाल्कन वन आया था जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया था, तो मैंने कहा ये फाल्कन वन कहीं किसी खतरनाक किसी इंसान का फोन आ रहा है, लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की और आपकी आवाज सुनी तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा आप तो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं, लेकिन जो स्क्रीन पे नाम आया था फाल्कन वो सच में काफी खतरनाक था।
1: मेरे एक दोस्त भी हैं, आज ही बने, उनका नाम है टैनी।
0: हाँ, वो उनसे आप मिलते रहिए, आपको उम्मीद है मजा आएगा।
1: मेरे सामने बैठे टैनी।
0: हाँ, मुझे फौज में, हाँ मुझे फौज में लोग, फौज में एक रिवायत है
1: आपके भी व्हाट्सएप की इमेज के साथ आया था टैनी स्पीकिंग।
0: हाँ, तो हमारी फौज में एक रिवायत है निक नेम्स की। मडवाल को मैडी बोल देते हैं, संवाल को सैम बोल देते हैं, तो यशराज है तो यश बोल देंगे, तो यू नो वी हैव ए विद लव एंड विद अफेक्शन वी गिव निक नेम्स। शायद हर पेशे में होता होगा लेकिन फौज में कुछ ज्यादा है और ज्यादा अपनापन है, तो मुझे फौज में लोग टैनी कहते हैं, सीनियर जूनियर सब, कोई सर भी बोलता है तो टैनी सर बोलता है, तो दैट इज आवर।
1: एंड यू एंजॉय इट, वी एंजॉय दीज नेम्स,
0: या बिकॉज दे आर सेड आउट ऑफ अफेक्शन, और कुछ फिर आदत बन जाती है,
1: आदत बन जाती है, एक अपनापन भी होता है,
0: एक अपनापन तो है, काफी अपनापन है।
1: तो ये जो फिल्म में हम देखते हैं जैसे टाइगर कॉलिंग बारासिंगा, बारासिंगा टू टाइगर, ये सारी चीजें चलती रहती हैं हमारे।
0: हाँ, क्योंकि जब आप रेडियो पर खासकर बात करते हैं
1: जी,
0: तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं।
1: ओके,
0: तो टाइगर, लैम्ब, लायन, इस तरीके के होते हैं जो सेट होते हैं, और इसके बाद कुछ इंडिविजुअल नेम्स होते हैं।
1: ओके,
0: सो दीज आर कॉल साइंस बेसिकली,
1: कॉल साइंस, यस।
0: तो यस, दिस इज ट्रू, बट फिल्मों में थोड़ा ज्यादा ग्लैमरस कर देते हैं,
1: ग्लैमरस कर देते हैं जी। हाँ, मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ग्रुप कैप्टन मुनीश यादव को आमंत्रित किया था संदेश टू सोल्जर्स में, द पायलट हु फायर्ड एट द टाइगर हिल फ्लाइंग द मिराज 2000 अलोंग विद ग्रुप कैप्टन रघुनाथ नाम्बियर, तो वो आए थे, तो हम बताया वो जो 25 या 26 सेकंड की जो क्लिप है यूट्यूब में जहां एयरफोर्स ने टाइगर हिल पे अटैक किया था लेजर गाइडेड बॉम्ब, तो मैंने उनसे पूछा था आपका कॉल साइन क्या है, तो हंसने लगे, बोले इट वॉज टॉम कैट।
0: हाँ, एयरफोर्स में बड़े स्टाइलिश नेम्स होते हैं
1: जी, जी।
0: उनके कॉल साइंस आर क्वाइट स्टाइलिश, दैट वे वी आर ए लिटिल ग्राउंडेड।
1: तो कमिंग बैक टू गुलाम अहमद।
0: हाँ, गुलाम हसन,
1: गुलाम हसन,
0: गुलाम हसन, तो ये गुलाम हसन की कहानी है
1: जी।
0: जो कि वहां पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम करता है
1: जी,
0: और किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है, ये वो कहानी है। उस इलाके में एक टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आ जाता है,
1: okay.
0: और वहां पर जो टीम कमांडर है वो उसको टास्क देता है,
1: okay.
0: कैप्टन अभिमन्यु, कि आप पता करें, और वो पूरी जी जान लगा देता है, और देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन द एंड अबाउट व्हाट हैपेंस टू गुलाम हसन। तो ये कहानी है, एक कहानी है मुजाहिद, जो एक बहुत यंग लड़के इम्तियाज की कहानी है, ये सूरनकोट की कहानी है,
1: okay.
0: और इसमें जो मेन किरदार है वो इम्तियाज है,
1: okay.
0: और दूसरा कैप्टन समर है। कैप्टन समर इम्तियाज को ट्रेन करता है, उसको पाकिस्तान भेजता है लश्कर तौयबा के साथ काम करने के लिए, और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा, बट इट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी टेंडर एंड येट ए वेरी करेजियस स्टोरी। फिर एक कहानी है लव जिहाद, लव जिहाद एक कहानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो हिंदुस्तान आता है घुसपैठ करके जिहाद के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको हंडवारा में एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है, और उसी वक्त वहां पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं कर्नल ऋषभ, उनको ये सब बात पता लगती है, तो वो किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते को यूज करते हैं और किस तरीके से तीनों मिलकर फिर भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, ये उस कहानी का मेन प्लॉट है। तो आप पढ़ें कहानियां, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस।
1: लेडीज के हाथ में वो पावर होती है, दे कैन चेंज एनीबॉडी। कुछ तो होता है सर, मेरे पास बहुत सारे ना ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी वो भी लेता हूँ। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज कर चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। तेलंगाना से एम आर मधुसूदन आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय, और हमारी कंट्री जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं।
0: मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं
1: जी।

0: विजय कुमार विश्वनाथन जी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से हमें एक मैसेज भेज रहे हैं। संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों आप सुन रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं केवल SMS, केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। नंबर है 9868107070, 9868107070। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, एंड दिस इज शमीम रजा, लोकेशन कहां से वो उन्होंने नहीं बताई, सो वील नॉट आज दैट। मिस्टर पाटिल ने हमें एक मैसेज भेजा है और उन्होंने आपके बचपन और शिक्षा के ऊपर जो बात पूछी है उसके बारे में आप बता ही चुके हैं। जय हिंद सर। सर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूं, मैं नियमित रूप से पढ़ नहीं पाता, और एनडीए के लिए अगर कोई किताब आप मेंशन कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज बताएं। सूर्य कुमार हैंगे, कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: हाँ, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो 12th का सिलेबस होता है, रिटन एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसके लिए काफी गाइड्स एंड काफी गेस पेपर्स आते हैं, तो मुझे तो अभी अंदाजा नहीं है। एक्चुअली मैंने तो एनडीए 25-30 साल पहले किया था, लेकिन आई विल चेक कि अभी आजकल लोग किस किताब को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ज्यादा सफलता किसमें मिल रही है। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर आप 11वीं और 12वीं का जो CBSE का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से करें तो शायद आपको एनडीए का रिटन एग्जाम में सफलता मिलेगी। और एनडीए में रिटन एग्जाम सिर्फ पहला पड़ाव है, क्योंकि मेन उसमें एसएस भी होता है, तो अगर एक बार आप रिटन की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्लियर कर जाते हैं तो देन SSB इज एक्चुअली ए टफर नट टू क्रैक।
0: ऑलराइट देन, यहाँ पे यश सिंधे मुंबई से हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील जी के जज्बे को सलाम, ऐसे वीरों को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, भारत माँ के सच्चे और वीर संतान हैं आप। सुशील जी आपकी सेवा और त्याग को नमन है, इस मुल्क की हिफाजत को मजबूत चट्टान की जरूरत है, वो आप हैं। ही इज ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ यू सर।
1: और मैं ये सुनता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे क्या, पूरे हमारे जितने भी साथी हैं, हम सिर्फ इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि ये देश महफूज रहे, ताकि ये देशवासी खुश रहें। और जब हमारे देश के लोग इस तरीके का जज्बात जाहिर करते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है,
0: बहुत सारा,
1: और हमारा जो निश्चय है, वो दृढ़ संकल्प है, वो और मजबूत होता है।
0: दैट्स वंडरफुल। कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी से लेना चाहूंगा। आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश से, एंड शी इज वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्होंने भी एनडीए के एग्जाम दिए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। फायरमैन भरत कुमार चमोली गढ़वाल से लिख रहे हैं कि हमारा सलूट जो है वो स्वीकार करें, एंड ऑफ कोर्स हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके खुद के दादा पापा और तीन भाई आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तंवर जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गंगानगर जिला से डॉक्टर गणेश अरोड़ा हमारे को ये मैसेज भेज रहे हैं। हितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज भेजा है। सूरत से उल्हास पाटिल हमें मैसेज भेज रहे हैं, यू आर द रियल हीरो। वृंदावन से भी मैसेज आ गया रोहित रे का, एंड ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक जनाब जिनका नाम है शशि सिंह यादव। एंड ऑफ कोर्स एक और मैसेज हम देना चाहेंगे यहां पे कि दिल से सलाम कर रहे हैं मोनीश इदरीसी उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर से आपको। सो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो मैसेज भेज रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग बहुत ज्यादा है संदेश टू सोल्जर्स की। इससे पहले कि हम अगला म्यूजिकल ब्रेक लें, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारी जो प्रेमी इंस्टीट्यूशन है वहां के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, कुछ आप बताइए कि जब आप नई जनरेशन के युवाओं को देखते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू सी कंपेयर टू द यंगस्टर्स इन योर टाइम?
1: हाँ, मैं भारतीय सैन्य एकेडमी जो देहरादून में है वहां पर इंस्ट्रक्टर रहा था
0: जी।
1: और बहुत गर्व महसूस होता है जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं।
0: ओके।
1: उनकी काबिलियत, उनका जुनून और हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर। बहुत ये बातें होती हैं कि नई पीढ़ी में कमजोरी है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते, उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर विद यंग पीपल यू योरसेल्फ फील यंगर। आपको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो कमाल की है। और जब आप एकेडमी में होते हैं तो आपको मौका होता है एज ए इंस्ट्रक्टर टू शेप देयर पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक दैट्स ए प्रिविलेज। और अभी भी जब हमारे जो कैडेट्स हैं, अब अफसर बन गए हैं सारे, जब मिलते हैं तो बहुत

0: खुशी होती है देख के कि हमने उनको we have seen their entire journey. They came as novices and now they are commanding battalions and doing so well. So it's always a pleasure to interact with
1: you. So aapka jo the process of dealing or teaching them or training them is as tough as your gurus were or it's gone tougher or you understand nahi yaar
0: isko. Dekhiye ye jo hai debate hamesha rehti hai. Hame lagta hai ki humne zyada mushkil waqt jhela hai aur hamare baad wali ab main peedhi to nahi bolunga aisa lagega ki main bahut budda ho gaya hu lekin
1: lekin
0: yeah so lekin we are from the same generation but I think this is everyone says ki we have seen tougher times lekin mujhe lagta hai ki ye baat sahi hai shayad humne zyada mushkilein jheli hai.
1: ओके आपने एक सॉन्ग सजेस्ट किया था कुछ आपकी ट्रेनिंग टाइम्स और कुछ आपके ग्रुप से रिलेटेड जो मैं चला चुका हूँ.
0: हाँ ये कजरारे गाना है जब हम आईएमए में पोस्टेड थे तो हम यंग ऑफिसर्स वी वर इंस्ट्रक्टर्स तो हम ये गाना इतना चलाते थे दिन रात. तब ये नया नया गाना आया था और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं मेरे दोस्त याद आ जाते हैं एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग.
1: थोड़ी और याद ताज़ा करते हैं आपकी ये गाना हम भी चलाते हैं और कुछ ताजी उस समय की ताजी बात कुछ याद आ जाए तो आप शेयर करिएगा. मनीष जौली और मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं ब्रिगेडियर.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी बैठे हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ और ढेर सारे श्रोता जो हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं उनके नाम मैं बहुत जल्दी लेना चाहूंगा। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से कैप्टन वी के एस कर की आईपीएस हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए। कोटा राजस्थान से रामगोपाल शर्मा जी हमें यहां मैसेज भेज रहे हैं एंड ऑफकोर्स मीरा तिवारी नोएडा से कह रही हैं कि आपके बारे में, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल में थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था, दैट्स वंडरफुल टू नो मैम। आशा है कि आज की जनरेशन इनकी कहानी सुन के इंस्पायर हो और देश की इज्जत रखें और नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। हम भी यही आशा करते हैं लेकिन इसके बारे में हम सुशील जी से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं शंभवी पांडे एंड ऑफकोर्स वी आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ अदर मैसेजेस, जहां पर हमारे को सूर्य कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं, वो भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली ने विशाखापट्टनम से 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं लिखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई किताब जरूर पढ़ूंगा और उन्होंने कहा है इंशाल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूंगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं, ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूंगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से, जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है, भुवन जोशी हल्द्वानी से हमें मैसेज भेज रहे हैं और तिरंगा भी उन्होंने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके साथ जब हमने ये गाना सुना, खैर मैं फोकस कर रहा था मैसेजेस पे, वी विल गेट बैक टू इट लेटर, आप हमने बात की कजरारे की, तो वर यू आल्सो वेरी नॉटी जब आप एकेडमी में थे, कुछ आपने मिस्चिफ नहीं की तब?
1: हाँ, मिस्चिफ तो हर इंसान करता है मेरे ख्याल से।
0: ओके,
1: हमने भी किए, सबने किए।
0: ओके,
1: शायद लेकिन उतने नहीं किए जितने अब मैं सोचता हूँ, तो सोचता हूँ कि थोड़ा और करना चाहिए था।
0: ओके।
1: लेकिन आज आप लगता है सारे राज खुलवाने की ठान कर आए हैं।
0: अच्छा लगेगा ना, सिविलियन, देखिए सिविलियन को लगता है कि आर्मी के जवान हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो अफसर हैं, कभी मुस्कुराते नहीं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कभी मीठा नहीं बोलते, आप तो मिश्री हैं। अनुराग पांडे एक रेडियो जॉकी हैं एआईआर मथुरा में, वो एक मैसेज भेज रहे हैं और ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तो हमारे सिविलियंस की थोड़ी सी वो बदल जाएगा ना कि आपकी उस यू नो सॉलिड बॉडी के अंदर भी एक विनम्र सा दिल है।
1: हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फौजी जो होते हैं वो बहुत नरम दिल होते हैं।
0: ओके,
1: इनसाइड द सॉफ्ट एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर इज अ वेरी सॉफ्ट इंटीरियर, और जब आप लोगों से मिलते हैं तब उनको अंदाजा होता है, तो शरारतें तो लाजमी है।
0: पर आप लगते नहीं सर कि आपने शरारती की होगी।
1: नहीं, जैसे आप वाक्य की पूछ रहे थे
0: जी।
1: तो मुझे याद है हम यंग ऑफिसर थे।
0: okay.
1: तो वेरी ब्रीफली माऊ में हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे। उस टाइम टाइटैनिक मूवी आई थी। ओपन एयर थिएटर है, बहुत मजेदार, वहां पर बहुत मस्ती होती है ओपन एयर थिएटर में माऊ के इन्फेंट्री स्कूल में। तो जब टाइटैनिक में वो शिप डूबने लगा तो किसी ने बोला यार कुछ ये शिप डूब रहा है तो हम भी कुछ करते हैं, तो मैं चुपके से हम लेके गए थे एक पटाखों की लड़ी।
0: ओके,
1: तो बाकी तो कोई गया नहीं, मैं गया और जैसे ही मैंने लड़ी जलाई, उजाला हुआ, उधर शिप डूब रहा था और उधर सबको पता लग गया कि ये भाई साहब जो है, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक डीएस थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए, और वो पटाखा सीधा उनकी झोली में जाके गिरा, शायद बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे से मुझे आए कि आप जरा बाहर आइए।
0: बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था,
1: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज्यादा जिंदा दिल थे ऐसा मुझे लगता है।
0: पर हुआ क्या उसके बाद?
1: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी, पर ये हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया।
0: okay.
1: तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देयर वाज नो इल विल, तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
0: टैनी द क्रैकर बॉय,
1: यस,
0: ऐसे बुलाते होंगे आपको?
1: हाँ, मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
0: राइट, यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे, बहुत सारे लोग परचेस करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड द इंसिडेंट्स एंड द एक्सपीरियंसेस।
1: हाँ, तो पहली किताब है मुखबिर जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है और

0: एंड केश राजपूत है, वो एक मैसेज भेज रहे हैं. मेरे पास लगभग 12 मिनट बचे हैं सर. कैन वी डू सम टफ टॉकिंग?
1: या श्योर.
0: ओके, नाउ दिस इज द रियल टॉक सर. इसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, अवेयरनेस हुई. मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ऑफकोर्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशन, कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही होगी.
1: हाँ, आप अखबार में पढ़ते हैं और पब्लिसाइज भी होती है कई चीजें.
0: ओके,
1: और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं.
0: ओके,
1: नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स और बाकी प्रिसीजन वेपन्स आ रहे हैं. इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका आउटलुक भी चेंज हो रहा है. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ नैरेटिव. तो काफी सारी चीजें जो चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए.
0: मुझे ये बताइए, अभी जैसे ईरान, अमेरिका, इसराइल को लेके जो भी वहां पे कॉम्बैट हो रहा है, या कहीं पर भी विश्व भर में यूक्रेन, रशिया को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वहां पर भी हमारे कोई ना कोई इंटेलिजेंस, यू नो, कोई टैप तो रखते होंगे ना कि क्या क्या वेपन यूज हो रहा है, कौन सा वेपन कहाँ काम आ रहा है, कितना यूजफुल है, नहीं है. एम आई राइट टू मेंशन लाइक दैट?
1: यस, बिकॉज आर्मीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सिर्फ हमारी सेना, बट वॉर्स कैसे लड़ी जा रही हैं उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन रिफाइन आवर टैक्टिक्स, वी कैन रिफाइन द वे वी यूज आवर वेपन्स. तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. और सेना में लोगों को लगता है कि जब लड़ाई नहीं हो रही तो क्या कर रहे होंगे. जब हम लड़ाई नहीं हो रही थी तो हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, और उस तैयारी में ये सब स्टडी करना भी शामिल है.
0: ओके सर, मैंने आपसे बोला था मैं सीधे सवाल से विलन के पूछूंगा आपसे. 24 घंटे हम लोग चौकन्ने हैं बॉर्डर पे, अपनी स्काईज को देख रहे हैं कि कोई वहां से कोई वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा.
1: हाँ, ऑब्वियसली, आई मीन ना सिर्फ स्काई, टुडे थ्रेट इज फ्रॉम एवरीवेयर.
0: ओके,
1: एंड जहां तक आपने जंग की बात की, मैं ये भी बोलूंगा कि इट्स नॉट आर्मीज विच फाइट ए वॉर, इट इज द नेशंस विच फाइट ए वॉर. तो हम सब चौकन्ने हैं, हम सबको चौकन्ना रहना भी चाहिए.
0: तो आपकी इंटेलिजेंस 24 घंटे काम करती है. कुछ देर पहले आपने कहा कि हमारे भी कुछ लोग जो है सरहद पार जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आते हैं, हमारे भी जाते हैं. बट लेट मी टेल यू दैट वी आर नॉट बॉर्डरिंग द वेस्ट, वी आर बॉर्डरिंग 360 डिग्री. हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि थ्रेट हमें एक ही कंट्री से, या हमें चौकन्ना नहीं होना बाकी जगह. तो हर जगह का पैटर्न अलग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि भाषाएं अलग हैं, टेक्नोलॉजी किसी के पास सुपीरियर है, किसी के पास नहीं है.
1: देखिए, एडवर्सरीज डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, ज्योग्राफी डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो थ्रेट्स भी डिफरेंट हैं. कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज भी होती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, अब ये जरूरी है कि हम उन डिफरेंट पैटर्न्स को समझें. तो इसीलिए हर तरफ देखना पड़ता है.
0: इज इट इजी टू प्रिपेयर द स्पाइज और यू नो पीपल इन द इंटेलिजेंस? हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इट इज किसी भी कंट्री के लिए?
1: इट इज वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स इट इज चैलेंजिंग, इट इज डेंजरस, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस.
0: एक टफ सवाल पूछ लूं सर?
1: पूछिए, आप काफी सवाल पूछ रहे हैं.
0: आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा. जब हम कहते हैं हमें इंटेलिजेंस चाहिए, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू आर ओन कंट्रीमैन, इट कैन एक्सपैंड टू वेरियस अदर नेशनैलिटीज ऑल्सो, इज दैट ट्रू सर?
1: हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं रोज दुनिया में क्या हो रहा है
0: जी.
1: हर जगह कोई ना कोई एजेंट पकड़ा जा रहा है. सो यू यूज ऑल मीन्स एट योर डिस्पोजल.
0: राइट, एक रसगुल्ला खिलाने का मन कर रहा है. आपको कोई भी प्यार व्यार नहीं हुआ सर? यू नेवर रोमांटिक इन योर लाइफ?
1: देखिए, हर इंसान रोमांटिक होता है.
0: आप भी
1: थे? नहीं हैं. लेकिन लेकिन किस मद्देनजर, किस मायने में है वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट.
0: देश से बहुत प्यार है, माय फर्स्ट लव. ठीक है सर, आपने गाना अपनी प्लेलिस्ट में हमें दिया है, बाहों में चले आ, इसका क्या रीजन है?
1: हाँ, ये पुराना गाना है, अनामिका पिक्चर का, मूवी का.
0: कोई ना कोई तो रीजन होगा सर.
1: हाँ, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये गाना.
0: थी सर?
1: हाँ थी, और वो गाती भी थी ये गाना. और मैंने आपको बाकी गाने भी दिए हैं जो बाकी दोस्तों के हैं, लेकिन आप इसी गाने को पकड़ के बैठ गए हैं. लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, तो इसको प्लीज सुनवाइए
0: सर. वो जो लव स्टोरी थी वो आपकी

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जॉली और एक और गाना है जिसकी ख्वाहिश यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखी है और वो गाना बड़ा सॉलिड है, मिक्का सिंह का. व्हाट अबाउट दिस? आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग क्लोज, यू नो, एट द ब्रिंक ऑफ द आर टू क्लोज दिस शो, बट व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस सॉन्ग सर? एकदम से मतलब पुरानी और फिर नया दिल में बजी गिटार.
1: नहीं, जब आपने मुझे बताया कि आप पसंदीदा गाने बनाएं बताएं, तो फिर एक मेरे अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों मिलके गाना बहुत एंजॉय करते थे.
0: ओके.
1: तो बस उन्हीं की याद आ गई और उन्होंने बोला ये गाना अगर नहीं बजेगा तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा.
0: सर, आप परफेक्ट बंदे हो इंटेलिजेंस के लिए. सारी बातें बोल देते हो पर कुछ भी नहीं बोलते. मेरे बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अगर नहीं बजेगा तो बाहों में चले आओ, चलाया था बहुत अच्छा लगता था. पहला नशा चलाया क्योंकि वो अच्छा था, कजरा रहे डांस करते थे बस. वो बताया आपने कुछ भी नहीं, यू नेवर रिवील्ड, बट आई थिंक इंडियन आर्मी ने सही बंदे को चूज किया सर इंटेलिजेंस के.

0: कम है। क्या होता है ना, जब हम अपने फौजी भाइयों के साथ, फौजी अफसरों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, हमें लगता है कि एक घंटा बहुत कम है, तो बातें और होनी चाहिए। बट यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे एसएमएसेस, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आए हैं। सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, दे फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब यहां से आपका सफर कहां जाता है, वेयर डू यू टेक योरसेल्फ फ्रॉम हियर?
1: हम तो फौज में कुछ कह नहीं सकते कि अगला मुकाम, अगला पड़ाव क्या होगा। तो जहां भारतीय सरकार, भारतीय सेना में भेजेगी, वहां जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वापस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, उसी शिद्दत, उसी जुनून के साथ।
0: तो वो एक कहावत थी ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इज देयर इन कश्मीर, कुछ अलग बनाता है आपको। आपको प्यार हो गया उस जगह से, आप गए थे भारत माँ की रक्षा करने, आप रक्षा भी कराए और वहां अपना दिल भी दिया है कश्मीर को।
1: नहीं, दिल, हाँ दिल की तो बात है, जम्मू कश्मीर मुझे पसंद है, लेकिन जहां पर भी मैंने राजस्थान में नौकरी की है, मैंने अब्रॉड नौकरी की है, यूएन के साथ नौकरी की है, वहां भी अच्छा लगा। तो इट इज नॉट द प्लेस एक्चुअली, इट इज द पीपल अराउंड यू एंड हमारा जो एक इकोसिस्टम है भारतीय सेना का, वो बहुत मजेदार।

0: आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है।
1: आपने बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं अलग अलग नेशंस के, डिड विद द यूएस?
0: हाँ, हमारे साथ जापान में मैंने गया हूँ, मैं यूके गया हूँ, मैंने सूडान में नौकरी की है यूनाइटेड नेशंस के साथ, और जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर भारतीय सेना को एक अलग तरीके से देखा जाता था, बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था, बहुत प्राउड फील होता था, बहुत गर्व महसूस होता था हमारे को दूसरे देश में जाके हिंदुस्तानी सेना का नाम रोशन करने में। इट वॉज एक्चुअली ए ब्लेसिंग।
1: तो अभी चलते चलते, क्योंकि अब समय की पाबंदी है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, आपके फाइनल वर्ड्स, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है।
0: ये जो भारतीय सेना एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस देश की सेवा करें, एंड हमारे सैनिक, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी ब्रेव वेरी करेजियस सोल्जर्स, और जो हिंदुस्तानी सेना और तीनों सेनाओं का मैं बात करूंगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स की एंड ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस, आई थिंक वी जस्ट सर्व सेल्फलेसली, और हमें उम्मीद है कि इस देश और इस देश के नागरिक भी उसी शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे जैसे हम करते हैं।
1: It's a sheer privilege to host you, sir.
0: It was extremely good, and the way people were reacting, I think it just motivates us even more. बहुत मजा आया।
1: There are so many जिनके मैं messages नहीं ले पाया, but Brigadier Sushil Tanwar ji, I think जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देश की तरफ से, ये मेरा salute कबूल कीजिए सर।
0: Thank you so much, Jai Hind।
1: और इसी तरह हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

ढलती हुई शाम केवल दिन के अंत का संकेत नहीं है, बल्कि भाग दौड़ भरे जीवन में सुकून का एक हसीन पल है। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें और यह शांत माहौल हमें सिखाता है कि हर ढलान के बाद एक नई सुबह का उजाला जरूर आता है। यह शाम आपके जीवन में ढेर सारी शांति, नई उम्मीदें और अपनों का प्यार लेकर आए। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युवाणी में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों, जब कोई ऐसी घटना घटती है जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है, तो उसका दर्द केवल खबरों या आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह हर नागरिक के मन को भीतर तक छू जाता है। कुछ घटनाएं हमारे दिल में चिंता, दुख और बेचैनी छोड़ जाती है, तो कुछ हमें एक दूसरे के और करीब लाती हैं। ऐसे समय में देश की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। हमें अफवाहों से बचते हुए संयम रखना चाहिए और प्रभावित लोगों के साथ संवेदना और सहयोग के साथ खड़ा होना चाहिए। मुश्किल की घड़ी हमें याद दिलाती है कि देश केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि अपने लोगों की संवेदनाओं और एक दूसरे के साथ से बनता है। दोस्तों, कार्यक्रम में चलिए बात करते हैं हिरोशिमा दिवस के बारे में। 6 अगस्त साल 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा

शहर के लिए एक सामान्य सुबह की तरह शुरू हुई थी। लोगों की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। किसी को अपने काम पर जाना था, किसी को परिवार की चिंता थी और किसी के सामने अपने भविष्य के छोटे बड़े सपने थे। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना ने न केवल एक शहर को तबाह किया बल्कि पूरी मानवता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि युद्ध और विनाश की कीमत आखिर कितनी भयानक हो सकती है। हजारों लोगों की जान चली गई। बहुत से लोग लंबे समय तक इस त्रासदी के प्रभाव से जूझते रहे। दोस्तों, हिरोशिमा दिवस हमें इसी दर्दनाक इतिहास की याद दिलाता है। इस दिन को याद करने का उद्देश्य केवल अतीत के दुख को दोहराना नहीं है बल्कि उससे सीख लेना भी है। जब इंसान अपने मतभेदों को बातचीत से सुलझाने के बजाय ताकत और हथियारों के रास्ते पर चलता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। युद्ध के फैसले शायद कुछ लोग लेते हैं लेकिन उसका दर्द परिवारों, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसीलिए हिरोशिमा हमें शांति की कीमत समझाता है। दोस्तों, आज विज्ञान और तकनीक ने इंसान को बहुत आगे पहुंचा दिया है। हमारे पास ऐसी क्षमताएं हैं जिनसे दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी है कि विज्ञान का इस्तेमाल जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए हो, विनाश के लिए नहीं। हिरोशिमा की स्मृति हमें बताती है कि मानव जीवन किसी भी राजनीतिक या सैन्य महत्वाकांक्षा से बहुत बड़ा है। हिरोशिमा दिवस पर उन सभी निर्दोष लोगों को याद करते हुए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध और भय की नहीं बल्कि शांति, सहयोग और मानवता की दुनिया मिले। दुनिया में मतभेद रहेंगे, विचार अलग होंगे लेकिन उन्हें बातचीत और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, असली ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि मिलकर ऐसी दुनिया बनाने में है जहां इंसान सुरक्षित होकर अपने सपने देख सके। हिरोशिमा का दर्द हमें आज भी यही संदेश देता है कि शांति केवल एक विचार नहीं बल्कि पूरी मानवता की जरूरत है।

दोस्तों, महिला सशक्तिकरण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब एक महिला आत्मनिर्भर, शिक्षित और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होती है तो उसका लाभ केवल उसे नहीं बल्कि पूरे परिवार और पूरे समाज को मिलता है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, व्यवसाय और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। फिर भी उन्हें समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल अधिकार देना नहीं बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां वह बिना किसी डर के अपने सपनों को पूरा कर सकें।

0: बेटियों की शिक्षा, समान अवसर और उनके निर्णयों का सम्मान ही सशक्त समाज की पहचान है। दोस्तों, इसी क्रम में आइए वार्ता सुनते हैं जिसका विषय है महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और वास्तविकता। वार्ताकार हैं प्रियंका विश्वकर्मा।
1: एक परिवार में गृहिणी के रूप में रीढ़ है नारी, नए पीढ़ी में बहुकार्य की उदाहरण है नारी। इस स्वार्थ के संसार में माँ के रूप में निस्वार्थ है नारी, देवी के रूप में शक्ति का भावार्थ है नारी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका विश्वकर्मा आज आप सभी के सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आई हूँ जिसे हम सब ने देखा है, महसूस किया है, लेकिन शायद स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारी जिसे हम देवी कहते हैं, पर उसी नारी को कभी स्कूल जाने से रोका गया, कभी दहेज में तौला गया, तो कभी चुप रहने की सलाह दी गई। क्या यही उसका सम्मान है? दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को समझने से पहले हमें इसका अर्थ जानना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण है क्या। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाना, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समान अवसर पा सकें। महिला सशक्तिकरण कोई आधुनिक विचार नहीं है, ये एक अधूरी कहानी है जिसे पूरा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। आज भी घरों में बेटियों से कहा जाता है, तू तो पराया धन है, और फिर भी हम ये कहते हैं कि महिला सशक्त है। जी नहीं, महिला सशक्तिकरण का अर्थ सिर्फ अधिकार देना नहीं है, बल्कि वो माहौल देना है जहां महिलाएं बेटियां अपने सपनों को सच कर सके। जब एक बेटी कहती है कि मुझे पढ़ना है, तो उसे कहा जाता है, तुम तो अभी बेटी हो, तुम घर संभालो। दोस्तों, यही तो वास्तविकता है जिसे हमें बदलना है। अगर एक बेटी को शिक्षा मिले तो वो एक पीढ़ी को शिक्षित करती है, और एक महिला को सम्मान मिले तो इससे पूरा समाज सभ्य बनता है। महिलाओं को सशक्त करने से हमें समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, हिंसा, भेदभाव को कम कर सकते हैं। आज के समय में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्राथमिकता साबित की है। वे घर से लेकर अंतरिक्ष तक हर जगह अपनी क्षमता और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन आज भी बहुत सी महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण के बिना हम समाज में समानता और नए समाज में निर्माण नहीं कर सकते हैं। कल्पना चावला, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, ये नाम हमें प्रेरणा देते हैं, लेकिन हर कल्पना के पीछे हजारों लड़कियां हैं जिन्हें उड़ने नहीं दिया गया। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण का अर्थ वास्तव में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। भारत में महिलाएं सदियों से अनेक प्रकार के भेदभाव और अन्याय का सामना करती आ रही हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज की महिलाएं शिक्षा, खेल, विज्ञान, राजनीति और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है, बल्कि समाज में उनके योगदान को सम्मान देने की प्रक्रिया है। एक सशक्त महिला ने केवल अपने परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज को सशक्त बना सकती है। दोस्तों, हमें सिर्फ सफल महिलाओं की कहानी ही नहीं सुननी चाहिए, बल्कि हम सभी को असफलताओं के वजह को समझकर उसे दूर करना चाहिए। महिलाओं को बराबरी इसलिए चाहिए क्योंकि वो सिर्फ सहन नहीं करती, बल्कि वो निर्माण कर सकती हैं। वो सिर्फ घर नहीं संभालती, वो एक राष्ट्र को भी शक्तिशाली बना सकती हैं। विकसित भारत की कल्पना महिलाओं के बिना अधूरी है। अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। दोस्तों, हम सभी को महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना होगा, समाज में बदलाव लाना होगा और उन्हें शिक्षा देना होगा जिससे वे हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकें। हमें महिलाओं को अवसर देने चाहिए ताकि वे अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ सकें। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी सशक्त और समतामूलक समाज की स्थापना संभव होगी। महिला सशक्तिकरण विकास का आधार है। महिला सशक्तिकरण कोई नारा नहीं है, ये एक सोच है, एक संस्कार है जो हर दिल में होना चाहिए। दोस्तों, जब एक नारी

0: उठती है तो समाज सभ्य बनता है, जब एक नारी बोलती है तो बदलाव बोलता है। दोस्तों, एक सशक्त महिला न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देती है। भारत जैसे देश में जहां महिलाएं जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं, उनका सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे अपने बच्चों को भी शिक्षित करेंगी और इससे पूरे समाज में जागरूकता बढ़ेगी। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और अन्य कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं। सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की जो महिलाओं के उत्थान में सहायक है। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब समाज की सोच बदलेगी और महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलेगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी देश सही मायनों में विकसित और प्रगतिशील बन पाएगा। धन्यवाद।
1: महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और वास्तविकता, इस विषय पर अभी आप वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी प्रियंका विश्वकर्मा।
2: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी पुण्यतिथि। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम उन महान व्यक्तित्वों में लिया जाता है जिन्होंने देशवासियों में राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका जीवन उस दौर का साक्षी रहा जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और आम भारतीय के सामने अपने अधिकारों की बात रखना भी आसान नहीं थी। ऐसे समय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने शिक्षा, पत्रकारिता और जन जागरण के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। दोस्तों, उनका मानना था कि किसी भी देश की वास्तविक ताकत उसके जागरूक नागरिकों में होती है। इसीलिए उन्होंने लोगों को केवल अंग्रेजी शासन की आलोचना करने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर आत्मसम्मान और राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचारों और प्रयासों ने देश में राजनीतिक चेतना को मजबूत करने में योगदान दिया। दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि देश की सेवा हमेशा किसी बड़े पद या किसी बड़े आंदोलन से नहीं होती। कभी कभी लोगों को शिक्षित करना, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना और समाज में जागरूकता पैदा करना भी राष्ट्र सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई और उन्हें देश के भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। आज जब हम लोकतंत्र में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, तो इसके पीछे उन लोगों के संघर्ष और प्रयास भी हैं जिन्होंने देश में राजनीतिक जागरूकता की नींव मजबूत की। दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का योगदान हमें इस विरासत की याद दिलाता है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना केवल एक महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना नहीं है बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का अवसर भी है। आज के युवाओं के लिए उनका जीवन विशेष संदेश देता है कि देश के प्रति जिम्मेदारी केवल सीमा पर खड़े होकर ही नहीं निभाई जाती। ईमानदारी से अपने कार्य को करना, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना, समाज में जागरूकता फैलाना और सही बात के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना भी देश सेवा है। दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की स्मृति हमें यही प्रेरणा देती है कि जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का आधार बनते हैं। आज के दौर में सूचना हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल तक सिमट आई है। कुछ सेकंड में ही कोई खबर एक व्यक्ति से निकल

निकलकर हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। यह सुविधा निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। दोस्तों, समस्या तब होती है जब हम किसी खबर को पढ़े या समझे बिना उसे आगे बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर बात सच हो यह जरूरी तो नहीं। कई बार पुरानी तस्वीरों को नई घटना के साथ जोड़ दिया जाता है, पुराने वीडियो को नए संदर्भ में पेश कर दिया जाता है और अधूरी जानकारी को पूरी सच्चाई की तरह फैलाया जाता है। दोस्तों, फर्जी खबरों का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी गलत जानकारी लोगों के बीच डर, भ्रम और तनाव पैदा कर सकती है। किसी व्यक्ति, किसी संस्था या समुदाय के बारे में गलत खबर उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि आज के समय में खबर की सच्चाई जांचना केवल पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी, आपकी, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। दोस्तों, जब भी हमारे सामने कोई चौंकाने वाली खबर आए तो सबसे पहले हमें थोड़ा रुकना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि यह खबर आखिर आई कहां से, क्या इसका कोई विश्वसनीय स्रोत है, इसकी तारीख क्या है। अगर इन सवालों का जवाब न मिले तो उसे तुरंत शेयर करने से बचना चाहिए। खासतौर पर ऐसी खबरों में अधिक सावधानी जरूरी है जो लोगों में गुस्सा, डर, नफरत पैदा कर सकती है। दोस्तों, अक्सर फर्जी खबरें इसी तरह तैयार की जाती है कि बिना सोचे समझे उसे दूसरों तक पहुंचा दिया जाए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी एक छोटी सी गलती किसी गलत सूचना को बहुत बड़ा रूप दे सकती है। दोस्तों, जिम्मेदार नागरिक होने का अर्थ सिर्फ सही खबर पढ़ना नहीं बल्कि गलत खबर को आगे फैलने से रोकना भी है। अगर किसी सूचना पर संदेह हो तो उसे साझा न करना ही बेहतर विकल्प है। जरूरत पड़ने पर विश्वसनीय स्रोतों से उसकी पुष्टि की जा सकती है, तो थोड़ा धैर्य रखें और उसकी पुष्टि जरूर करें। दोस्तों, आज डिजिटल दुनिया में हमारी उंगली पर जितनी ताकत है उतनी ही जिम्मेदारी भी है। इसीलिए किसी खबर को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा ठहरें, थोड़ा सोचें और थोड़ा जांचें। पहले सत्य की पड़ताल, फिर खबर का प्रसार, और यही फर्जी खबरों के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत जिम्मेदारी है।

दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी का विचार है, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। दोस्तों, ये कथन अपने शब्दों के साथ बिल्कुल सत्य साबित है और इस तरह के व्यक्तित्व को हमें अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम युववाणी से अपनी रेडियो दोस्त रानी राष्ट्री को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम की प्रस्तुति रानी राजश्री की है।
1: हेलो, दिल की धड़कन, बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस, हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो
4: हेलो,
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस सफर में आपके साथ हूं रानी राजश्री। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपसे बातचीत का ये सिलसिला।
1: आकाशवाणी ओबरा
0: जी, आकाशवाणी ओबरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। अपना परिचय दें।
1: मेरा नाम भोला गुप्ता है, जुगैल से बोल रहा हूँ।
0: जी जुगैल से सर। तो भोला जी आप क्या करते हैं?
1: घर पे रहते हैं, खेती किसानी करते हैं सर।
0: अच्छा, कितने सालों से सर खेती किसानी का कार्य आप कर रहे हैं?
1: अरे 20 साल तो हो ही गए।
0: सबसे ज्यादा जो आपको लगता है कि खेती के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, जिस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या बात आप हमसे बताना चाहेंगे?
1: यही कि उसमें अच्छी तरह से खाद का प्रयोग किया जाए, देखभाल किया जाए।
0: जी तो सर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बारिश का बहुत ज्यादा माहौल है, तो ऐसे में आप अपने खेती कार्य को कैसे पूर्ण करते हैं, कैसे कार्य करते हैं?
1: सावधानी बरतते हैं सर, जिसमें से बारिश वरिश होती है, जो फसल वसल है वो निराई गुड़ाई के साथ किया जाए।
0: जी बिल्कुल। और ऐसे में पानी भी बहुत ज्यादा खेत में नहीं जमा होना चाहिए।
1: जी जी।
0: और सर बताइए क्या कहना चाहेंगे, जो प्रकृति में थोड़े बहुत जो बदलाव आ रहे हैं, तो बारिश का मौसम कहते हैं कि पौधा लगाने के लिए बड़ा अच्छा है, तो क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं को?
1: बारिश का मौसम है सर, कम से कम एक दो पेड़ अपने नाम पर लगाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: बच्चे को देखिए सर, आज शिक्षा

0: तो अहम चीज है, तो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए।
1: और साथ ही साथ जो व्यवहारिक जो ज्ञान है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें उन्हें सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, है ना?
0: जी जी जी।
1: तो सर रेडियो सुनते हैं आप?
0: जी सर, आपका तो आकाशवाणी भारती होता है सुबह, फिर आपका 5 बजे से प्रसारण चालू होता है।
1: जी जी
0: जी सर, आज हमें गाना सुनवाइए, अनुष्ठान राज होगा
1: जी। इस फिल्म का कौन सा गीत सर आप सुनेंगे?
0: दिल कितना दीवाना है सुनेंगे, शुरुआती गाना
1: जी जी
0: और नाव पे वही वाला।
1: बिल्कुल सर, हम आपको सुनवाते हैं ये गीत
0: जी। धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्ते
1: जी। नमस्ते सर, कार्यक्रम हेलो फरमाइश में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: जी। योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी सर, और बताइए अपने बारे में, बताइए अपने शहर के बारे में बताएं सर।
0: ठीक है, हमारे तो ग्रामीण परिवेश है, सब खेती बाड़ी करते हैं और बढ़िया है सभी।
1: बिल्कुल, और ये जो बारिश का मौसम है तो क्या
0: जी
1: कुछ कहना चाहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को कि क्या
0: इस
1: सावधानी रखनी
0: सत्र
1: चाहिए?
0: में तो थोड़ा सा बारिश कम हो रहा है
1: अच्छा
0: और लगभग सभी देश भर में ये थोड़ा अनियमितता की स्थिति इस बार बनी हुई है।
1: जी जी बिल्कुल, तो ऐसे में आज आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रकृति को हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं पौधे लगाकर?
0: यही है कि वृक्षारोपण पर जोर दे और अनावश्यक पेड़ों की कटाई ना करे,
1: जी
0: और जो अंधा शहरीकरण कर रहे हैं जिससे पशुओं के आवास स्थल भी प्रभावित हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसके लिए बहुत जिम्मेदार है।
1: जी बिल्कुल, और क्या कहना चाहेंगे कि हमें बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, घर से कैसे शुरुआत करें हम?
0: बच्चों को शिक्षा तो यही दे कि जो संस्कार वाली बात होती है, बड़ों का आदर करना, अच्छा
1: जी
0: व्यवहार करना, झगड़े लड़ाई से दूर रखना और पढ़ाई पर अपना फोकस करना, ये
1: जी
0: सब चीजें हैं।
1: और साथ ही साथ सर हमें ये भी सिखाना चाहिए कि जो सामाजिक तौर पर जो पशु पक्षी हम पर आश्रित हैं, बिल्कुल
0: जी
1: आपने सही कहा कि व्यवहार तो बिल्कुल हम सुधारेंगे तो जाहिर सी बात है वो हर चीज के लिए हमारा व्यवहार बहुत अच्छा साबित
0: जी
1: होगा। जी सर, रेडियो कितने वर्षों से आप सुन रहे हैं?
0: रेडियो मैं 22 वर्षों से सुन रहा हूँ और अभी तो 34 साल का हूँ।
1: क्या बात है सर, मतलब बहुत जल्दी ही आपने रेडियो का साथ थामा।
0: और रेडियो में, रेडियो के क्षेत्र में मैं एकमात्र श्रोता हूँ जिनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है।
1: जी सर, बहुत बहुत बधाई हो। तो सर रेडियो में आज आप क्या सुनना चाहेंगे, अपनी फरमाइश क्या है आपकी?
0: जीवन मृत्यु से सुनवा देंगे, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
1: बिल्कुल, बेहद खूबसूरत गीत है, तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।
0: धन्यवाद।

0: जी कार्यक्रम हेलो फरमाइश सर।
1: हाँ नमस्ते दीदी।
0: जी नमस्ते सर, कहाँ से बोल
1: मैं
0: रहे हैं?
1: गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
0: जी सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप?
1: मैं एक रिटायरमेंट हूँ दीदी,
0: जी
1: मंडी के ऑफिस में काम करता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट कमेटी।
0: जी जी तो सर
1: 2024 में रिटायर होगा,
0: जी
1: अभी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ,
0: ओके
1: 2 महीने हुआ।
0: सर बिल्कुल, एक जॉब में एक लंबा समय देने के बाद खाली बैठने का मुझे लगता है कि मन नहीं करता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सर, और ये बताइए कि जैसे कि पहले जिस जॉब में थे और अभी आप जो जॉब कर रहे हैं, दोनों में आपका अनुभव क्या कहता है?
1: पहले का जो था गवर्नमेंट का था,
0: जी
1: सुविधा अच्छा रहता है।
0: जी
1: हाँ, और टाइम पे आना, टाइम पे जाना, और बहुत बढ़िया रहता है गवर्नमेंट जॉब हो, मगर प्राइवेट प्राइवेट ही होता है।
0: बिल्कुल, थोड़ा सा काम का ज्यादा प्रेशर होता होगा, टाइम की ज्यादा
1: हाँ,
0: पाबंदी होती
1: और
0: 2 घंटे
1: 2 घंटे ज्यादा बढ़ते रहता है।
0: होगी। आप आफ्टर रिटायरमेंट जो आप काम कर रहे हैं, इसमें आपका पहले का जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा साथ देता होगा।
1: जी, क्योंकि अनुभव रहने से यहाँ का काम निपट जाता है
0: जी
1: और आगे वाले को कुछ बोलने का चांस नहीं मिलता।
0: बिल्कुल, आपका जो इतना अनुभव है उससे जो बाकी के लोग हैं वो सीखेंगे भी और समझते
1: बिल्कुल
0: भी
1: बिल्कुल
0: होंगे। जी।
1: बिल्कुल दीदी।
0: तो सर, जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए या फिर पौधरोपण को लेकर क्या कहना चाहेंगे आज आप?
1: दीदी, बारिश के दिनों में ओपन जो रहता है, जो फूड रहता है, खाना
0: जी
1: नहीं, क्योंकि मक्खी मच्छर से आदमी बीमार हो जाता है। देखो
0: जी जी
1: जो भी है, ताजा खाना चाहिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो बारिश का मौसम है ये थोड़ा सा संक्रमण ज्यादा फैलाता है,
1: हाँ जी,
0: और पानी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार का
1: हाँ,
0: पानी पी
1: पानी
0: रहे
1: भी
0: हैं।
1: अच्छा साफ सुथरा पीना चाहिए, गर्म करके
0: जी
1: फिर इसे ठंडा करके पीना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो सर, रेडियो कितने वर्षों से आप सुन रहे हैं?
1: मैं बहुत बचपन से सुनता हूँ, 10 साल का था जब से सुनता हूँ
0: तो सर, आप इतने लंबे समय से एक श्रोता रह चुके हैं आकाशवाणी के, जा रहे
1: आकाशवाणी।
0: हैं।
1: एक ऐसा माध्यम है,
0: जी
1: हर चीज, वो तो अपने सेहत के लिए हो, खेती के लिए हो, और नए नए जो पुराने हो, तो भी अच्छे रेडियो से मिलते, माध्यम से मिलते हैं। और टीवी के माध्यम से मैं समझता हूँ अपने आंखों खराब करना
0: जी
1: और जो कुछ है तकलीफ है जी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, जो गाने हैं, अनसुने गाने हैं, वो आप सुन सकते हैं,
1: हाँ
0: अनसुनी
1: बिल्कुल,
0: कहानियां
1: सुना है
0: आपको
1: जी।
0: जानने का मौका मिलता है।
1: जी,
0: तो सर, आज इस कार्यक्रम में हमारी बातचीत हो रही है, गीत कौन सा आप सुनना चाहेंगे?
1: मुकद्दर का सिकंदर में का वो साथी रे तेरे बिना क्या जीना, ये गाना सुना है जी।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत है सर, तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।
1: कुछ मित्रों नाम दी,
0: बिल्कुल सर, ले सकते हैं।
1: तुकाराम जाधव जी है, बाहुबली फुरसुले साहब है, सुनील झा है, शाहरुख अंसारी है, राजेंद्र गंगवार जी है, भगवान सिंह जी है, तनुश्री है, सातारा जी, ये सभी दोस्तों को सुना है।
0: बिल्कुल, आपको और आपके सभी दोस्तों के लिए ये गीत।

0: हेलो
1: जी सर, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
0: नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: मैं उत्तम सिंह जंगेल आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
1: जी सर, तो बताइए सर, आप क्या करते हैं, अपने बारे में बताएं।
0: मैं टीवी रेडियो रिपेयरिंग करता हूँ।
1: आकाशवाणी के माध्यम से हमारी आपकी बात हो रही है और आप रेडियो को अच्छा बनाने का काम करते हैं।
0: जी जी जी जी
1: क्या बात है
0: जी, रेडियो बनवाने लाते हैं।
1: जी जी, तो सर आज क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं?
0: मैं तो मेरे बचपन भी मतलब मिट्टी के रेडियो बना के खेलते थे।
1: क्या बात
0: आज
1: है?
0: वो रेडियो ही रिपेयरिंग करना कर रहा हूँ, रेडियो भी सुन रहा हूँ।
1: क्या बात है सर, और रेडियो के माध्यम से हमारी आपकी बात भी हो रही है, तो कह सकते हैं कि ऐसा कोइंसिडेंस है कि आप बचपन में शायद आपने नहीं सोचा होगा रेडियो के साथ इतना लंबा सफर आपका चलेगा।
0: जी।
1: तो सर आज क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
0: अभी बरसात का मौसम है, श्रोतागण हो या रेडियो जो सुन रहे हैं उसको कहना चाहता हूँ, बारिश होते हैं तो नदी नाले पार करते हैं तो सावधानी बरतते हैं।
1: जी बिल्कुल, और कहीं भी बाहर जाएं तो बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि पानी अचानक से बढ़ जाता है।
0: जी।
1: और सर पौध रोपण को लेकर क्या कहेंगे?
0: मैं तो छत में ही अपने छोटे छोटे गमले हैं, टीवी का पुराना कैबिनेट है ना,
1: जी
0: उसमें पेड़ पौधे करीब करीब 100 पेड़ पौधे लगाया हूँ।
1: बहुत बढ़िया पहल है ये तो।
0: जी जी।
1: और बच्चों के लिए क्या संदेश है आपके?
0: बच्चों को अब मोबाइल कम देखे, बच्चे और घर परिवार वाले मोबाइल कम दे।
1: जी,
0: मेरा एक छोटा नाती है वो मोबाइल की बहुत रोते हैं।
1: अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं कि आपका जो नाती है वो आपको ब्लैकमेल करता है मोबाइल के लिए?
0: अरे मोबाइल देता हूँ तो रात में मेरे साथ सोते हैं, नहीं तो फिर मम्मी मम्मी बोल के चले जाते हैं।
1: मतलब कि अपनी जिद को मनवाने के लिए वो पूरा प्रयास कर देते हैं।
0: जी जी।
1: और आपको मानना ही पड़ता होगा।
0: जी जी जी।
1: कोई बात नहीं, बच्चों की ये उम्र ही ऐसी होती है, वो बहुत चंचल होते हैं, शरारती होते हैं, और आपको मानना ही पड़ता है, झुकना पड़ता है।

0: जी
1: कोई बात नहीं। तो सर और बताइए, आप गीत कौन सा आज आप सुनना चाहते हैं?
0: मेरे को फिल्म प्यासा सावन का गीत है, तेरा साथ है जो मुझे क्या कमी है, ये वाला गीत।
1: बिल्कुल, मैं आपको कहने ही वाली थी कि सर गुनगुनाएंगे क्या, और आपने खुद ही गुनगुना दिया।
0: ये सुनते रहते हैं कुछ कुछ गाना। गाना तो हम लोग को गाने का आदत नहीं है,
1: जी,
0: लेकिन सुर और बोल याद रहते हैं।
1: कोई बात नहीं सर, गुनगुना लेना चाहिए कभी कभी।
0: जी जी जी

0: श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। और कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिए।
1: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544।

0: 5 2 9 7 1 0 0, मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम की प्रस्तुति रानी राजश्री की थी और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

0: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए समाचारों की।

0: जरूरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज भयल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी बदे भारत का नेशनल यूनिफाइड स्कीम गोवर्धन के मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट में लिए गए यह फैसला का जानकारी दी है। हमें संवाददाता बताने की 23,731 करोड़ रूपया के इस योजना से देश में सीबीजी उत्पादन में करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई। ऐसे भारत के ऊर्जा सुरक्षा की मजबूती मिली। सर्वोच्च न्यायालय याचिकाकर्ता लोगों से केंद्र सरकार के ओ हलफनामा पर जवाब दाखिल करे के कहले हो, जिन्हें कहल गए बा कि नीट स्नातक परीक्षा के पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार कर जा रहा हो।
1: केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान दो चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा कि वह सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घुमंतु विकास बोर्ड के गठन बदे विमुक्त घुमंतु समाज की ओर से लखनऊ में आयोजित आभार ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल भए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री कहने कि विमुक्त जाति भारत के स्वाधीनता संग्राम का सीमा नियम है।
2: ये विमुक्त जातियां, इनको कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं कह सकता, बल्कि ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज गोरखपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वां दीक्षांत समारोह का अध्यक्षता करीन। इस मौके पर वहां के मेधावी लोगों के स्वर्ण पदक देनी।
3: अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवाओं से अनुसंधान, नवाचार और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की अपील की। इससे पहले वह HPV से बचाव के लिए विश्वविद्यालय में चल रहे निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम में भी पहुंची। वहां उन्होंने टीकाकरण करवाने वाली बच्चियों

0: प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने छात्राओं से HPV से बचाव के टीकाकरण के साथ साथ बेटियों की शिक्षा और नशा मुक्त युवा अभियान की महत्ता के बारे में भी चर्चा की। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: प्रदेश के सज्जो जीवन में 9 से 17 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान 2026 के आयोजन चरणबद्ध तरीका से कई जाए।
2: हर घर तिरंगा अभियान में 9 से 12 अगस्त के बीच होने वाले दूसरे चरण में प्रत्येक जनपद के तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसके अलावा तिरंगा महोत्सव, तिरंगा मेले का आयोजन भी किया जाएगा। तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त के बीच शिक्षण संस्थानों में रैलियां आयोजित कराई जाएंगी। मेरठ, चौरी चौरा, झांसी किला, बिठूर, रेजिडेंसी, बलिया, सुहेलदेव स्मारक पर 9 से 15 अगस्त तक विशेष आयोजन भी किए जाएंगे। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: प्रतापगढ़ जिला के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के महुली गांव में आज रात 2 बजे एक जर्जर मकान गिरने से ओकरे मलबा में दब के 6 दिनी का मौत हो गई। बरखा के नाते भयल यह दुर्घटना में मलबा के नीचे 7 लोग दब गए रहने, जिनमें से 1 जने के सुरक्षित बचा ले गए बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एगो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक हादसा पर गहरा दुख जतौले हमें। एक और हादसा में बाराबंकी जिला के दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के गुलचप्पा कला गांव में आज भी एगो पुरान पक्का दीवार गिरने से 2 गो सगे भाई बहन की मौत हो गई। यह दुर्घटना में 3 लड़के गंभीर है घाही हमें। मौसम विभाग बिहने से लेके आने वाला 9 अगस्त ले पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बरखा का येलो अलर्ट जारी कर लिया हो। विभाग के मुताबिक अजो प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी इलाकन में कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी बरखा भयले के संभावना बनल बा। समाचार पूरा भई, नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, ये समय है सूचना और कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले आपको सूचना दे दें खोए हुए व्यक्ति के संबंध में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सविता देवी, पत्नी सुरेंद्र कुमार, निवासी ग्राम भावर, थाना बबनी, जनपद सोनभद्र से दिनांक 18 जून 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 19 वर्ष है, लंबाई लगभग 5 फीट, सांवला रंग और चेहरा गोल है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें।

इसी संबंध में एक सूचना और। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अंकिता पटेल पुत्री स्वर्गीय पंकज निवासी ग्राम बिरधी थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से दिनांक 16 मार्च 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 19 वर्ष है, लंबाई 5 फीट, होलिया सांवला रंग, लंबा चेहरा और इकहरा बदन है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित किया जाए। और श्रोताओं, अब संक्षिप्त विवरण आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। अब से कुछ ही देर में यानी 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत, जिसमें प्रसारित होगी जिला आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार यादव से सुरसरी द्विवेदी की बातचीत। विषय होगा वज्रपात एक राज्य आपदा, मुआवजा प्रक्रिया और बचाव के उपाय। 6:50 पर आप सुनेंगे किसानवाणी कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से। संसद समीक्षा प्रसारित

दिल्ली केंद्र से ही रात 10 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का कार्यक्रम। विधानमंडल समीक्षा लखनऊ केंद्र से प्रसारित होगी रात 8:20 पर।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:30 पर और रात 9:45 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस सुना जा सकेगा शाम 7:31 पर और फिल्म संगीत होगा रात 9:30 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: सब पंचन के राम राम।
1: नंदू भैया राम राम हो।
0: आपो के राम राम, सब पंच भैया लोगन के राम राम।
1: और बताओ मैं का हाल चाल बा।
0: देखो हाल तो गुलाबो बहिन इस समय अलग ही बाहो, काहे से कि देखे रात से ही मौसम जोन माना कहीं न कहीं अपन बुन्नी बरखा भी बढ़िया बहु रहल बा। और किसान भैया लोग भी बड़ा खुश हुआ कि जहाँ टड़खेतिया रहल, जहाँ धान के अपन नर्सरी लगावे के भैया योजना रहल, लगत रहे कि न लग पाई, लेकिन दो बरियार चोले
1: बिल्कुल
0: अब तो निश्चित बा कि भैया लोग अपन धान के नर्सरी या बुवाई धान के रोपाई कर दिए हैं। ओकरे साथ साथ देखे अपने एक चीज और बा कि जहाँ भी अपन खर पतवार बा, मोटनजा जहाँ बा भैया, ओकरो में अपन ध्यान बनल रहे कि भैया ओकर खर पतवार निदान हो जाए, और कहीं अगर आप पानी निकास के अगर पानी लगे के अंदेशा होखे तो ओमे अपन नाली भी बना देवे या मेड़ डाँड मेड़ भैया काट देवे बढ़िया से, ताकि पानी निकल जाए और ठीक ढंग से अपन हो जाए। लेकिन ओकरे बीच बीच में हम एक बात कहब गुलाबो बहन कि देखे जब अपन बुन्नी बरखा होला ना, तो ओकरे साथ साथ दऊ जोन बा आपदा के भी जोन बा कहीं न कहीं घंटी बजावल है।
1: अरे भैया देखा बस वह बात हम तुझसे पूछे वाला रहली हो कि देखा तू आवत का भीज गई ला तो के मालूम नहीं रहला कि अपन फोने पे देखा मैसेज पे मैसेज आवत बा कि अब देखा आधा घंटा में भारी बारिश होए वाला बा। अब तरह तरह का मैसेज देखा मौसम विभाग से आ जात बा। तो ऐसने में तो हम लोगों को सचेत हो जाए के चाहिए कि अगर देखा घरे से निकलत हई तो देखा अपन छर छाता ले ली, अपन ऐसे समय पे निकली कि वो टाइम अपने घरे में रही या केहू के घरे में रही, मतलब खुले स्थान पे न रही।
0: बिल्कुल
1: कहें
0: बिल्कुल।
1: कि जोन ये मौसम चलत बा ना नंदू भैया, ये समझ ल कि कहीं ना कहीं देखे अपने स्वास्थ्य के प्रति, चाहे अपने जान जानवर के प्रति, अपन चाहे बाल बच्चों के प्रति, हम लोगन के सतर्क रहे की जरूरत बा।
0: एकदम गुलाबो बहन बात आप ठीक कहते हैं, लेकिन देखें जहाँ काम के जरूरत बा, अब देखा अगर हम छाता देखा बगले में रख ले है, अगर छाता ना रहत आप तो सही सलामत देखा आज बैठती मुँह
1: हाँ
0: भी ना जुड़
1: बिल्कुल
0: पौती।
1: बिल्कुल यही से देखा कहल जात बा ना कि अपन देखा जब जानकारी मिल जात बा तो हम लोगन भी देखा जागरूक हो जात हैं और जागरूक हो के अपने हाथी में छाता बा। लेकिन देखा तब वो कितनों भैया करा ना घरे से निकलला के बाद ना लेकिन एकदम सटीक जानकारी नहीं मिल पावला। ये होला कि आधा घंटा में अपन बारिश हुई, बस वो आधा घंटा में कभी

0: हो जाए, पता चला घरे से भरे नहीं करते बारिश हो गल
1: देखा
0: तो।
1: अपन अपन तो जोन भी है इच्छा रहला वो तत्काल रहला पता चल जाला, लेकिन देखा दौ के इच्छा भी है कहीं धूप कहीं छाँव
0: बिल्कुल
1: वाला
0: बिल्कुल।
1: रहला तो इत अपन चलते रहे। लेकिन एक बात देखा और हम कहब गुलाबो बहिन कि देखा यही बीच जोन बा जब बुनी बरखा होला तो कहीं न कहीं ऐसा जोन बा आपदा के रूप में जब बिजली के रूप में जाए कहीं न कहीं अपन ऐसा दव के कहर रहेला
0: बिल्कुल,
1: जौन
0: देखे
1: की चाहे
0: वज्रपात भी कहल जाला।
1: चाहे माल मवेशी होके चाहे जिया जनावर चाहे आदमी होके वो कहीं भी बिया गिर सकेला। इसे देखें कहीं न कहीं बहुत सारा अपन जिला जवार भी ऐसा बा कि जौन बा हमेशा सुने के मिलला कि बिया वज्रपात वहाँ हो गई वहाँ हो गई वहाँ
0: बिल्कुल
1: हो गई।
0: बिल्कुल, यही से देखा सरकार भी अपन तरीका तरीका के ऐप चला देले बा, एक दामिनी ऐप बा भैया, ऐसे देखा पता चल जाला कि इतना घंटा में इतना इतने दूरी पर बरसात होखे वाला बा या कड़क बिजली गिरे वाला बा। तो ऐसने में देखा अगर हम लोगों के फोन पे, अब तो जो बड़का बड़का फोन चाहे छोटका फोन हो केहू के फोन पर वो मैसेज आ जात बा, हिंदी में अंग्रेजी में जैसे ना पढ़ सकें, वो जब मैसेज आ जात बा भैया, तो हम लोगों के भी जागरूक हो जावे की जरूरत बा। अगर हम लोगों के जरूरत बा भी कि हम लोग बाहर निकल के अपन पशु लोगों के चराई चाहे बाहर निकल के कोनो काम करी, तो ऐसने में हम लोगों रोक सकीला उस समय अपन काम के रोक देवे के चाहिए, काहे कि देखा अपने जान से बढ़कर कोनो भी काम नहीं बा।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: देखा ये वज्रपात का जोन बात भाई भैया कि जोन वज्रपात अपन जोन होत बा, ऐसने में भी हम लोगों के भी जागरूक हुए के जरूरत बा कि हम लोगों अपने घरे से भरे ना निकली, दूसर छात जहाँ हरियर पेड़ हो वहाँ ना जाई, जहाँ खंभा हो वहाँ ना जाई, जहाँ छाता मतलब छत वाला घर जहाँ बा वहाँ जाई, प्रयास करी वहाँ रही। अगर आप कहीं बाहर हमें घर से बाहर तो प्रयास करें कि केहू को भी गाड़ी घुपा तो उनमें आप घुस के बैठ जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल गुलाबो बहन बात आपके एकदम बीच सही बा। और देखें कहीं न कहीं एक चीज बात और बा कि जहाँ तक कि दामिनी ऐप बा या और कुछ बहुत सारा कंपनियां जैसे ग्लोबल के बात करला
0: बिल्कुल
1: और बात करला बहुत ऐप हैं, लेकिन देखें अपन जो मौसम विभाग भी बा वो भैया अपन पहले सचेत करत बा इस समय कि भैया गरज तड़क के साथ जोन बा बारिश हुई
0: बिल्कुल
1: तो उनमें अपन जरूर सजगता अपनावें। और देखें जहाँ जैसे आप बतौलें कि बिजली के तार भी दौड़ल बा वहाँ न रह जाए खंभा के बीच न छुअल जाए।
0: बिल्कुल
1: और अगर भैया अगर ये जान लें कि अगर खंभा जोन बा बिजली वाला अगर पानी में बा तो आप पानी के नज़दीक भी अपन जाए से बचें, काहे
0: बिल्कुल
1: से कि देखें अगर खंभा में अगर करंट आई तो आपके जोन बा पानी में भी करंट आ जाए तो उसे भी आपके दिक्कत हो सकला। तब बस सजगता अपना के जोन बा अपन सुरक्षा और अपन जोन भी अपने पास में जो गऊ चर हो या और बचवा लोग हों वो सबके सुरक्षा करल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो ऐसे में देखा है आज अपने कार्यक्रम में पंचायती में जब हम लोगों ने जुटल गई बा तो देखा है वज्रपात एक राज्य आपदा, मुआवजा प्रक्रिया और बचाव के उपाय, ये पे देखा अरुण कुमार यादव भैया जो हुआ वो जोन के जिला आपदा विशेषज्ञ हुआ, उनसे देखा अपन सुश्री द्विवेदी जी के भेंट मुलाकात भइल बा। अब हम कहब ना कि इनकर देखे बतावल जानकारी हम लोगों सुनल जाए ताकि हम लोगों के अपने जीवन के जिए में और भी हम लोगों के सहायता मिल सके। तो देर कौने बात का आवा
1: आवाज
0: इनकर
1: सुनल
0: जानकारी
1: जाए।
0: सुनल जाए।
2: साथियों, जैसे जैसे मौसम बदलता है, धरती पर हरियाली फैलती है, बारिश होता है, कभी कभी आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देता है और हम सब बाहर निकल के उस इंद्रधनुष को देखते हुए आनंद लेते हैं। पर इसी मौसम में कभी कभी बिजली इस कदर गरजती है कि हम आप सहम कर घर के अंदर हो जाते हैं। और आपने सुना होगा कभी यह बिजली गिरती भी है और जहां गिरती है वहां धन जन सबकी हानि होती है। आकाशीय बिजली यानी वज्रपात, आप सबको यह जानना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राज्य आपदा की श्रेणी में रखा है। आपदा की बात करते हैं तो आज आपदा प्रबंधन से आपदा विशेषज्ञ श्री अरुण कुमार यादव जी हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आए हैं और इस पर विस्तृत जानकारी हम सबके साथ साझा करेंगे। तो अरुण जी नमस्कार।
3: जी नमस्कार।
2: अरुण जी, आज हम बात करते हैं आकाशीय बिजली से जुड़ी समस्याओं की।
3: जी,
2: तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आकाशीय बिजली यानी वज्रपात यूं तो एक प्राकृतिक हादसा है, पर इससे होने वाली जो धन जन हानि है

0: उसे आपदा प्रबंधन किस तरह से देखता है।
1: जी, जैसा आपने बताया कि आकाशीय विद्युत से होने वाली जनधन की हानि के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित किया है और इस दौरान होने वाली क्षति को किसी भी प्रकार के जनहानि के दृष्टिगत 4 लाख रुपए की अहेतुक सहायता देती है। और आपदा प्रबंधन विभाग का यही प्रयास रहता है कि पूर्व चेतावनी प्रणाली के तहत लोगों को जागरूक किया जाए जिससे कि इस जन धन हानि को कम किया जा सके।
0: जी जी जी, आपने जो मुआवजे की बात करी वह तो मृत्यु की दशा में है
1: जी,
0: किंतु आकाशीय बिजली से मृत्यु नहीं बल्कि अंग भंग होने पर शासन द्वारा किस प्रकार की सहायता राशि के कोई प्रावधान है क्या?
1: जी बिल्कुल, आकाशीय विद्युत से कोई व्यक्ति जब घायल होता है 24 घंटे से अधिक और 1 सप्ताह तक जिसका इलाज चलता है
0: जी,
1: उसको सरकार 5400 रुपए और 1 सप्ताह से अधिक इलाज चलने पर 12000 रुपए की सहायता देती है। और अगर किसी प्रकार की विकलांगता की श्रेणी आ जाती है उसमें, तो उसमें भी उसके अनुरूप मानक यानी कि स्वास्थ्य विभाग से ये प्रमाणित होना चाहिए कि इनकी आकाशीय विद्युत की इस घटना से कितने प्रतिशत की विकलांगता हुई
0: जी,
1: तो उसके आधार पे भी अलग अलग क्राइटेरिया में मुआवजा दिए जाते हैं।
0: अब यह तो बात हम आम जन के लिए है, किंतु जब बिजली गिरती है ना तो वो इंसान, पशु, मकान किसी भी चीज में भेदभाव नहीं रखती है
1: जी, बिल्कुल।
0: उसमें इंसान भी क्षतिग्रस्त होते हैं, पशु भी क्षतिग्रस्त होते हैं, हमारे जो मकान बने हुए हैं वह भी ध्वस्त होते हैं, कई तरह के नुकसान होते हैं। तो पशुधन या मकान के नुकसान पर भी क्या मुआवजे का कोई प्रावधान है?
1: जी बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जो जिस प्रकार की क्षति होती है आकाशीय विद्युत की, उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रावधान है। जैसे कि अगर जनहानि होती है तो 4 लाख रुपए की अहेतुक सहायता, अगर घायल होता है व्यक्ति तो मैंने अभी बताया 5400-12000 अलग अलग चीजें हैं। और अगर पशु की हानि होती है, अगर वो पशु दुधारू पशु है तो 37500 रुपए, अगर गैर दुधारू है तो 32000 रुपए, अगर वो छोटा दुधारू पशु जैसे कि भेड़ बकरी है तो 4000 रुपए प्रति पशु, और अगर छोटा गैर दुधारू पशु है तो 20000 रुपए, यानी कि बछड़ा उसके माने गाय के बच्चे या भैंस के बच्चे तो उसका अधिकतम 20000 रुपए। अगर मकान क्षति होती है तो मकान क्षति में कच्चे आंशिक क्षतिग्रस्त मकान, जैसे कच्चे मकान है अगर वो आकाशीय विद्युत की वजह से अगर वो क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको 4000 रुपए का मुआवजा मिलता है, और अगर पक्का है, अगर आंशिक क्षतिग्रस्त हो गया तो 6500 रुपए, अगर कच्चा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया तो 1,20,000 रुपए, और पक्का पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया तो भी 1,20,000 रुपए।
0: जी जी जी, कहीं ना कहीं ये धनराशि उनके भवन के मरम्मत के लिए
1: जी
0: समय से बहुत ही मददगार होगी। अरुण जी, अभी आपने बताया कि प्रशासन बिजली गिरने से रोकने के लिए भी तमाम प्रयास करता है
1: जी जी,
0: मगर है तो ये प्राकृतिक आपदा
1: जी,
0: पर प्रशासन के पास बिजली गिरने से पहले पता लगे कि बिजली गिरने वाली है
1: जी,
0: इसके लिए भी कोई व्यवस्था है क्या?
1: जी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लगातार इस पे प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें से कई सारे प्रयास सफल भी हैं। अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कई सारे ऐप डेवलप किए गए हैं, जिसमें दामिनी ऐप, सचेत ऐप, इन सब ऐप के माध्यम से हम आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान और तमाम खराब मौसम की सूचना हम समय से पूर्व प्राप्त कर सकते हैं। और राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जब भी कोई भी पूर्व सूचना हमको मिलती है तो जनपद स्तर पे अन्य अन्य विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई भी पूर्व चेतावनी मिलने पे उन लोगों के माध्यम से ग्राउंड लेवल पे ये सूचना पहुंचाने के लिए गांव स्तर पे भी ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें लेखपालों के माध्यम से वो मैसेज डाला जाता है जिससे कि पूर्व सूचना उनको मिले। बस यही है कि आम जनमानस से यही अपील है कि वो लोग उस मैसेज को गंभीरता से लें। कभी कभी ऐसा होता है कि IMD ने कोई मैसेज जारी किया और वो आम जनमानस तक पहुंचा और उसके हिसाब से वो मौसम खराब नहीं हुआ, यानी बारिश नहीं आई, आंधी नहीं आई, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगली बार जब मैसेज आता है तो लोग उसको गंभीरता से नहीं ले

0: और घटना घट जाती है।
1: उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जब जब मैसेज, जब जब अलर्ट मिले, उसको ये मान के चलना है कि ये हमारे जीवन रक्षा के लिए हमको सचेत किया जा रहा है और इसके लिए हमको उसके अनुरूप अनुपालन करना है।
0: जी बिल्कुल। और कहते भी हैं कि दुर्घटना से भला है कि हम सतर्क रहें।
1: जी बिल्कुल।
0: ऐसा होता है, जैसे ही हमारी सावधानी हटती है दुर्घटना घट जाती है। अब हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि कुछ सरकारी भवन, स्कूल, पक्के मकान जब लोग बनाते हैं ना, तो उस पे वो लोग तड़ित चालक लगा रहता है,
1: जी
0: तो क्या यह अनिवार्य है? और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो निजी घर बन रहे हैं उनको सुरक्षित करने के लिए भी यह तरीका अपनाया जा सकता है?
1: जी स्वैच्छिक रूप से तो कोई भी व्यक्ति इसको लगवा सकता है, लेकिन सरकारी भवनों पे लगाने के लिए तो ये निर्देश हैं। सरकारी भवन जो भी बने रहते हैं लगे रहते हैं, और खासकर आजकल स्वयं से लोग सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो सोलर पैनल के साथ तड़ित चालक यंत्र लगाए ही जाते हैं। हालांकि उनकी क्षमता बहुत अधिक कैप्चरिंग नहीं रहती है कि बहुत दूर की आकाशीय विद्युत को कैप्चर कर ले, लेकिन ये है कि कम से कम वो एक मकान तो सुरक्षित हो जाता है। और सरकारी भवनों पे तो ये लगाना कंपलसरी ही है। और अपने जनपद में सोनभद्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है दुधी ब्लॉक में, जो यहाँ अधिक घटनाएं होती हैं, वहाँ 30 जगह अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं जो सायरन के माध्यम से ग्रामीणों को पूर्व चेतावनी देते हैं।
0: और इससे लोग सतर्क हो जाते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: और सतर्कता से घटना टलती है, ये तो बहुत ज़रूरी है जानना। पर देखिए, दुर्भाग्यवश कहीं घटना घट गई, देखने के लिए तो तमाम लोग आ जाते हैं
1: जी जी
0: सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करने के लिए, पर यहीं वहाँ तुरंत पहुंचा हुआ व्यक्ति इस बात से भ्रमित रहता है कि जिस व्यक्ति पर बिजली गिरी है उसे तुरंत छूने से हमें भी करंट लग सकता है। तो क्या बिजली से झुलसे व्यक्ति को तुरंत छूकर प्राथमिक उपचार, जैसे कि होता है ना कृत्रिम सांस, CPR इत्यादि दिया जा सकता है?
1: जी बिल्कुल। ये तो भ्रामक बातें हैं कि आकाशीय विद्युत से घायल व्यक्ति को छूने से बिजली लगेगी। निश्चित तौर पर कभी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर व्यक्ति अभी जिंदा है तो उसको तत्काल उठाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो कोई जानकार व्यक्ति अगर CPR देना जानता है तो अगर उसको उचित लगता है तो CPR भी दे सकता है, लेकिन यह है कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तत्काल प्रभाव से ले जाकर उनका प्राथमिक इलाज कराना सबसे बेहतर माना जाएगा।
0: और दुर्भाग्यवश यदि घटना हो गई और भाग दौड़ में कागजी कार्यवाही या पोस्टमार्टम में देरी हो जाए, तो मुआवजे के लिए आवेदन की कोई निर्धारित सीमा अवधि भी है क्या?
1: नहीं, इस तरह की कोई सीमा अवधि नहीं है। अब चूंकि वो व्यक्ति आकाशीय विद्युत से उसकी मृत्यु हुई हो, चाहे घायल हुआ, वो उसको अस्पताल जाना ही जाना है, तो वहां से ही उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज के उनका पोस्टमार्टम करा लिया जाता है। अगर किसी प्रकार के कागजात में किसी प्रकार की देरी होती है तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना गया, गलती नहीं मानी जाएगी, उनका एक दो दिन बाद भी आवेदन करते हुए उनको मुआवजा राशि दी जाएगी।
0: तो यह थी आकाशीय बिजली से होने वाली घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कराने के लिए कुछ एहतियात और घटना के बाद मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से संबंधित जानकारी। हमारे साथ हैं अरुण जी, आपने जानकारी साझा करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: गुलाबो बहन।
3: हाँ भैया।
2: देखिए, अपन रहे अरुण कुमार यादव जी, जो अपन जिला आपदा विशेषज्ञ रहले, और अपन सुशरी देवी बहन रहली है, अपन कितना बढ़िया अपन बातचीत के लिए।
3: बिल्कुल जॉन भी
2: कौने स्थिति में कौने अपन ये अगर कोई के अगर मृत्यु हो गई तो कर दशा में का हुई, अंग भंग हो गई तो कर दशा में का हुई,
3: बिल्कुल यानी
2: कहे का मतलब मिली, कब मिली,
3: हाँ।
2: मतलब भी पूरा जानकारी जोन बा,
3: हाँ।
2: वो अपन देहले तो
3: मतलब व्यक्ति के अगर दिमाग में कोनो भी सवाल चलत बा तो ओकर देखा सवाल का बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब देलन है अरुण कुमार यादव जी। भैया के देवल जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो धन्यवाद देवल जय। और देखा एक बात हम और कहब कि भैया वो इस समय भी मौसम ऐसे कुछ चलत बा, भैया देखे दो दिन पहले खूब तड़क गड़ज के साथ अपन जोन बा अब उन्नी बरखा होत रहे, तो ऐसे में अपन एहतियात बरते हैं। और हम तो एक बात और कह पंच भी है लोगन के भैया हो इस समय अपन जोन भी खेती बाड़ी के काम बा ओकरे साथे साथे देखे अपन पेड़ पालो भी लगल बा, बागवानी लगल बा, ओकर भी आप ध्यान रखें। काहे से कि देखें इस समय कीड़ा मकोड़ा के भी प्रकोप रहला, या अपन ऐसा जगह लगा दले हम जहाँ से ज्यादा पानी निकलत।

0: जो ओकर रास्ता बदल देवे, ताकि जो अपन पौधा लगल बा भैया वो सुरक्षित रहे और वो बढ़े और पेड़
1: बिल्कुल
0: के रूप में अपन वो दिखाई देवे, तब जाकर के आपके सार्थकता हुई। और कहीं फलदार बा तो भैया ओकर जितना आप जोन बा साग सब्जी के नर्सरी के ध्यान कर रहे हैं कि भैया अपन कुछ दिन में फल दे,
1: बिल्कुल
0: वही तरह से ओकर भी सुरक्षा करें ताकि आगे चल करके वो भी आपके फल देवे
1: बिल्कुल
0: और एक
1: भैया
0: मुनाफा के साधन बने।
1: एकदम भैया सही कहा। और देखा कोनो भी पौधा हम लोगन जैसे लगाई ल जब तो ओके एक समझ लो छोटवार बचवन जैसे हम लोगन के पाले पोसे के बा। जैसे एक बचवा के हम लोगन पाल पोस के बड़ा करे ल जाए, वही प्रकार से एक पौधा के भी हम लोगन के पाल पोस के बड़ा करे के जरूरत बा, ओकर रखवाली करे के जरूरत बा। जैसे कि अब बचवा देखे पेड़ लगा के हम लोगन निश्चिंत हो गए, पता चला कि कोनो गाय गोरुआ के खाए गल अपन छगड़ी खा गेल, तो अगर वो देखा पौधा के नुकसान हुई अकबो कबो देखला कि अगर पशु अगर मुंह लगा देवलन तो पौधा के जो बढ़ोतरी भी ज्यादा नहीं होत, वो कहीं ना कहीं कोनो दिक्कत सामना देखे के पड़ला। लेकिन
0: और ओकरे साथ साथ अगर छोट पौधन के अगर कहीं बता गुलाबो बहन अगर ओके कुछ काट दे तो पशु लोग या बकरी जौन भी, तो एक चीज ई हो जाला कि ओमे से जौन शाखा निकलला वो देखे अपन कमजोर हो जाला, काहे से कि एक गांठ के तरह निकलला। और
1: बिल्कुल
0: जब गांठ के तरह निकलला तो जब तेज आंधी तूफान आवला तो ऊ जौन बा फटके अपन गिर जाला।
1: बिल्कुल तो
0: तो
1: यही से कहल जाला कि अपने पौधा के लगावे से ज्यादा ओके सींचे के जरूरत बा,
0: बिल्कुल
1: ओके पाले पोसे के जरूरत बा। अगर आप ओके सही तरीका से पाल पोस दिए, अगर वो हम लोगों से अगर पेड़ पौधा ऊपर चल गल पेड़ का रूप ले लेलस तो फिर आगे वो सुरक्षित ही हो जाला। और देखा यही बाती के साथे हम तो कहब ना कि भैया अब सावन जब चलत बा ना, और सावन जब आ गई तो कजरी बिना देखा सून बा, और अपने पंचायती में कजरी ना हो ये तो समझ ले कि कुछ अच्छा नहीं लगत बा। तो
0: तो
1: अगर
0: देखा
1: आप
0: मीना
1: कहें
0: देवी बहन है ना वो एक कजरी सुनाई है, लेकिन उससे पहले आप कुछ संदेश सुन लिया जाए।
1: चला
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए, 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: गुलाबो बहन
1: हाँ नंदू भैया,
0: देखा ये मीना बहन रली और यो जोन बा अपन कजरी सुना दिली। अब तो हम लगत बा कि तोहार एकदम मन फरहर हो गई होए।
1: एकदम एकदम
0: तो मन फरहर बा तो देखा एक जोन बा बाजार भाव भी आपके हाथ में लगल बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कहाँ गे
1: भैया,
0: बा ओहू के बाँच द।
1: एकदम भैया। देखा है हम लोगन जब अपन गीत गौने सुनत रहिए ना, वही समय हमारे हाथे में बाजार भाव लगल। और देखा है बाजार भाव है पुनवासी चौहान भैया के भेजल मधुपुर से प्रति कुंतल में। तो अगर आप कहें तो अपने
0: एकदम
1: पंच
0: एकदम
1: पंच
0: एकदम
1: भैया
0: बाज
1: लोगन के भी
0: दे।
1: बाँच के बताई भैया। लाल आलू देखा है इस समय मधुपुर में 1200 रुपया प्रति कुंतल है। सफेद आलू देखा है 1000 रुपया प्रति कुंतल है। प्याज देखा है 2500 है। टमाटर 2400 रुपया कुंतल। मिर्चा 5500 है। लहसुन देखा है 9000 रुपया प्रति कुंतल है। अदरक देखा है 14000 है। भिंडी 1000 है। करेला 3500 रुपया प्रति कुंतल। अरुई और बंडा भैया 2800 रुपया प्रति कुंतल। बोड़ा देखे 2000 है। परवल 6500। लौकी देखे 1800 है। नेनुआ 1500 रुपया प्रति कुंतल। कोहरा 1000 है। शिमला मिर्च देखे 6000 है। पपीता 2000 है। पालक 1200 रुपया प्रति कुंतल। गोल बैगन 3000 है। लंबा वाला बैगन देखे 1500 रुपया प्रति कुंतल है। सूरन 4000 रुपया प्रति कुंतल।

0: कुंदरू भैया देखें 1800 है, मूली 2000 रुपया, गाजर 3000 रुपये प्रति क्विंटल, खीरा 2500 है, चुकंदर चुकंदर जो है 3200 रुपये प्रति क्विंटल, बीन्स देखें 2500 है, धनिया 7000 है, फूल गोभी 3000 रुपये सैकड़ा, पत्ता गोभी 2500 रुपये सैकड़ा, नींबू भैया देखें 200 रुपये सैकड़ा। ई रहल बाजार भाव पुनवासी चौहान भैया का मधुपुर से प्रति क्विंटल में बाजार भाव। तो भैया के देवल जाए बहुत
1: इनके
0: बहुत
1: भी
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद दिहल जाए।
0: बिल्कुल
1: और अगले क्रम में देखें अपन जोन बा किसान उत्पादक संगठन जोन बा अधिलाता कृषि उपज का सही माप पारदर्शी मूल्य जोन बा कैसे कि देखें गुलाबो बहन बहुत किसान भैया लोग पंच भैया लोग मेहनत करल हैं, लेकिन जब उनके मेहनत के अनुसार उनके अगर दाम न मिलला तो बड़ा दिक्कत होला।
0: बिल्कुल
1: और देखें एकर यह भी मनसा बा राष्ट्रीय कृषि बाजार के कि भैया भारत सरकार के एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल बाई जेकर कि 14 अप्रैल 2016 में देश भर में शुरू कैल गई। और एकर यह मनसा बा कि भैया एक राष्ट्र एक बाजार होके और जोड़ के जोन बा एकीकृत बाजार होके, पारदर्शी होके,
0: बिल्कुल
1: गुणवत्ता जांच होके, सीधा एकर भुगतान होके और जोन बा बिचौलियन से इनकर भूमिका कम होके, कहे से करके बीच में बिचौलिया लोग जोन बा कम दाम में ले जाले उनसे छुटकारा मिले, किसान
0: बिल्कुल
1: भैया लोग घर बैठे ताजा भाजा बाजार भाव मिल जाए और देश के कोई भी हिस्से में जोन बा एकर खरीदारी के बोल जोन बा ऑनलाइन करल जा सके।
0: बिल्कुल भैया। और देखा आपके बात के संगे हम तो कहम ना कि गौरी शंकर कुशवाहा भैया भी तैयार हुआ अपन भोला भैया के संगे। और देखा किसान उत्पादक संगठन दिलाता कृषि उपज का सही व
1: टावर सुनल
0: पारदर्शी
1: जाए।
0: मूल्य। चलो सुनल जाए।
2: किसान भाइयों बहनों, अपने जिला जवार में एक अच्छे से अच्छे किसान से कम खेत क्षेत्रफल वाले किसान भी हैं जो खेती करके अपना जीविकोपार्जन के साधन बनाते हैं, लेकिन आज के भागदौड़ में जो कृषि यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, तरह तरह के बीज का, खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो अचानक यदि बाजार में चला जाया जाए तो या तो बहुत महंगे दर पर मिलेंगे या फिर जो है कि उपलब्ध होने की संभावनाएं नहीं हो पाती हैं। अब जैसे मान लिया जाए कृषि यंत्र में ट्रैक्टर वगैरह लेना है, किसी किसान के पास बीघा 2 बीघा 3 बीघा ज़मीन है और अब उसको ट्रैक्टर ले करके उतने के लिए कितना जुताई करेगा, तो इसमें समूह बना करके किस तरीके कृषि यंत्र ले सकते हैं और जितने भी समूह के किसान भाई बहन लोग हैं वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इस विषय में चर्चा करने के लिए ये दुधी प्रगतिशील एग्रो फार्मिंग प्रोड्यूसर के जो चेयरमैन हैं गौरी शंकर कुशवाहा जी, आपसे मुलाकात हो रही है कि सरकारी योजना के तहत जो भी खाद बीज या कृषि यंत्र उपलब्ध होते हैं उसको कैसे हम लोग ले सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे हम लोग समिति से जुड़े, इसके लिए क्या क्या कुछ करना होगा, आपसे बातचीत होगी। गौरीशंकर कुशवाहा भैया, आपको रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो तमाम किसान भाई लोग हैं, चूँकि आपसे बहुत लोग जुड़े हुए भी हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, बहुत कम भूमि वाले लोग हैं, लेकिन उनको भी आज बैल रखने में दिक्कत हो रही है कि हम जो है कि बैल चराएं कि सब्जी बेचने जाएं कि क्या करें, तो ऐसे में कृषि यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे किसान भाई लोग क्या करें और आपके ये समिति जो सरकार का है उससे कैसे जुड़ सकते हैं लोग?
3: देखिए, ये पीओ जो है भारत सरकार की एक योजना है।
2: जी
3: आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है गरीब किसान किसानों को ध्यान में रखते हुए एक पीओ का गठन कराया है।
2: जी
3: एक ऐसा फोरम है जो वहाँ पे किसानों की सारी समस्या दूर हो और समूह के माध्यम से हो।
2: जी
3: यह पीओ में है जो कि आप जो है कोई भी चीज जब कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना उत्पाद जो है बेच सकते हैं।
2: जी जी
3: और कंपनियां कंपनी को रिटेल प्राइस में, यानी कम से कम जो उनका होता है कंपनी एक्ट के तहत, तो वो सामान को कम से कम कीमत में रिटेलर के रूप में देते हैं।
2: जी जी
3: तो जब हम अकेले फुटकर दुकान पर खरीदने जाते हैं तो हमें काफी महंगा मिलता है और समय से उपलब्ध भी नहीं हो पाता है।
2: जी
3: तो जब हम कंपनी से माल खरीदेंगे और मैं भी कंपनी माने एफपीओ समूह का किसान, तो उसमें क्या होगा, हम तादाद में मंगाएंगे।
2: जी
3: तो उससे क्या होगा जो हमको आसानी से सामान भी मिल जाएगा और रेट भी रिटेल प्राइस में लगेगा और आसानी से किसान को उपलब्ध हो जाएगा।
2: जी, जी
3: और जब किसान उत्पाद करेगा कोई भी कृषि उत्पाद तो हम इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे ये भारत में 10,000 एफपीओ बनना है।

0: प्रधानमंत्री जी का सपना है और 10,000 में जनपद सोनभद्र में 2 अभी नाबार्ड के तरफ से बना हुआ है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: उसमें है कि उसका जो वित्तीय जो है व्यवस्था वो नाबार्ड करती है और इसका देख रेख की व्यवस्था जो है फोरेस करती है। एक एनजीओ है कलकत्ता से वो अपना देख रेख करती है। उस कंपनी को मिला है एनजीओ को, वो इसका सुपरविजन का काम करता है।
1: जी, जी, जी,
0: और इसमें जो है शुरुआती दौर में हुआ जो कि इसके लिए 10 मेंबर की आवश्यकता होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जब 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएंगे, जैसे 10 गांव के हैं,
1: हाँ, हाँ।
0: या 2 गांव के बीच में, तो 20 गांव के बीच से 10 लोग हैं, तो यानी उनके परिचय में और उनसे लगाव में बहुत सारे गांव के लोग हैं, तो वो उनकी बात बड़ी आसानी से समझते हैं और उनको उनके तरफ से जो भी सुविधा होगा वो आसानी से वहां तक पहुंच जाएगा।
1: जी, जी, जी।
0: तो ये 10 बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, इनका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, खतौनी।
1: अच्छा अच्छा।
0: और एक डोंगल भी बनता है, माने कि अंगूठा जो
1: के लिए,
0: हाँ, जो कि आप जो है सिग्नेचर डोंगल में रहेगा तो उससे क्या होगा जो कि लेन देन करने में आसानी हो जाता है डिजिटल। अब इसके बाद तो है जो कि इसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन का खर्चा जो है वो एनजीओ देगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: और वो एनजीओ जो है नाबार्ड के तरफ से देगा, नाबार्ड के थ्रू, यानी वित्तीय व्यवस्था जो है वो नाबार्ड का है
1: जी।
0: और इसके बाद इसका जो है ऑफिस कानपुर में है, कानपुर में जाकर के इसका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद लाइसेंस मिल जाता है
1: जी।
0: पर इसके ऑफिस की जब बात आती है तो ऑफिस में जो है बिजली का बिल, मकान के किराए का, रेंट का एग्रीमेंट, ये दोनों चीज लगता है जो कि आप जहाँ भी ऑफिस खोलेंगे वो रजिस्टर्ड हो
1: जी, जी।
0: यानी उसका जो है हिला हवाली ना हो जो कि आज यहाँ है कल वहाँ, फिर उसके पेमेंट में दिक्कत आएगा, तो ये एकदम बिल्कुल एग्रीमेंट शुदा होता है।
1: तो इसको में जुड़ने के लिए वही आधार और पैन कार्ड भी।
0: हाँ, पैन कार्ड,
1: पैन कार्ड और जो है कि
0: पासबुक
1: और खतौनी, ये सब का फोटो कापी चाहिए। कुछ पैसा भी।
0: हाँ, उसमें जो है प्राथमिक सदस्यता के लिए भाई कोई भी संस्था को चलाने के लिए अर्थ की अति आवश्यकता होती है। ऐसे में जो नाबार्ड का स्कीम है उसमें यह है कि आप जितना रुपया समिति में सदस्यों से इकट्ठा करेंगे उतना ही रुपए आपको इक्विटी फंड के रूप में मिलेगा।
1: अच्छा।
0: रिवाल्विंग फंड।
1: अच्छा अच्छा।
0: यानी
1: गवर्नमेंट
0: के तरफ से
1: जी।
0: ये आपको प्रोग्रेस करने के लिए गवर्नमेंट उतना पैसा देगी जितना आप इकट्ठा किए रहेंगे। रसीद जिसमें हमारा टिन नंबर, पिन नंबर, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर वो पड़ा हुआ है। हम गांव में घूम घूम करके लोगों को जो है सलाह दे करके, समझौता करके, और ये लगातार प्रयास के बाद जो है प्रथम किस्त में 300 कुछ लोगों का टारगेट मिला हुआ था। ये आपको दूसरे ग्रेड में जाने के लिए कम से कम 300 से ऊपर होना चाहिए।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो तभी आपका ग्रेडिंग होगा दूसरे
1: उतना किसान।
0: हाँ, तो हमने करके हमारा जो है पहले बार का इक्विटी फंड हमारा, जैसे उसमें कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है
1: जी,
0: मेज है, कुर्सी है, और भी बहुत सारे ऑफिशियल जो टूल्स होते हैं
1: जी, जी,
0: वो भी हैं। ये इसके लिए 2 लाख रुपए हमको मिला।
1: अच्छा,
0: था।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो उससे जो है हमने ऑफिस का पुराने अपने ऑफिस का जो है पूरी व्यवस्था किया।
1: तो कुल मिलाकर इस तरीके से 4 लाख आप जमा किए, 4 लाख उधर से 8 हो गया, फिर 10 हो गया।
0: हाँ।
1: तो ऐसे तो इसके जो सरकार के द्वारा आपके समूह के माध्यम से जो जमा हुआ
0: जी,
1: उससे कुछ किसानों के उपयोगी सामग्री भी ली जा सकती है।
0: हाँ, अभी तक तो जो है योजना बनाना पड़ता है। जैसे हमारा जो है ये किसान उत्पादक संगठन है, तो हम वही काम करेंगे जो हमारे किसान चाहेंगे
1: जी,
0: और चाहेंगे मतलब जो कुछ कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में कौन सा फसल एक्टिव है, मैंने बहुत उस पर प्रोग्रेस है या फोकस है
1: जी।
0: जैसे ये हमारा क्षेत्र जो है सवा कोदो मेड़े मेझरी, ये मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तो हम जो है यहाँ पे मोटे अनाज की खेती करेंगे और कराएंगे। और हमारा प्रयास है जो हमारे यहाँ जो भी मोटे अनाज उगाए जाएंगे उसका हम प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाएं, यूनिट लगाएं।
1: अच्छा,
0: ताकि
1: अच्छा।
0: हम उसके उत्पाद को खरीद करके और उससे चावल बना करके और इसके बाद जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो है मिलेट का इस समय अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, तो हम बहुत सारी कंपनी

0: बात कर रहे थे जो केंद्र सरकार का योजना है, इससे किसान जुड़ें और कैसे लाभ पाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक, इतनी अच्छी जानकारी दे रहे थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो देखें गुलाबो बहन, अब देखें घड़ी के इशारा बा कि अब चलल जाए, चला चलाओ आत्मनिर्भर भारत के भी ध्यान में रखल जाए,
2: बिल्कुल
1: चलल
2: बिल्कुल
1: जाए। तो सब पंचन के
2: राम राम,
1: राम।
2: राम।

अभी ग्रामीण भाई ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कर रहे हैं।

0: पंचो जय हिंद।
1: रामजीत भैया।
2: हाँ रेनू बहनी।
1: भैया कहा जाता है कि जल ही जीवन है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन बहुत से जने ये बात का समझत नहीं है और अथा पानी जोन है बहावा करत है।
2: लेकिन बहनी हम पंचन का चाहिए कि हम पानी के इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करी और यही बदे आपन जो सरकार है वो योजना चलाए रही है प्रति बूंद अधिक फसल।
1: बिल्कुल भैया, काहे कि यहाँ पानी जोन है चाहे मानव हो और चाहे खेती पाती हो, दोनों के लिए वतने जरूरी है। यही बदे जोन है हम पंचे पानी की एक एक बूंद का यहाँ इस्तेमाल करी और योजना के भरपूर लाभ उठाई।
2: बिल्कुल ठीक कहती हो बहनी। मूल यकरे साथे साथे अपने आस पास जौन चीजें हो रही है हम पंचन का वहू केर जानकारी हो चाहिए।
1: तो भैया काहे न सुन लीन जाए आज की खबरें।
3: CISH लालिमा अमरूद की एक उन्नत एवं अत्यंत संभावनाशील किस्म है जिसे ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा एप्पल अमरूद के रूप में चयनित किया गया है। इस किस्म के फल गोल मध्यम आकार के तथा आकर्षक गहरे लाल रंग के होते हैं। फलों का छिलका 1.5 सेंटीमीटर से अधिक मोटा होता है जिससे फल परिवहन एवं भंडारण के दौरान अधिक सुरक्षित रहते हैं। इसका गूदा सख्त होता है तथा मिठास और हल्की अम्लता का उत्कृष्ट संतुलन प्रदान करता है जिससे इसका स्वाद बेहद आकर्षक बन जाता है। इस किस्म में विटामिन सी 150 से 220 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाया जाता है जो इसे पोषण की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध बनाता है। अच्छी उत्पादन क्षमता, आकर्षक रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण ये किस्म ताजे फल के रूप में उपयोग के साथ साथ जूस, जेली, जैम एवं अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। इस किस्म का विकास डॉक्टर शैलेंद्र राजन एवं डॉक्टर राम कुमार द्वारा किया गया है जबकि डॉक्टर अंशुमान सिंह इसके अनुरक्षक वैज्ञानिक हैं। इसका विकास वर्ष 2015 में किया गया तथा वर्ष 2024 में इसे आधिकारिक रूप से जारी किया गया।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: भैया देखो, अगर कोनो काम समय पर होत है ना, तो हमका मुनाफा जोन है ज्यादा होत है, लेकिन उके खातिर हमका उस समय की

0: जानकारी होइक चाहिए कि उस समय पर कौन काम हमका ज्यादा फायदा दी। तो आज की बात में हम ऐसे एक भेंटवार्ता लेके आए हैं आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य,
1: और यही पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्यारे लाल सरोज भैया, और इनसे बतकही किहीन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आम की व्यावसायिक बागवानी जहां आप कर रहे हैं वहां इस समय सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से विभागाध्यक्ष फसल उत्पादन प्रभाग डॉक्टर पीएल सरोज साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आम में फलत टूट चुकी है, ऐसे में आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन?
3: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आम फलों का राजा है जो अपने स्वाद, मिठास, पौष्टिक एवं औषधीय गुणों के कारण जनमानस में सबसे अधिक लोकप्रिय है। भारत में आज लगभग 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम की खेती हो रही है, जिससे करीब 2.5 से 3 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है।
2: यानी 2.5 से लेकर के 3 करोड़ टन।
3: जी, आम न केवल राज्य कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है अपितु लाखों बागवान भाइयों, प्रसंस्करण उद्योगों, निर्यातकों आदि की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश बाग पारंपरिक पद्धति से स्थापित किए गए हैं, जिनकी आयु 30 से 50 वर्ष की हो चुकी है, पौधों की ऊंचाई काफी बढ़ गई है, डालियां आपस में मिल गई हैं, सघनता के कारण प्रकाश एवं आयु का उचित संचरण नहीं हो रहा है।
2: अगस्त का महीना चल रहा है, ऐसे में आम के बागों में कौन कौन से प्रमुख कार्य करें बागवान भाई बहन?
3: सामान्यतः अब इस समय सभी किसान भाई फलों की तुड़ाई लगभग समाप्त कर लिए हैं। अगस्त के महीने में बागों का जो प्रमुख कार्य होता है वह खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग का होता है।
2: जी,
3: यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि बाग में पानी भरा हुआ है तो खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग न करें। पहले बाग से पानी निकालकर जब खेत जुताई के उपयुक्त हो जाए तो अच्छी तरह से जुताई करके खेत को पहले खरपतवार रहित कर लें। पूर्ण विकसित बाग के लिए सामान्य तौर पर 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नत्रजन, आधा किलोग्राम फास्फोरस एवं 1 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है
2: प्रति पेड़।
3: अब अगस्त के महीने में जब हमको खाद देना है तो यहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि नत्रजन की आधी मात्रा और पोटास की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा को देना है।
2: अच्छा, तत्व के रूप में,
3: या इसे यूं समझें, अगर हमको लगभग 500 ग्राम नत्रजन देना है तो उसके लिए लगभग 1 किलोग्राम यूरिया, 500 ग्राम अगर हमको पोटास देना है तो उसके लिए 800 ग्राम करीब म्यूरेट ऑफ पोटास, और फास्फोरस की पूरी मात्रा लगभग 500 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम DAP को हम दे सकते हैं। 1.5 से करीब 2 मीटर की दूरी पर करीब 1 फीट चौड़ी नाली बनाएं जो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी हो,
2: यानी गोलाई में
3: नाली को बनाना है, और उसी नाली में अच्छी तरह से नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और साथ में जो देसी खाद है सबको मिला लें,
2: गोबर की सड़ी खाद।
3: फिर नाली को बंद कर दें। यदि नमी की कमी है या वर्षा नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में हल्की सिंचाई कर सकते हैं जिससे पोषक तत्व जड़ों तक पहुंच जाए जो स्वस्थ बाग के लिए आवश्यक है एवं वृक्ष की वृद्धि, पुष्पन, फलन एवं फल गुणवत्ता में आवश्यक सुधार हुए बहुत ही उपयोगी होता है। कभी कभी किसान भाई कुछ खेतों में, कुछ बागों में हरी खाद जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया आदि बोए हैं, यदि अगर उसको बुआई किए हैं तो वह पलटाई का समय आ गया है, मतलब उसकी जुताई करके
2: हरी खाद मिलाने का
3: भी ये समय अगस्त का महीना होता है।
2: डॉक्टर साहब, जैसे दाल में नमक की जरूरत है, उसी तरह फलदार वृक्षों को मुख्य और गौण पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होगी?
3: जी, जैसे हमारे मुख्य पोषक तत्व आवश्यक हैं, उसी तरह फलदार वृक्षों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अच्छी फलत के लिए, उसके टिकाव के लिए सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से आम उत्पादन वाले क्षेत्रों में अधिकांश मृदाएं क्षारीय प्रकृति की हैं, अर्थात उनका pH मान 7.5 से ज्यादा है एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी सामान्यतः कम है। ऐसी परिस्थिति में जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन तत्वों की पूर्ति के लिए उनका परिणाम

0: ये छिड़काव करना चाहिए। अलग अलग इन तत्वों का प्रयोग करने के लिए बागवान भाइयों को काफ़ी कठिनाई होती है, अतः इसके लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म तत्वों का एक मिश्रण तैयार संस्थान द्वारा तैयार किया गया है, जिसे हम फसल प्रभात के नाम से जानते हैं। इसमें जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम होता है,
1: यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों का समूह है।
0: और इसको देने के लिए करीब 4 से 5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर परणीय छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे कि उसमें वर्षा नहीं होनी चाहिए, यानी जब मौसम खुला हो तब इसका छिड़काव करें तो इसका लाभ ज्यादा मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, अगस्त में रोग बीमारियों की रोकथाम के लिए भी कुछ करना है?
0: अवश्य करना चाहिए। आम के फलों को तोड़ने के बाद पौधों की जो सूखी, रोग ग्रसित एवं सघन शाखाएं हैं उनकी काट छांट करना बहुत आवश्यक होता है। रोग बीमारियों के रोकथाम के लिए 250 ग्राम लगभग 1 पाव ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला करके प्रतिवृक्ष यदि देते हैं तो इससे पौधा स्वस्थ रहता है, बीमारियां लगने की संभावना कम होती है।
1: डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ किसान भाइयों को बागवानी से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण देता है और आम तौर पर यह प्रशिक्षण निःशुल्क होता है, इसलिए बागवान भाई संपर्क कर सकते हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, जो उनको वार्ता करने में आसानी रहेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 94-83-50-96-53, 9483509653, 94-83-50-96-53, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का आम के फलदार वृक्षों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: सामयिक कृषि कार्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने समय पर जो आवश्यक क्रियाएं हैं उसको नहीं किया तो आप अगले वर्ष अच्छा उत्पादन नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि समय पर खाद दें, समय पर निराई गुड़ाई करें और उसमें जो सूक्ष्म तत्वों का विशेष ध्यान रखें। और इस समय जो देखे होंगे आप, जैसे वर्षा समाप्त होगी फल वृक्षों से गोंद निकलने लगता है, अतः उसके लिए भी आप अगर कॉपर सल्फेट का घोल बना करके पौधे के मुख्य तने पर लगा देंगे तो ज्यादा फायदा होगा।
1: डॉक्टर पीएल सरोज साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेनू बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो, जानकारी के बाद तो बहुत हो गए, अब कुछ गीत गवने की बात हो जाए।
3: बिल्कुल भैया, हो जाए तो और सुन लीन जाए एक खिमटा सतीश चंद्र श्रीवास्तव भैया के स्वर में। यहाँ
2: जहमा वो कह रहे हैं सुलहो सिंगार कही।

0: रेनू बहनी।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती में कितना मेहनत करी थे, मूल कऊ दाए ऐस हो जाते कि हम उतना फायदा ना पाई थे। मूल बहुत से ऐसे पंच हैं जे वह फायदा का बनाए लिए थे और उनके बात करी थे हम पंच आज के किसान में।
1: तो भैया देखो आज ऐसे ने एक किसान अपनी बैठकी में आए हैं और वे बता रहे हैं डेयरी व्यवसाय के बारे में। यहाँ इनके नाम है ओम बाबू वर्मा भैया और देखो इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं लखनऊ जनपद के गोसाईगंज ब्लॉक के केवली गांव के डेयरी व्यवसायी ओम बाबू वर्मा भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप मट्ठा मैन के रूप में जाने जाते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती खास करके डेयरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ कब से?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। मेरी पढ़ाई लिखाई तो शुरू में मेरी छठीवीं से गोसाईगंज में रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज में हुई, उसके बाद फिर लखनऊ में सुंदरबाग में बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज किए, उसी जगह से हमने फिर आईटीआई अलीगंज से पढ़ाई की, उसके बाद फिर अपना गोपालन और थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल लाइन का काम हमने वहां से शुरुआत की।
2: तो गोपालन शुरू कब किया आपने?
3: मेरे बच्चे जो है बहुत बीमार रहते थे, तो मेरे बड़े वाले भैया एक दिन मेरे घर पहुंचे और कहे आपके घर का दूध बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको जो है एक हम पकड़ी हुई गाय छोटी सी पाल देते जो 2-2.5-3 लीटर दूध देगी, वो जो है आपके यहाँ बच्चों के लिए दूध हो जाएगा और उसी से पालन पोषण होगा। तो उसी चक्कर में हमने वहीं से गाय से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो गाय से हमारे यहाँ दूध बढ़ गया काफी, 5-6 लीटर के आसपास हो गया।
2: अच्छा।
3: और उसके बाद जो है उसका दही मट्ठा बनने लगा। दही मट्ठा जब बनने लगा तो पड़ोस में देते तो बहुत लोगों को फायदा होने लगा। उसके बाद डिमांड भी आने लगी कि भैया तुम्हारे हुआ मट्ठा बहुत अच्छा है, तो हम कहे भैया ले लिया करो, हम लोग तो घी का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो वही जगह से होने लगा। तो फिर कोविड के समय जो है कोई काम रह नहीं गया, तो उतने समय हमारी समझ में आया कि इसको गौपालन में किया जाए क्योंकि गाय बहुत उपयोगी है।
2: तो फिर एक से शुरू किया तो कहाँ तक पहुँच गए हैं?
3: इस समय अपने पास जो है करीब लगभग 30 गाय है, बाकी छोटे बड़े मिला 55-60 के आसपास जानवर है।
2: कौन सी नस्ल है?

0: मेरे पास करीब 4 गिर की हैं, बाकी सब साहीवाल नस्ल के हैं।
1: अच्छा,
0: जिसमें से कुछ हमने अच्छी नस्ल देखे, घूमती हुई गाय पकड़ के अपने यहाँ रखे, उसको भी अपने यहाँ तैयार किए और अपनी बछिया भी काफी तैयार है
1: और उसको भी उत्पादक बना चुके हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो सीमेन अपना उपयोग करके जो अपने सरकारी वाले मारे हैं, उससे साहीवाल की बछिया बहुत अच्छी है हमारे पास है।
1: तो ये बताएं कि उनका खान पान कैसे करते हैं सुबह से शाम तक?
0: खान पान तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी हमें नहीं पहले थी, तो हम तो वही बाहर से मार्केट से पशुआर खरीद लेते थे और जो दाना पानी आता था वही सब खरीद के खिलाते थे। लेकिन जब तक हम दाना पानी बाहर का उपयोग किए जो मार्केट में आजकल चल रहा, उसके बाद फिर गाय हमारी कोई गाभिन नहीं हो रही।
1: अच्छा,
0: ये समस्या बहुत बड़ी आई। फिर हम एक बार करनाल ट्रेनिंग गए और फिर गवर्नमेंट भेजी थी वहाँ पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में
1: जी शांति कुंज में।
0: हाँ, शांति कुंज में। तो वहाँ हमने प्रोफेसर लोग बोले कि आप अपना दाना पानी तैयार। जब से हमने अपना दाना पानी तैयार, मेरी गायों की शक्ल बन गई ऐसी कि बिल्कुल चमकीली हो गए और उसके बाद गाय मेरी सारी सारी गाभिन हो गई।
1: यानी पशु आहार खुद बनाते हैं?
0: खुद पशु आहार बनाते, एक मशीन हमने खरीदी 50,000 की और उसी से अपनी दलिया तैयार करते हैं, उसी से अपना पशु आहार दाना मक्का सब कुछ उसी से अपना तैयार करते।
1: तो संतुलन क्या रखते हैं, दाना खली और चूनी का?
0: हमारा मानक जो है गेहूं रखते हैं करीब लगभग 30 किलो, और जैसे आजकल गर्मियों में हमने 30 किलो जौ कर दी है।
1: हाँ।
0: और उसके बाद चने की चूनी।
1: हाँ।
0: और इधर थोड़ा वो चोकर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: चोकर है। उसके बाद 1 क्विंटल का मानक बता रहे हैं हम, और 1 किलो मिनरल देते हैं, 1 किलो हमने सादा नमक देते हैं और 1 किलो हम मीठा सोडा।
1: अच्छा।
0: हाँ, और जो है इसी में 5 किलो खली।
1: 100 किलो में?
0: 100 किलो में। तो ये सब बना के हम तैयार करके और बोरियों में 15 दिन का पैक करके वजन के हिसाब से रख देते हैं कि गाय मेरी इतना चारा खाएगी तो इतना हमको राशन इसमें डालना है।
1: तो जो 30 भारतीय नस्ल की गायें हैं आपके पास, उसमें दूध कितना दे रही हैं?
0: दूध मेरे पास इस समय डॉक्टर साहब जो है मेरे पास 14 गाय लग रही हैं, लगभग 85-90 लीटर के आसपास दूध है।
1: हो रहा है?
0: हो रहा है।
1: और आगे जो गाभिन होगी ब्याएंगी?
0: 20 गाय मेरे पास बच्चा देने वाले, जिसमें से मेरी खुद 14 बच्चियां अपने यहाँ की हैं जो तैयार की साहीवाल गिर, उसमें से देंगी।
1: तो दूध की मात्रा काफी बढ़ जाएगी?
0: दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, इसीलिए हमने प्रोडक्शन के लिए खोया पनीर किसकी तैयारी कर ली है।
1: जो जानवर हैं उनको खुराक कैसे देते हैं, सूखा चारा, हरा चारा और पशु आहार?
0: ये डॉक्टर साहब मानक जो मेरा है करीब 3 से 4 किलो के आसपास एक टाइम हम भूसा दे रहे हैं, और उसी में लगभग 10 से लेकर मतलब वजन के हिसाब से देते हैं जानवर के, लगभग कितना वजन है।
1: हाँ।
0: 10 से 15 किलो के आसपास हरा चारा।
1: हाँ।
0: ये देते हैं, और जैसे अगर 6 लीटर दूध दे रही तो अब उसको हम 2.5 से 3 किलो के आसपास एक टाइम राशन दे रहे हैं। जो गाभिन है उसको 1 किलो 200 ग्राम या 300 ग्राम बस इससे मानक में देते रहते।
1: बहुत बढ़िया।
0: और उसके बाद गाय को खुला छोड़ना।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब से हमने उसको खुला छोड़ दिया तब से गाय पूरा एक दूसरे को चाटती है। कहीं हमने सिरावन गांव में पुरानी पड़ी अपने घर पे उसको गाड़ दिए, उसमें रगड़ती रहती है, और उसके बाद पानी पीने के भर दिए, उसके बाद थोड़ा टीन सेट बना दिए, और टीन सेट के बाद जो है अब पूरा हमने खुला रखा करीब 8 विश्व के आसपास।
1: अच्छा, उसमें अपना घूमती
0: टहलती रहती है।
1: तो पूरे डेयरी व्यवसाय की बात करें तो ये बताएं कि महीने में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं, और उसको बेचने के बाद आपका मुनाफा होता कितना है?
0: करीब 90 लीटर के आसपास मेरे पास दूध तैयार होता है, तो उसी का हम जो है पूरा मान चले के उसी का दूध पका के करीब मेरे पक के आ जाता है करीब 78-80 लीटर के आसपास दूध लाल पक के तैयार हो जाता है जो मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं। उसके बाद उसी में फिर पानी कुछ मिक्स करके मट्ठा तैयार करते हैं, उसी में से मक्खन जाता है, वो 90 लीटर के आसपास मेरा मट्ठा उतना तैयार हो जाता है। और कभी कभी 10 किलो के आसपास निकाल लेते हैं, 80 लीटर मट्ठा तैयार कर 10 किलो दही हम तैयार कर लेते हैं।
1: अच्छा, दही भी बेचते हैं?
0: दही भी लाल मटकी में और दही करके 500 ग्राम 1 किलो की दही भी तैयार करते हैं और दही भी बेचते हैं। तो लगभग ये मट्ठा और दही घी मिला के लगभग में बिक्री जो हो जाती है लगभग 15,000 से 16,000-17,000 के आसपास पर डे की होती है।
1: पर डे?
0: पर डे की। और जिसमें से हमारे पास करीब 7,000-8,000-9,000 रुपए के गायों के प्रति
1: खर्चा है।
0: खर्चा भी है, लगभग 2 लाख के आसपास मार्जिन आ जाता है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है डेयरी व्यवसाय का इतने कम दिन में, और किसान भाइयों बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: किसान गाय पाले लेकिन पूरे परिवार साथ मिलके और खुद अपना प्रोडक्शन तय, खुद अपनी मार्केट मतलब अपनी बाजार खुद ढूंढे, दूसरे को न दे बाजार ढूंढने के लिए, तभी आप इससे कुछ बचा पाएंगे।
1: ओम बाबू वर्मा भैया।

0: किसान भाई बहन अभी भी उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मोबाइल नंबर मेरा जो है 70 80 89 98 28 70 80 89 99 28 70 80 89 98 28।
0: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं?
1: हमने कभी सोचा नहीं था, लोग हमारे मित्र जो थे 10 में से 9 लोग तो मना कर दिए कि गौ पालन में आप न जाइए क्योंकि ये घाटे का सौदा है। तो हमने कहा हम कैसे जाने घाटा का सौदा है, हम तो इसको हम घुस के हम देखेंगे एक बार कि घाटा है कि नहीं है, हम क्योंकि घाटा करके हम सीखना चाहते। तो हमारी जिद ने इसमें ले गए और उसके बाद हमने सोच लिया कि हम अपनी मार्केट करेंगे, अपने ग्राहकों के पास पहुंचाएंगे।
0: और आज अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके आप दूध, दही और मट्ठा, साथ में घी भी बेच रहे हैं और कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं। ओम बाबू वर्मा भैया, आज छोटे बड़े कुल 60 जानवर आपके गौशाला में
1: जी
0: हैं
1: जी जी
0: और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया अपनी खेती पाती में यहाँ कोनो काम हो लेकिन मौसम केरी जानकारी अगर अच्छी हो ना तो काम बहुत बढ़िया बनत है, तो काहे ना दे दिन जाए अपने पंच भैया बहनिन के यहाँ मौसम केरे हाल।
4: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 6 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है और कहूं कहूं पर भारी बारिश के चेतावनी है।
3: भैया देखो ये तो हो गए मौसम के हाल, लेकिन अगर कोई पंच भैया बहनी हमका सुझाव भेजा चाहते हैं, कार्यक्रम से संबंधित कोनो बात बतावा चाहते हैं, तो उके खातिर हुई हमार पता नोट कर लें। हमार पता है कार्यक्रम किसान वाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। और भैया देखो आजकल है डिजिटल के जमाना, तो बहुत से लोग मेल भेजते हैं जो उनकी ज्यादा सहज होते हैं, तो बता दो अपन मेल आईडी।
4: तो पंच भाई लिखें FARMANDHOME फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com।
3: और भैया देखो कार्यक्रम के समय हो चुका है अब समाप्त, तो लीन जाए अपने पंच भैया बहनी से आज्ञा।
4: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को खरीद और सही कीमत की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को ऑनलाइन करने के केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रतापगढ़ में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 23,731 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। ये योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के जरिए गैस उत्पादों को खरीद और सही मूल्य देने की गारंटी देने की कोशिश की गई है।
1: आज जो स्कीम अप्रूव हुई है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसमें 6 पिलर्स हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस CBD जो गैस बनती है उस गैस के यूटिलाइजेशन के लिए अश्योर्ड ऑफ टेक का पिलर रखा गया, यानी जो भी मैन्युफैक्चर करेगा बायोगैस उसको एक अश्योर्ड ऑफ टेक यानी उसके प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी दी जाएगी। सेकेंड है प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस ग्लोबल ऑयल का प्राइस गैस का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बायोगैस को वो सब वॉलेटिलिटी प्राइस की न देखनी पड़े इसके लिए एक अश्योर्ड प्राइस का सिस्टम बनाया गया।
0: मंत्रिमंडल ने असम में बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र देश को दिया था उसी संकल्प का विस्तार आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। बिना भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की इसी सोच की नई कड़ी घुमंतू विकास बोर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि वर्षों से उपेक्षित विमुक्त एवं घुमंतू समाज को न्याय सम्मान और अवसर दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि विमुक्त जातियां भारत के स्वाधीनता संग्राम की सेनानी हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है।
2: ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। घुमंतू जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और आलोक आरागे की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई

0: 19 अगस्त निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है। पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए व्यापक सुधार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मिश्रा के वकील ने दलील दी कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वे पारिवारिक कार्यक्रमों सहित अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने में असमर्थ है। मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आज 45वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 85 मेघावी विद्यार्थियों को कुल 172 पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेटों और बेटियों को समान अवसर मिल रहे हैं। ये समाज के लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत है और इससे प्रेरणा लेकर युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज उमाशंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मायावती ने लिखा कि पार्टी के प्रति उमाशंकर सिंह की निष्ठा की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हर घर तिरंगा के अंतर्गत प्रदेश के 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके साथ ही देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोजनों को जनभागीदारी के साथ मनाने का निर्देश दिया है। इस श्रृंखला में राजधानी लखनऊ समेत सभी 75 जनपदों में तिरंगा संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रभक्ति के गीतों नृत्यों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली अंतर्गत महुली मंडी के पास एक जर्जर मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने घटनास्थल का मुआयना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है।
1: 6 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रमोद जी की पत्नी, उनका एक और बेटा और अमन करके एकमात्र जो सर्वाइवर है वो बचे हुए हैं। उनकी दुखद घटना है। प्रशासन और शासन जो है वो पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। आपका राहत कोष अंतर्गत जो मदद है वो अगले कुछ घंटों में परिवार के खाना मैसेज कर दी जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गहरा शोक जताया है। वहीं बाराबंकी में भी बारिश के कारण दरियाबाद में भी घर की दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे मलबे में दब गए। हादसे में सगे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। भारी बारिश के कारण इटावा और जौनपुर में आज स्कूल बंद रहे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में इटावा में सबसे ज्यादा 126 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी भाग में कई स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। उन्नाव में गंगा और बाराबंकी में घाघरा आज खतरे के निशान को पार कर गई हैं। वहीं अमरोहा में भी पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही और उसके कारण गंगा नदी उफान पर है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण अमरोहा में तिगरी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाटों पर पानी भर गया है और पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गई हैं। खादर क्षेत्र के खेतों में भी पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। आज तिगरी गंगा का जलस्तर 200.45 मीटर दर्ज किया गया है। हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में 133,357 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में गंगा का जल

0: स्तर लगातार बढ़ रहा है। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
1: हमीरपुर में बीती रात नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर हो जाने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं झांसी में आज हुई सड़क दुर्घटना में माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक की भी मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को खरीद और सही कीमत की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को ऑनलाइन करने के केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रतापगढ़ में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: TLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। यह है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म लोफर से। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म है आया सावन झूम के।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, ये गीत है फिल्म बरसात से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: श्रोताओं, ये गीत है अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, धुन बनाई जतिन ललित ने और फिल्म है यस बॉस।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में
विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने एक मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉ एम थंबीदुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉ सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएम डीके सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवाड़ी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालू हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में

प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन

0: निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी गीत।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें अगले प्रसारण की।

आशा भोसले और विनोद राठौर के गाए हुए इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

श्रोताओं, सुगम संगीत के तहत ये नॉन फिल्मी गीत आपने सुना आशा भोसले और गुलाम अली की आवाजों में। इन्हीं की आवाजों में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर बाद आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद 9 बजे होंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए समाचारों की।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
2: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को

0: रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा हैं।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
2: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
3: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
4: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
3: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
1: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
5: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
1: 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफी का गाया हुआ।

मोहम्मद रफी को आपने सुना फिल्म भीगी रात में। ये गीत है फिल्म महल से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710, मंगलवार और

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और आइए, इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल को फिल्म जिस्म में।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जानशी फिल्म से। आवाजें हैं बाबुल सुप्रियो और गौरी बापट की। गीत को लिखा है नासिर काजमी ने और धुन इसकी बनाई है मिलिंद संपत ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये आखिरी गीत था श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गीत को लिखा था सईद कादरी ने और धुन बनाई थी रूप कुमार राठौर ने। और इस गीत को हमने आपको सुनवाया फिल्म जहर से।

ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत और इस कार्यक्रम में कलाकार हैं चंदन दास। तो आइए पहले सुनते हैं इनकी गाई हुई ये गजल। शायर हैं निदा फाजली।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं नासिर काजमी का कलाम, आवाज है चंदन दास की।

चंदन दास की गाई हुई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम खत्म होता है। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के प्रथम भाग में आज प्रस्तुत है भैरवी काले का मराठी सुगम गायन। संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी तथा वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of regional folk and light music, we bring to you Marathi Sugam Sangeet. The artist is Bhairavi Kale. The accompanists are Ajay Hedau on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist is Nishikant Deshmukh.
0: Bhairavi Kale ne apne pita Vikas Kale tatha Sushri Mangal Deshmukh inse sangeet ki siksha prapt ki hai. आप आकाशवाणी नागपुर की सुगम संगीत में ए ग्रेड प्राप्त कलाकार हैं। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत अलंकार तथा पीएचडी प्राप्त की है। मधुर स्वर की धनी भैरवी काले ने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में सहभाग लिया है तथा वह एक दंत चिकित्सक भी हैं।
1: Bhairavi Kale received her musical training from her father Vikas Kale and Miss Mangal Deshmukh. She is an A-grade artist in light music from Akashvani Nagpur. She holds the Sangeet Alankar and PhD in Hindustani classical music. Possessing a melodious voice, Bhairavi Kale has participated in various music competitions at the state and national levels. She is also a dentist by profession.
0: आज की पहली पेशकश है वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे। ये शब्द है कवियत्री सरोज देशमुख के। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: हियर इज द फर्स्ट गीत वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे, संग बाय भैरवी काले। द पोएटिस इज सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: इस गीत के बाद अब भैरवी काले प्रस्तुत कर रही हैं गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते। रचना है सरोज देशमुख की, इसे संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: भैरवी काले नावरेंडर्स द नेक्स्ट गीत धरा आणि मेघांचे हे ये जुळुनी नाते, पेंड बाय पोएटस सरोज देशमुख अँड इज कंपोज्ड बाय अजय हेडाऊ।

0: भैरवी काले की इस प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं सुरेश भट्ट की रचना। शब्द है माझी उदास गीते तू एक दोस कारे, और गा रही हैं भैरवी काले। संगीतकार हैं अजय हेड़ाऊ।
1: नेक्स्ट कॉम्पोजिशन माझी उदास गीते तू ऐकतो सकारे इज पेंड बाय सुरेश भट्ट, कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ, एंड सिंगर इज भैरवी काले।

0: कार्यक्रम के इस भाग के अंत में प्रस्तुत है रामदास कुहिटे का लिखा ये गीत। भैरवी काले ने गाए इस गीत को, संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने। इस गीत के बोल हैं, गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप देवो।
1: भैरवी काले कंक्लूड्स हर रिसाइटल विथ गीत गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप देवो। द पोएट इज रामदास कुहिटे and is composed by Ajay Hedau.

0: इस गीत के साथ ही आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस भाग का समापन होता है। कलाकार थी भैरवी काले, संगत कलाकार थे हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी और वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी थी।
1: With this Marathi Geet by Bhairavi Kale, we come to the end of this part of the national program of regional folk and light music. The accompanists were Ajay Hedau on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist was Nishikant Deshmukh.
0: यह ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में किया गया। आज का प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भाग।
1: This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Nagpur. The program continues. Let us listen to the next segment.
2: ये Akashwani है। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत।
3: This is Akashwani. In this part of the national program of regional folk and light music, you will listen to Punjabi Sufi and folk songs by Sukhvinder Singh.
2: Sukhvinder Singh, jinhe unke manchiye naam Daleer Ali ke naam se bhi jana jata hai, Punjab ke ek pratishthit Sufi evam lok gayak hain. Sangeet ke kshetra mein do dashakon ke anubhav ke saath unhone Punjab ki samriddh sanskritik evam sangeet parampara ke sanrakshan aur prachar prasar mein mahatvapurna yogdan diya hai. Pichle 20 varshon ke duran unhone anek qawwali karyakramon, sanskritik samarohon, dharmik ayojanon tatha vibhinn pratishthit samajik evam sanskritik manchon par apni prastutiyan di hain. उनकी सूफियाना एवं लोक गायकी को देश विदेश के श्रोताओं द्वारा सराहा गया है। एक सफल कलाकार होने के साथ साथ वे एक समर्पित संगीत गुरु भी हैं। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं।
3: सुखविंदर सिंह, also known by his stage name Daleer Ali, is a renowned Sufi and folk singer of Punjab. With 2 decades of experience in the field of music, he has made significant contribution to the preservation and promotion of Punjab's rich cultural and musical heritage. Over the past 20 years, he has performed at numerous live Qawwali concerts, cultural festivals, and religious events, as well as on various prestigious social and cultural platforms. His Sufi and folk singing has been acclaimed by audience both in India and abroad. In addition to being a successful artist, he is also a dedicated music mentor. He has imparted musical training to numerous students, many of whom are now successfully pursuing career in their respective fields. He is an A-grid artist of Akashwani.
2: आज रात के कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे काफी शाह हुसैन नीमाए मेनू खेड़ियां दी गल ना आख। इस काफी की प्रस्तुति का मुख्य विषय ईश्वरीय प्रेम, अटूट भक्ति और आध्यात्मिक मिलन है। हीर का खेड़ों को स्वीकार करने से इनकार करना, आत्मा द्वारा सांसारिक मोह माया को ठुकराने और अपने प्रियतम जो ईश्वर का प्रतीक है के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का प्रतीक है।
3: द सेंट्रल थीम ऑफ दिस काफी रिवॉल्व्स अराउंड डिवाइन लव, अनवेवरिंग डिवोशन एंड स्पिरिचुअल यूनियन। हियर्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द खेड़ास सिंबलाइजेस द सोल्स रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट्स and its complete surrender to the beloved Ranjha, who represents the divine.

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा बुले शाह। मैं गल उथे दी करदा हां। ये बुले शाह की एक बेहद रहस्यमय रचना है जो अनिश्चितता, आत्मखोज और ईश्वर के प्रति समर्पण के जरिए साधक की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। कवि एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो भौतिक दुनिया से परे है, एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य जिसे आम भाषा में बयां करना बहुत मुश्किल है। वह ईश्वरीय प्रेम और आंतरिक जागृति के अपने अनुभव को साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी झिझक और डर को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे सत्यों को केवल तर्क या बुद्धि के जरिए पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
1: दिस वन इज अ डीप मिस्टिकल कॉम्पोजिशन बाय बाबा बुल्ले शाह दैट एक्सप्लोर्स द सीकर्स स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू अनसर्टेनिटी, सेल्फ डिस्कवरी एंड सरेंडर टू द डिवाइन। While the poet wishes to share his experience of divine love and inner awakening, he admits his hesitation and fear because such truths cannot be fully understood through reason

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा गुलाम फरीद, सोनिया रमजा तेरिया पौंदिया। बाबा गुलाम फरीद की ये सूफी रचना दिव्य प्रेम की अनोखी सुंदरता और आध्यात्मिक आकर्षण का जश्न मनाती है। असल में कवि प्रिय की मनमोहक खूबियों के बारे में बताता है। मन मोहने वाली आंखें, सुंदर बौहें, लहराते बाल, आकर्षक हाव भाव। हालांकि सूफी परंपरा में ये शारीरिक खूबियां दिव्य सुंदरता के उन रूपों की निशानी है जो साधक के दिल को आध्यात्मिक जागृति की ओर खींचती हैं।
1: दिस इज अ मिस्टिकल सूफी कंपोजिशन attributed to Baba Ghulam Farid that celebrates the irresistible beauty and spiritual attraction of the Divine Beloved. In the Sufi tradition, the physical attributes symbolize the manifestation of the Divine that draws the seeker's heart towards spiritual awakening.

0: कार्यक्रम के अंत में सुखविंदर सिंह प्रस्तुत करेंगे एक गीत, रात अद्धी रात तो लंघ गई अगा, पता नहीं यार किथे रह गया। देव हरियाणवी का ये गाना चाहत, इंतजार और जुदाई के दर्द से दिल को छू लेने वाला है। गाना एक ऐसे प्रेमी की भावुक हालत को दिखाता है जो पूरी रात अपने उस प्यारे के आने का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता।
1: This song, lyricized by Dev Haryanvi, is a poignant expression of longing, anticipation and the pain of separation. The song captures the emotional state of a lover who spends the entire night waiting for the arrival of a beloved who

0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत। उनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रदीप कुमार, तबले पर चरण, कीबोर्ड पर पंकज, सारंगी पर सुखविंदर सिंह, बांसुरी पर गुरदीप सिंह तथा मैंडोलिन एवं गिटार पर चरणजीत ढिल्लो। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to the Punjabi Sufi and folk songs sung by Sukhvinder. He was accompanied on dholak by Pradeep Kumar, tabla Charan, sarangi Sukhvinder Singh, keyboard Pankaj, flute Gurdeep Singh, and mandolin and guitar by Charanjit Dhillo. This part of the program was a presentation by Akashwani Jalandhar.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद।